सुप्रभात। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, आज बुधवार है, शक सम्मत 1948 के श्रावण मास की 21वीं तिथि। तदनुसार आज 12 अगस्त 2026 ईस्वी है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:54 होने को अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है इस मंगल ध्वनि के साथ।

0: प्रातःकालीन सभा के आरंभ में लीजिए सुने समाचार। समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचार पहले होंगे हिंदी में, तत्पश्चात अंग्रेजी में। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक

0: माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहाँ पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहाँ तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. The Lok Sabha had passed the bill yesterday. Rajya Sabha is also likely to take up the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 for consideration and passing today. In the Lok Sabha, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 will be tabled for consideration and passing. Yesterday, the proceedings of both the Houses of Parliament were once again disrupted following opposition uproar on various issues. Lok Sabha passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 and the Rajya Sabha passed the Tribunals Reforms Bill 2026. India has reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance

श्रोतावाच, बुधवार है और भक्ति रचनाओं के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्री गणेश जी के इस गणेश मंत्र के साथ।

ये भक्ति रचना भी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज में। भक्ति रचनाओं का यह कार्यक्रम इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में लीजिए सुने ये भक्ति रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ लीजिए अब सुने कार्यक्रम चिंतन। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वर और आलेख स्वामिनी सत्यप्रभा और आज का विषय है शिक्षा।
1: जब भी हम आज का विषय है शिक्षा, जब भी हम शिक्षा के संदर्भ में विचार करते हैं दो धाराएं हमारे सामने आती हैं, पराविद्या अपराविद्या। अपराविद्या जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है जिसमें ज्ञान विज्ञान और भौतिकता के विकास की सारी दिशाएं हमारे सामने हैं और आज का मानव संपूर्णतया इसी को सब कुछ मान करके चल रहा है। विचार करें, क्या विद्याओं का इतिहास मात्र 100-200 वर्षों का ही है? क्या ज्ञान की सीमा यहीं तक निर्धारित है? नहीं, भारतीय विद्याएं या जिसको हम पराविद्या के नाम से जान सकते हैं।

हैं, हजारों वर्ष पुरानी हैं। आज गणित की बात करते हैं, हमारे सामने पाइथागोरस आता है। दर्शन की बात करते हैं, हमारे सामने सुकरात आता है। विज्ञान की बात करते हैं, हमारे सामने आइंस्टीन आता है। बड़ा विचित्र लगता है, क्या भारत में कोई दार्शनिक नहीं हुआ? क्या भारत में कोई गणितज्ञ नहीं हुआ? क्या भारत में कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ? ये सारे प्रश्न हमें सोचने को विवश करते हैं कि यदि हम

0: बात कही गई है जिससे हम अमृतत्व को प्राप्त कर सके, मृत्यु से भी पार पा सके और अपने आप को जान सके। वैदिक प्रसंग है जब याज्ञवल्क्य मैत्री से कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, मैं सारी संपदा का बंटवारा कर देता हूँ। उस समय मैत्रेयी कहती हैं, येनाहम नामृतम श्यामे तेनाहम किम कुर्मह, उससे मुझे क्या जिससे मैं अमृतत्व को प्राप्त न कर सकूं। वस्तुतः जीवन का सार केवल भौतिक विकास में नहीं, उसके साथ साथ में अपने आप के विकास में निहित है, अध्यात्म के विकास में निहित है। और उस दिशा में यदि हमारा चिंतन जागृत होता है तो हम अपनी शक्तियों को पहचान सकते हैं और हमारा अपना अस्तित्व क्या है उसके प्रति भी एक जिज्ञासा जागृत कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का चिंतन है कि आज तक हम एनर्जी की खोज करते रहे बाहर के जगत में, ऑब्जेक्ट पर ही रिसर्च करते रहे, लेकिन हमें अपने आप के अस्तित्व के लिए रिसर्च करनी बाकी है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत में प्रारंभ से ही यह चिंतन रहा है, उस चिंतन को प्राप्त करके हम नया नवनीत प्राप्त कर सकते हैं। सौभाग्य यह भी है कि आज भी उन भारतीय विद्याओं के ज्ञाता हमारे सामने उपलब्ध हैं और अनेक ऐसे प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी वे हमें प्रदान कर रहे हैं जिनके माध्यम से हम सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, या आज की भाषा में कहें तो आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा प्रदत्त प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान ऐसे ही आयाम हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति शारीरिक विकास भी कर सकता है, मानसिक विकास भी कर सकता है, बौद्धिक विकास भी कर सकता है और भावनात्मक विकास भी कर सकता है। आज की जो शिक्षा पद्धति है हम उसे गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना अवश्य कह सकते हैं कि वह अपूर्ण है, क्योंकि भावनात्मक विकास का पक्ष वहाँ बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। एक वैज्ञानिक है, वह भी टेंशन में जीता है और उस टेंशन के चलते कई बार सुसाइड जैसी स्थितियाँ भी उसके सामने आ जाती हैं। तो एक अनपढ़ व्यक्ति और पढ़े लिखे व्यक्ति में अंतर क्या? अंतर होना यह चाहिए कि शिक्षा के माध्यम से हम अपने आवेगों पर, संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करना सीख सकें, भावनात्मक विकास कर सकें, सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव जागृत कर सकें। यदि इतना प्रयास हमारा होता है तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से हमने प्रकाश को प्राप्त किया है, शिक्षा के माध्यम से सही दिशा को प्राप्त किया है। ओम आर।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुने कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आप सुनेंगे हमारी आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम व उनका प्रसारण समय। अब से कुछ देर बाद यानी कि 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीहारा वास्ते, जिसमें जानकारी का विषय रहेगा कीटनाशक छिड़कते समय क्या क्या सावधानियां बरतें। मानस गान आप सुनेंगे 7:20 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे भाग संख्या 333। 7:30 पर कार्यक्रम होगा सुप्रभात, जिसमें हम कई विषयों पर चर्चा करेंगे और आपको गीत भी सुनवाएंगे। 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। 9:10 पर कार्यक्रम होगा मरुमंगल। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, जो कि आप सुन पाएंगे लगातार 11 बजे तक। 11 बजे कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए।

0: दोपहर 12:05 पर कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। खेत खलिहान का वक्त रहेगा दोपहर 12:50। दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। ये कार्यक्रम फरमाइशी प्रोग्राम होगा आपकी पसंद का। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। हमारी संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। सरायकी का वक्त रहेगा शाम 6:05। चौपाल आप सुनेंगे शाम 7 बजे। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। 9:15 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विशेष मन भावन। श्रोताओ, ये थे हमारी आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम व उनका प्रसारण समय।
1: राम राम।

0: षट्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे अधिकरणानां युक्तीकरणस्य प्रक्रिया समारब्धा। मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अस्मिन् नूतनविधेयके राष्ट्रिय अधिकरणायोगस्य स्थापनायाः प्रावधानम् अस्ति, यस्य अध्यक्षता सर्वोच्चन्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशः उत उच्चन्यायालयस्य पूर्वमुख्यन्यायाधीशः करिष्यति। विधेयकपारणात् परं सदने विशेषोल्लेखानां विषयेभ्यः समयः कल्पितः, यस्मिन् विधिकसदस्यैः लोकमहत्त्वस्य विषयाः उत्थापिताः। कार्यसमाप्त्यनन्तरं पीठासीनाधिकारिणा सदनस्य कार्याचरणं श्वः प्रातः 11 वादनं यावत् स्थगितम्। लोकसभया केरलनाम परिवर्तनं विधेयकं पारितम्। अस्मिन् विधेयके संविधानस्य प्रथमानुसूच्यां राज्यस्य केरल इति नाम परिवर्त्य केरलम् इति कर्तुं प्रावधानम् अस्ति। विधेयकस्यास्य विषये भाषमाणः गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः अवोचत् यत् गतवर्षे केरलविधानसभया राज्यस्य नाम केरलमिति कर्तुं केन्द्रसर्वकाराय अनुरोधप्रस्तावः पारितः आसीत्। तेनोदीरितं यत् मलयालं भाषायां राज्यस्य नाम केरलमिति अस्ति, परं संविधाने एतत् केरल इति लिखितमासीत्। राज्यसभया राष्ट्रिय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयकम् अपि पारितम्। सहकारिता राज्यमन्त्री मुरलीधर मोहिल इत्यनेन उपस्थापितं विधेयकं निगमस्य गतिविधीन् औद्योगिकपण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमतिं ददाति। उभे अपि विधेयके नीट विप्रतिपत्तिमधिकृत्य विपक्षस्य कोलाहलमध्ये चर्चां विनैव पारिते। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य पूर्व राजस्थान ओडिशा प्रभृति प्रदेशेषु अतिवृष्टेः पूर्वाभासः प्रकटीकृतः। पंजाब उत्तराखण्ड गुजरात क्षेत्रेषु अपि अतिवृष्टिः सम्भाव्यते। आन्ध्रप्रदेश झारखण्ड कर्णाटक प्रदेशेषु विद्युत्पात झञ्झावाताभ्यां सह अतिवृष्टिपरा सञ्चेतना च प्रसारिता। राष्ट्रिय राजधान्यां तावत् देहल्यां सायंकाले मेघाच्छादनेन सह मन्दवृष्टिः सम्भाव्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा को तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित भी करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर

0: देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। नागरिकों से अपील करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। उन्होंने कहा कि देश के हर त्योहार के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जीवन को बेहतर बनाने का संदेश छिपा होता है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई भी बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. The Lok Sabha had passed the bill yesterday. Rajya Sabha is also likely to take up the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 for consideration and passing today. In the Lok Sabha, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 will be tabled for consideration and passing. Yesterday, the proceedings of both the Houses of Parliament were once again disrupted following opposition uproar on various issues. Lok Sabha passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 and the Rajya Sabha passed the Tribunals Reforms Bill 2026. President Draupadi Murmu has given assent to Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Parliament had passed the bill last month. The legislation seeks to give national song Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana. It makes it an offence to internationally prevent its singing or to disturb an assembly engaged in singing it. India has reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for the overall development of bilateral relations with China.
2: India-China border affairs, which was held on 6th. At this meeting, the two sides engaged in frank discussions and reviewed the situation along the line of actual control. The Indian side again underlined that maintaining peace and tranquility in the border areas is essential for the overall development of bilateral relations. It was agreed to continue to use existing mechanisms, diplomatic and military channels, including the WMCC, local commander.

0: level meetings and other agreed mechanisms to resolve outstanding issues and avoid misunderstanding and miscalculation along the line of actual control.
1: Prime Minister Narendra Modi will release the autobiography of former President Ramnath Kovind titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles in New Delhi today. The Prime Minister will also address a gathering on the occasion. The autobiography offers a deeply personal account of former President Ramnath Kovind's life journey, tracing his experiences, struggles and achievements from his early years to his distinguished public life and the eventual service as the 14th President of India. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Gangetic, West Bengal, Madhya Maharashtra and Odisha today. According to IMD, parts of Punjab, Uttarakhand, Chhattisgarh, Gujarat, West Madhya Pradesh, West Rajasthan, Goa and northeastern states are expected to experience heavy rainfall for the day. The World Bank has raised serious concerns over Pakistan government's decision to divert multi-billion rupee funds meant for flood-affected families in Balochistan towards infrastructure projects. The bank has warned that the move could deepen poverty and increase disaster risk for vulnerable households. According to the World Bank, 84% of eligible beneficiaries are classified as ultra-poor and vulnerable. India continued its impressive medal-winning run at the Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. After securing 17 medals on the opening day on Monday, Indian fencers added more medals to the country's tally. Karan Singh and Sherjin Santhimol clinched gold medals for India in the senior men's events last night. India also won a bronze medal in the senior men's foil event, with Tejas Patil finishing on the podium in a field featuring several renowned international fencers. Indian women fencers put up another dominant performance in the senior women's EP event, winning three medals. Tanishka Khatri clinched the gold, while her compatriot Khushi Dabhade took the silver. Thousands of devotees across Keralam began offering Pitru Tarapanam in the early hours today on the auspicious occasion of Karikada Vavu. And that is the end of this news bulletin.
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरत गढ़ है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:10 और 15 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम खेती हरा वास्ते। इस कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है कीटनाशक छिड़कते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतें।
3: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, आज अपन बात कर सियां कीटनाशक दवाइयों को प्रयोग करता टेम अपन के सावधानियां रखनी चाहिए। आज विज्ञान को युग है और इन युग में जब तक मनुष्य शरीर पशु पक्षी अंग बीमारियां खातर नित नई दवाइयों को इस्तेमाल या फिर यहाँ केसका का आविष्कार होने ला रहे, बटे कृषि क्षेत्र गां फसलों की बीमारियां या फिर कीड़ा से बचाने खातर या फिर ज्यादा फसल लेने खातर कीटनाशक जितनी दवाइयां हैं बांगो ज्यादा प्रयोग होने लग गयो, तो अपन ये बात इनकार कौन कर सका नहीं कह खेती का मां कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से ज्यादा उत्पादन बढ़ियो है। फिर भी इन दवाइयों को असावधानी पूर्वक प्रयोग करने से कई तरह की दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़े। आज कृषि का मां या फिर केस का खेती का मां कीटनाशक दवाइयों को प्रयोग हर किसान के लिए जरूरी हो गयो है। ये कीटनाशक दवाइयां किसान भाइयों मनुष्य खातिर ही नहीं बल्कि पशु है या फिर पक्षी है बांघ खातिर भी बहुत ज्यादा घातक है। इन वास्ते इन प्रयोग में अपन सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दवाइयां कई बार सांस है, मुंह है, नाक है, आंख है, इनसे अपने शरीर का मां पुग जाए और खून में मिलने से कई तरह की बीमारियां भी पैदा करते हैं। आजकल घरों का मां चींटियां है, मच्छर है, मक्खी है, खटमल है या फिर तिलचट्ठा है, जो कारण मारने खातर अपन दवाइयां प्रयोग करा तो ये कई बार की होगा अपना खाना पीना का सामान का सागे भी मिल जाए, जिसका बहुत ज्यादा दुर्घटना बड़ी हो सके। तो अपन कीटनाशक दवाइयों को प्रयोग करते टाइम कई तरह की सावधानियां बरतनी जरूरी है और भी की सावधानियां है आज आप बात करा। कीटनाशक दवाई खरीदता टेम अपन बीम पर लिखा जगह नियम है नहीं बे पढ़ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जगह सो अपन पतो लाग सके का कीटनाशक दवाई कितनी पावर की है और किसी किस्म की है और कितनी जहरीली है। कीटनाशक दवाइयों के पैकेट पर लिखी तिथि यानी कि जकी बिन उत्पादन तिथि है, एक्सपायर तिथि है, वह अपन पढ़ लेनी जरूरी है ताकि अपन बिन काम में लेता टेम अपन ठा लाग जाए का आ दवाई कितनी नुकसान कर सके या फिर फायदो कर सके। अपन जकी दवाई अवधि पार होगी और बिंगी एक्सपायरी डेट खत्म होगी तो अपन बा दवाई कदी भी नहीं खरीदनी चाहिए, कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इस तो अपनों पीछे बेकार जा सके। दवाई छिड़कने से

0: पिला छिड़कने वाला जो का यंत्र है बन अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए किसी भी प्रकार का जो स्प्रिंकलर नोजल है या फिर जो छिड़काव करने वाला दूसरा यंत्र है बन अपन मुंह कदी नहीं खोलना चाहिए, खुला हाथ से भी कदी नहीं खोलना चाहिए। और अपन कई बार किसान भाई लोग यहाँ भी दिखा नहीं कहे मुंह फूंक मार दे तो बात बहुत ही माड़ी बात है, इसे अपन कतई नहीं करना चाहिए। यहाँ करने से क्यों किसान भाइयों की दवाई अपने शरीर के ऊपर गिर जाए, कई बार आंख में पड़ जाए या फिर सांस के द्वारा अपने शरीर में पूक जाए तो नुकसान को अपन सामना करना पड़ सके। इनके अलावा किसान भाइयों दवाई छिड़कने वाला जो कोई व्यक्ति है वो पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए, इनके शरीर पर कहीं भी तरह को घाव या फोड़ो नहीं होना चाहिए, क्योंकि घाव या फोड़ा के ऊपर कई बार ये दवाइयां छिड़कते टाइम अपने पड़ जाए नहीं तो फिर नुकसान हो सके। इनके अलावा दवाइयां को छिड़काव अपने क्या करना चाहिए सुबह या शाम का टाइम ही करना चाहिए। दवाई की किस्म मात्रा फसल की अवस्था का ध्यान में रख गई अपन प्रयोग करनी चाहिए। जे रस चूसने वाला कीड़ा है जिया चेपा है हरा तेलो है सफेद मक्खी है जे ये हुए नहीं तो भी वास्ते अपन क्या करना चाहिए कि फॉस्फीमिडोन मिथाइल डेमोटोन या फिर डाइमिथियोट ये दवाई अपन प्रयोग करनी चाहिए। जे कटन वाला या चबान वाला कीड़ा फसल का मा हुए तो अपन कॉन्टेक्ट जकन अपा उधरविश भी कह दिया वो अपन काम में लेना चाहिए। और किसान भाई दवाई छिड़कते टाइम शरीर को पूरा हिस्सू है वो अपन पूरा ढकेड़ होना चाहिए, जे आंखें पर चश्मा पहनना जरूरी है, हाथों पर रबड़ गज का मोजा है या फिर दस्ताना है बेपैर लेना चाहिए, मुंह पर मास्क लगाए होना चाहिए जैसे क्यों कह मुंह और नाक दोनों ढकेड़ो रहे। और इनके अलावा किसान भाइयों अपने पैरों में मजबूत लंबा बूट है बेपैर लेना चाहिए और सिर के ऊपर टोपी या फिर कपड़ो बांध लेना जरूरी है। दवाई को छिड़काव है वो अपन लगातार नहीं करना चाहिए, बीच बीच में थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। जिस कई बार हो जाए अपन लगातार दवाई छिड़का और अपनों कई बार उबाक आने ला जाए उल्टी आने ला जाए फिर जी मचलन ला जाए तो इसी बात होती हुए तो अपन आराम करना चाहिए। और ज्यादा तकलीफ होती है किसान भाइयों तो तुरंत डॉक्टर जी जाके अपने राय ले लेनी चाहिए, इलाज कराना चाहिए। इन अलावा किसान भाइयों ये बात की भी ध्यान रखनी जरूरी है कि दवाई छिड़कते टाइम अपने बीड़ी है सिगरेट है जर्दो है या फिर खाने पीने की चीजें भी काम में नहीं लेनी है। और जे रोटी पानी खावा चाह पानी पिया तो अपने अच्छी तरह हाथ साबुन धोगे और फिर ही खानो पीनो करना चाहिए। दवाई को छिड़काव अपने हमेशा ही पी दिशा में करना चाहिए जिसकी दिशा का मां हवा चलन ला रही है, विपरीत दिशा में अगर हवा चलन ला रही है तो अपन दवाई नहीं करनी चाहिए। जे विपरीत दिशा में अपन दवाई छिड़कांगा नहीं तो दवाई अपना ऊपर आगे पड़ेगी जो वहां पर नुकसान हो सके। और इनके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी एक बात आ भी कि कीटनाशक जो दवाइयां डब्बा है नहीं बन अपन खाने पीने की चीजों तो दूर रखना ही रखना है। इनके अलावा जो छोटा बच्चा है या फिर पालतू जानवर है बांसु भी अपन दूर रखना चाहिए। और हो सकता किसान भाइयों जी अपन दवाई को प्रयोग करो तो अपन भी डिब्बे जगह हाथों हाथ नष्ट कर देना चाहिए। और खान पीने का जगह बर्तन है भंडा है या फिर जकी चीज का आप दवाई घोलन ला रहे हैं बाल्टी है तो बिना भी अच्छी तरह धोगे साफ करके फिर ही न्यारी रख देनी चाहिए ताकि छोटे टाबरों के या फिर पशुओं के संपर्क में ना आवे। इनके अलावा किसान भाइयों अपने दवाई छिड़कने से पहला कि थोड़ा बहुत खा पी लेना चाहिए ताकि दवाई को जो असर है वो अपने पर डायरेक्ट ना हो। तो हाँ छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के आप दवाई को छिड़काव करना है कि अपनी फसल पर कि अपने स्वास्थ्य पर भी की तरह को विपरीत जो को प्रभाव है वो ना पड़े। तो अब मैं खेत का नहीं चालू, राम राम सा राम राम।
1: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना खुशहाल हो हर किसान अपना।
2: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती हरा वास्ते। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से बोल रहे हैं। श्रोताओ लीजिए अब सुने कार्यक्रम लोक भजन। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सरदारा राम व साथियों का गाया ये लोक भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक भजन। लोक भजन के इस कार्यक्रम में आज आपने सरदारा राम व साथियों का गाया लोक भजन सुना। लीजिए अब सुने कार्यक्रम मानस गान। मानस गान में आज आप सुनेंगे लंका कांड में भाग संख्या 333।

अपनी चतुरंगिणी सेना की अगणित टुकड़ियों के साथ रावण युद्ध भूमि में उतरा है। तरह तरह के रथ तथा वाहनों पर रंग बिरंगी पताकाएं फहरा रही हैं। ऐसी विशाल सेना के पदचाप से इतनी धूल उड़ी है कि सूर्य का प्रकाश लुप्त हो गया है। पवन जैसे ठहर गया है। पृथ्वी आतंकित है। दिशाओं के प्रहरी हाथी डगमगाने लगे हैं। ढोल और नगाड़ों की ध्वनि से दिशाएं प्रकंपित हो रही हैं। रावण रथ पर सवार है, जबकि सामने अपने भीमकाय वानर और रीछ योद्धाओं के साथ श्रीराम पैदल। दोनों पक्षों के सेनानी एक दूसरे को ललकार रहे हैं। विभीषण के मन में शंका घिर आती है कि रथ पर आरूढ़ रावण को श्रीराम किस प्रकार पराजित कर सकेंगे। श्री राम मुस्कुराते हुए उनकी शंका का समाधान करते हैं। युद्ध में विजय

का धर्म रथ की होती है। शौर्य और धैर्य उसके पहिए होते हैं, सत्य और शील उसकी पताकाएं, बल विवेक इंद्रिय शमन और परोपकार उस रथ के अश्व होते हैं जो क्षमा दया और समता की रस्सी से जुते होते हैं।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस गान। मानस गान में आज आपने सुना लंका कांड में भाग संख्या 333, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 और 20 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम सुप्रभात।

श्रोताओं, सुप्रभात का ये कार्यक्रम लेकर आपका दोस्त संजय चौधरी हाजिर है आपके साथ। कार्यक्रम में हम बात भी करेंगे और आपको खूबसूरत फिल्मी नगमे भी सुनवाएंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस चर्चा के साथ कि युवा देश का भविष्य है। जी हाँ, बिल्कुल, युवा जो है आज के वक्त देश का भविष्य है और युवा किसी भी देश की रीड और उसके स्वर्णिम भविष्य के असली कर्णधार होते हैं। उनके जोश, नई सोच और तकनीकी कौशल से भी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव होता है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश की प्रगति काफी हद तक युवाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में निवेश पर निर्भर करती है। देश के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को कई क्षेत्रों में सशक्त बनना जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, एजुकेशन की, किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास आज की सबसे बड़ी मांग है। किताबी ज्ञान तो होना ही चाहिए युवाओं को, उसके साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास भी बहुत जरूरी है, जिसे हम स्किल डेवलपमेंट कहते हैं।

अगर बात नवाचार और स्टार्टअप की हो तो तकनीकी प्रगति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में युवाओं को स्टार्टअप के जरिए खुद को आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का युवा कुशाग्र बुद्धि है, सब बातों को समझता है, नई नई तकनीक है। ऐसे में अगर हम स्वास्थ्य और जागरूकता की भी बात करें तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर ही युवा ऊर्जा का सही उपयोग कर सकता है। नागरिक भागीदारी की अगर बात हो तो सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में युवाओं की सक्रिय भागीदारी से देश का लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत होता है। इन तमाम बातों में, तमाम चीजों में अगर हम तालमेल बैठाकर बात करें या तालमेल बैठाकर अगर युवा चले तो हमारा देश एक नई ऊंचाइयों को छू सकता है, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। तो लीजिए, कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं ये गीत। चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, फिलहाल आप सुने ये गीत।

श्वेता, हम बात कर रहे थे युवा देश का भविष्य। इस बात को लेकर अगर युवाओं की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की बात की जाए तो एक स्वस्थ युवा ही देश को आगे ले जा सकता है। नशे की लत से दूर रहने और शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों से युवाओं को जोड़ा जा रहा है ताकि वे मानसिक रूप से भी मजबूत रह सके। अगर युवा मानसिक रूप से मजबूत होगा तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, युवा स्वस्थ रहेगा। शिक्षा की अगर बात की जाए तो देश हित के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि युवाओं की शिक्षा व्यवस्था पारदर्शी हो। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसी समस्याओं पर सख्ती से रोक लगाकर ही युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। राष्ट्र निर्माण और सामाजिक भागीदारी की बात की जाए तो युवाओं को केवल राजनीति या रोजगार तक सीमित न रखकर समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता जैसे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को जोड़ने और उनको नेतृत्व का जो उनके निखार है उसके लाने के लिए कई संस्थाएं भी काम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत जो देश है वो युवाओं का देश है और युवा जब अपना पूरा जोर लगाता है तो नई इबारत लिख सकता है। युवा ही देश का भविष्य है, इसे संवारने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। शारीरिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में तमाम बातों को लेकर अगर युवा सजग रहे, सचेत रहे तो वो नितांत ही भारत एक युवाओं का सबसे अलग देश होगा और जिसकी सफलता की बातें लोग करेंगे, उदाहरण देंगे कि भारत युवाओं का देश है और वहाँ के युवा बहुत ही एनर्जेटिक हैं। तो कार्यक्रम में लीजिए, अब आप सुनें ये गीत।

श्रोतो, अब हम बात करते हैं ज्ञान शक्ति हमें पवित्र करती है। जी हाँ, बिल्कुल, ज्ञान शक्ति हमें पवित्र करती है, क्योंकि सच्चा ज्ञान हमारे मन के विकारों, अज्ञानता, अहंकार और गलत धारणाओं को दूर करता है। ये चीज़ कब संभव है? जब हमें ज्ञान की जो शक्ति है वो प्राप्त होगी। यह हमें सही और गलत में भेद करने की बुद्धि देता है, जिससे हमारे विचार और कर्म शुद्ध होते हैं। यह धारणा विभिन्न आध्यात्मिक दर्शनों जैसे कि आचार्य प्रशांत के भगवद गीता विवेचन और ईसाई धर्म में पवित्र आत्मज्ञान में गहराई से जुड़ी हुई है। बात अगर विचारों में शुद्धि की जाए तो ज्ञान और समझ बुराई से दूर रहने और सही मार्ग चुनने की मानसिक क्षमता प्रदान करती है। आंतरिक शांति, सच्चा ज्ञान मन को शांत करता है,

जिससे सकारात्मकता और पवित्र जीवन शैली अपनाना आसान हो जाता है। बात अगर सकारात्मक कर्म की करें तो जब ज्ञान, योग और पवित्रता का मेल होता है तो कर्म भी ईश्वरीय और शुद्ध हो जाते हैं। ज्ञान, योग, पवित्रता के बल से ही नई दुनिया की स्थापना होती है।

श्रोताओं, अब हम बात करते हैं पुस्तकों की। पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात एकदम सटीक है। और बिना पुस्तकों के ज्ञान संभव नहीं है। पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र होती हैं, क्योंकि वे बिना किसी स्वार्थ के हमें ज्ञान, प्रेरणा और सही मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। एक सच्चा दोस्त कभी साथ छोड़ सकता है, लेकिन किताबें जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमारा साथ निभाती हैं, हमारा अकेलापन दूर करती हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। मानव इतिहास और संस्कृति में पुस्तकों का महत्व बहुत अधिक गहरा रहा है। किताबें हमें न केवल महान लोगों के विचारों से जोड़ती हैं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी साहस देती हैं। ज्ञान की अगर इनमें अगर हम बात करें तो असीमित ज्ञान, ये ज्ञान का भंडार है, जहां से हमें दुनिया भर की जानकारी मिलती है। दुनिया का इतिहास, दुनिया के इतिहासकार, लेखक, जितनी भी जानकारियां हैं वो तमाम किताबों में जो लिखी गई हैं, उन किताबों को हम अगर पढ़ते हैं तो ये

बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है, और इसीलिए तो कहा जाता है कि किताबें ही तो हमारा सच्चा मित्र है, क्योंकि ये हमें पूरे इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं, और वो इतिहास जो सुनहरे अक्षरों में किताबों में लिखा गया है जिसे हम पढ़ते हैं। मार्गदर्शन की अगर बात करें तो कठिन समय या दुविधा में अच्छी पुस्तकें हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में जब मन उदास होता है या हम घबराते हैं तो ऐसे समय में किसी अच्छी पुस्तक और मार्गदर्शक बातों को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें हौसला मिलता है। संस्कार और चरित्र की बात करें तो महापुरुषों की जीवनी और अच्छी कहानियां हमें अच्छे संस्कार और मानवीय मूल्य सिखाती हैं। बिल्कुल, ये तमाम बातें, जो तमाम चीज़ें हैं, वो हम एक अच्छी पुस्तक, अच्छी किताब के सहारे ही पढ़ सकते हैं, उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, उनका अनुकरण कर सकते हैं। और अगर हम किताबों को पढ़ेंगे, उनका ज्ञान अपने जीवन में उतारेंगे, तो नितांत हम एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को है। लीजिए अब सुने हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार। समाचार आप सुनेंगे हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
6: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई

0: दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
2: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
3: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में JPSC JSSC परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, CBI जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन

0: और आमरण अनशन जारी रहेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
3: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बछौरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांति मोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोक झोंक और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्ते की पहली सुर्खी है पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है, संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है, मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है,

0: Ashay's Fopan Masala. Under the headline, women are second to none in India's skill-building vision, an op-ed in Hindustan Times writes about the fact that women comprise over 56% of certified candidates under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, demonstrating that aspiration for technical mastery is universal. And finally, the Pioneer carries a story under the headline, Delhi unveils four tourism circuits, presenting the national capital as an integrated tourism experience and develop it as a destination city for a transit hub. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan flags off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic, West Bengal today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज राज्यसभा में केरला रियासत के नाम को तब्दील करने वाला केरला तब्दीली नाम बिल 2026 बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। लोकसभा में कानों और मादनियात की तरक्की और इंजिबात से मुतालिक तरमीमी बिल को गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त का इजरा करेंगे। नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने भारत मंडपम में हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मशरकी राजस्थान, वस्ती महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगाई मगरबी बंगाल में आज शदीद बारिश से मुतालिक अलर्ट जारी किया गया है। और नाइजीरिया के लागोस में जारी दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय तलवारबाजों करण सिंह, शर्जिन शेंतीमोल और तनिष्का खत्री ने सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज राज्यसभा में केरला रियासत नाम तब्दीली बिल 2026 को बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। लोकसभा ने इस बिल को कल मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में कौमी इमदाद बहामी तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 को भी आज बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। लोकसभा में कानों और मादनियात की तरक्की और इंजिबात से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को आज गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
3: केरला तब्दीली नाम बिल 2026 आइन के पहले शेड्यूल में रियासत केरला के नाम को केरलम नाम से तब्दील करेगा। इस बारे में कानून साज असम्बली ने जून 2024 में एक करारदाद मंजूर की थी। केरला कानून साज असम्बली की 2026 में मंजूर हुई करारदाद में मरकज से केरला रियासत के नाम को केरलम करने की दरख्वास्त की गई थी। करारदाद में कहा गया है कि मलयालम जबान में रियासत का नाम केरलम है, जबकि आइन के पहले शेड्यूल में इसे केरला लिखा गया है। इस दौरान कानों और मादनियात की तरक्की और इंजिबात से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 का मकसद कानों और मादनियात की तरक्की और इंजिबात से मुतालिक 1957 के कानून में तरमीम करना है। वहीं इस बिल का मकसद भारत के कानकनी के शोबे को ज्यादा मौसर, सरमायाकारी के लिए ज्यादा साजगार और अहम मादनियात के लिए मुल्क की बढ़ती जरूरतों से हम आहंग करना भी है। दिल्ली से दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त भारत गणराज्य के विजय मेरा जीवन मेरे संघर्ष का इजरा करेंगे। वजीर आजम इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। ये खुदनविश्त साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की जिंदगी के सफर, उनके तजुर्बों, जद्दोजहद और हुसूलियाबियों का इंतहाई जाती नौयत का खाका पेश करती है। साथ ही उनकी शुरुआती जिंदगी से लेकर भारत के 14वें सदर जमहूरिया के तौर पर अवामी जिंदगी में उनकी खिदमात का अहाता करती हैं। ये किताब उन इकदार, तजुर्बों और हालात से भी वाकिफ कराती है जिन्होंने साबिक सदर जमहूरिया के सफर और अवामी खिदमत को नुमाया किया।

0: की डाका वायुबाली की रस्म शुरू हो गई है। बेशतर मंदिरों में ये रसूमात सुबह 3:30 बजे और 5 बजे के दरमियान शुरू हुई। मलयालम माह करक्की डाका नए चांद के दिन को मरुमीन के लिए रसूमात अदा करने के लिए हिंदू रिवायत में इंतहाई मुकद्दस तसव्वुर किया जाता है। मुख्तलिफ देवास्वोम बोर्ड्स और मंदिरों ने अकीदतमंदों के लिए ज़बरदस्त तैयारियां की हैं। बारिश के मद्देनज़र नदियों के किनारों और साहली इलाकों में सिक्योरिटी का इजाफी बंदोबस्त किया गया है। अनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी राजस्थान, वस्ती महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और गंगाई मगरबी बंगाल में आज शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्सों, सिक्किम, ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल, मशरकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मगरबी मध्य प्रदेश, मगरबी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अंडमान और निकोबार जजायर में अगले 2 से 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कल तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर मानसून की लगातार बारिश की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रखना पड़ने का सिलसिला जारी है। कई मकामात पर मिट्टी के तोदे खिसकने और पत्थरों के गिरने की वजह से आमोदरफ्त मुतासिर है और लोगों को बिजली और पानी फराहमी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में अगले 12 घंटे के दौरान शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर मकामात पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में मामूल की ज़िंदगी मुतासिर हुई है। मंडी में ज़िला इंतजामिया ने मूसलाधार बारिश की वजह से मिट्टी के तोदे खिसकने और पत्थर गिरने के ख़तरे के पेश नज़र मंडी और कुल्लू के दरमियान कौमी शाहरा 21 और मंडी और जोगिंद्रनगर के दरमियान कौमी शाहरा 154 पर कल रात से मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त पूरी तरह मुअत्तल कर दी है। इसके अलावा रियासत की दीगर 204 सड़कों को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान शिमला के महकमे मौसमियात ने 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में तेज़ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासती हुकूमत ने लोगों से अपील की है कि वो चौकस रहें और मकामी इंतजामिया की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन जारी होने वाली हिदायत पर अमल करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: इधर ओडिशा में एक बार फिर दूर दराज के मकामात तक बारिश होने का इम्कान है, जबकि खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव का हल्का बन रहा है। भारत के महकमे मौसमियात ने रियासत के ज़्यादातर मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश की पेशगोई की है। हालांकि इक्का दुक्का मकामात पर कहीं तेज़ और कहीं बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। महकमे ने आज अंगुल और कियूंझार अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, कटक और संबलपुर समेत दीगर कई ज़िलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो समंदर में ऊंची लहरें उठने के मद्देनज़र चौकस रहें। ज़िरात और किसानों के बहबूद के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में हरियाली अमावस्या के मौके पर बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुल्क भर में जनाब चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े हज़ारों कारकुन भी उनकी अपील पर अपने अपने गाँवों और शहरों में इस मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुल्क में 50,000 से ज़्यादा पौधे लगाने का इज्तिमाई अहद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 19 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाकों से कहा है कि वो कैंसर को काबिल इत्तला मर्ज़ करार देने पर गौर करें, ताकि मर्ज़ का जल्द पता लगाया जा सके और मरीज़ों के मुनासिब इलाज को यकीनी बनाया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली एक बेंच ने कल ये हिदायत जारी की। अदालत को बताया गया था कि 36 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाकों में से 17 ने पार्लियामानी क़ायमा कमेटी की सिफारिशात के बाद पहले ही काबिल इत्तला बीमारी के तौर पर कैंसर को नोटिफाई कर दिया है। मरकज ने अदालत को बताया कि सेहत रियासत का मौजू है और वाजे किया कि 17 रियासतों ने पहले ही कैंसर को नोटिफाई कर दिया है। नाइजीरिया के लागोस में जारी दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत की तमगे जीतने वाली मुतासिर कुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। मर्दों के सीनियर मुकाबलों में कल रात भारत के करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने मुल्क के लिए सोने के तमगे जीते। वहीं मर्दों के सीनियर फॉइल मुकाबले में भारत के तलवारबाज तेजस पाटिल ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कांस्य का तमगा जीता। इधर खवातीन भारतीय तलवारबाजों ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और खवातीन के सीनियर एपी मुकाबले में 3 तमगे जीते। इनमें तनिषा खत्री का सोने का तमगा और उनकी हमवतन खुशी दाभाड़े का चांदी का तमगा शामिल है। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने

0: साथ हैं अब्दुल मालिक।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी से शाय होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी के लिए मुंतखब किया है। रोजनामा प्रताप की एक खबर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरे संघर्ष का इजरा करेंगे। इसी अखबार ने दिल्ली असेंबली में कौमी गीत वंदे मातरम गूंजने और वजीर आला रेखा गुप्ता और मेम्बरान असेंबली के तिरंगा लिए हुए असेंबली पहुंचने को बड़ी खबर बनाया है।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज राज्यसभा में केरला रियासत के नाम को तब्दील करने वाला केरला तब्दीली नाम बिल 2026 बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। लोकसभा में कानों और मादनियात की तरक्की और इंजबात से मुतालिक तरमीमी बिल को गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त का इजरा करेंगे। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने भारत मंडपम में हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मशरकी राजस्थान, वस्ती महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगाई मगरबी बंगाल में आज शदीद बारिश से मुतालिक अलर्ट जारी किया गया है। और नाइजीरिया के लागोस में जारी दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय तलवारबाजों करण सिंह, शेरजिन चैंतीमोल और तनिष्का खत्री ने सोने के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, आप हमें हमारे FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर भी सुन सकते हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं ये भक्ति रचना। इस भक्ति रचना में आप सुनेंगे सुरेश वाडेकर और सीमा मिश्रा की आवाज़ में कुछ दोहे।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आपने भक्ति रचनाओं के दोहे सुने। इसे स्वर दिया था सुरेश वाडेकर और सीमा मिश्रा ने। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दीजिए अब सुने हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक आज जयपुर में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से अब तक अनुसूचित जाति जनजाति के 8 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हुए। प्रदेश में मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन सेतु ऐप लागू किया जाएगा और पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश से बांधों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज। आज 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में आज ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हिस्सा लेंगी। बैठक में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को अधिक मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वे वंदे भारत ट्रेन से कल नई दिल्ली से जयपुर पहुंची। यात्रा के दौरान उन्होंने सहयात्रियों से बातचीत की, साथ ही उन्होंने युवाओं से वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और युवा वर्ग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सामाजिक न्याय राज्य सरकार की नीतियों की आत्मा है और वर्चित वर्गों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने ये बात जयपुर में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान कही। उन्होंने सेवानिवृत्त अधिकारियों से उनके प्रशासनिक अनुभव का उपयोग युवाओं के मार्गदर्शन के लिए करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से करीब 4.25 लाख और अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से 4,30,000 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 887 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कल ही जयपुर को पीएम ई बस सेवा के तहत 16 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी। उन्होंने शासन सचिवालय में बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई बसों के संचालन के लिए बस स्टैंड, चार्जिंग पॉइंट सहित जरूरी ढांचा विकसित किया जा रहा है।
2: हमारे बसें लगातार आ रही हैं और लगभग इनकी संख्या 1,000 से ऊपर हो। जयपुर और भीलवाड़ा को 16 पीएमई बसें समर्पित की गई हैं और उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा, वहां भी हमारी ये बसें जा रही हैं। हम चाहते हैं कि इन बसों के माध्यम से जो एक यातायात का जिस तरह से व्यक्तिगत वाहनों पर एक लोड है, समय के हिसाब से इन बसों का संचालन होगा तो आरामदायक सुविधा भी मिलेगी, वो वहां पहुंचेंगे और एक पर्यावरण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो भी पूरी होगी।
1: प्रवर्तन निदेशालय की जयपुर क्षेत्रीय शाखा ने नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी मामले में सुभाष चंद्र बिजनौरिया को गिरफ्तार किया है। ईडी के कल जारी किए गए बयान के अनुसार इस मामले में सुभाष चंद्र बिजनौरिया, रणवीर बिजारनिया और उनके सहयोगियों पर रियल एस्टेट के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। इन लोगों ने निवेशकों से 2,676 करोड़ रुपए जुटाए थे। आरोपी सुभाष चंद्र को जयपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें कल तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरलम नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे।

0: लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित कर दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी आज विचार और पारित होने की संभावना है। लोकसभा में खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक विचार और पारित होने के लिए पेश किया जाएगा। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन सेतु ऐप लागू किया जाएगा। इस ऐप के जरिए मरीज की जरूरी जानकारी उसके पहुंचने से पहले ही संबंधित अस्पताल तक पहुंच जाएगी, जिससे उसके इलाज की तैयारी पहले से की जा सकेगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में उन्होंने मातृ मृत्यु के मामलों की समीक्षा करते हुए उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच और निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों की जांच और जरूरत पड़ने पर उनके निशुल्क उपचार में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में लंबित पदस्थापन अब राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने पदस्थापन प्रक्रिया को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और आवश्यकता आधारित बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नव चयनित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पदस्थापन भी इसी पोर्टल से कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज हेल्थ पोर्टल से पदस्थापन होने पर उपलब्ध मानव संसाधन का बेहतर उपयोग होगा और अधिक मरीज भार वाले संस्थानों में चिकित्सा सेवाएं मजबूत होंगी। उन्होंने अधिकारियों को नई भर्ती से चयनित और पदोन्नत कार्मिकों के लंबित पदस्थापन जल्द पूरा करने को कहा। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, विभिन्न विकास कार्यों, केंद्र सरकार से स्वीकृत एक्सप्रेसवे परियोजनाओं और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण की समीक्षा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि स्वीकृतियों के अभाव में लंबित परियोजनाओं के लिए जल्द ही कार्य योजना बनाई जाएगी और उन पर काम किया जाएगा।
1: अभी सभी बातों पर, सभी मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है और जो अगर कोई कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कमी है, कहीं कुछ है, तो उन पे एक्शन भी लेना है। 9 एक्सप्रेसवेज है, उन पे बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ कि NHAI ने जो ले रखा है उन पे भी अभी तक क्या हुआ, कहाँ पर रुकावट है, फॉरेस्ट में है या और कहीं है, उन पे भी अब हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जो स्टेट PWD कर रहा है उस पे भी हम लोग जल्द से जल्द अब इन पे जहाँ जहाँ पर कहीं भी कहीं रुकावट है उस रुकावट को दूर किया जाए और जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई की जाए।
0: उधर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी कल ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने राज्य में ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को गति देने के निर्देश दिए। साथ ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3,00,000 घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के कार्यक्रम को भी तेजी से आगे बढ़ाने को कहा। और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से कई स्थानों पर बरसात का सिलसिला जारी है। सवाई माधोपुर में सुबह से ही हल्की से मध्यम बरसात हो रही है। बारिश से जहां एक ओर जल स्रोतों में पानी की अच्छी आवक हुई है, वहीं निचले इलाकों में जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाड़ौती और चंबल नदी घाटी क्षेत्र में 3 प्रमुख बांधों गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर में जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं शिवालिक की पहाड़ में बारिश के बाद घग्गर नदी के नाली बेड में पानी की आवक शुरू हो गई है। विभाग ने आज भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और सवाई माधोपुर के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। वहीं शेष जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट है। यहां हल्की से मध्यम बरसात का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार कल से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में आज ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा

0: राज्य सरकार की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से अब तक अनुसूचित जाति जनजाति के 8 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हुए। प्रदेश में मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन सेतु ऐप लागू किया जाएगा और पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश से बांधों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज, आज 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:10 और 22 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम मरुमंगल। मरुमंगल के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मीनाक्षी शर्मा की गाई कुछ लोक रचनाएं।

0: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनो जिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मरुमंगल आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। इस कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं मीनाक्षी शर्मा।

श्रोताओ, इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल से सुन रहे हैं कार्यक्रम मरुमंगल। मरुमंगल में हमारे आज के कलाकार हैं मीनाक्षी शर्मा।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मरुमंगल। मरुमंगल के इस कार्यक्रम में मीनाक्षी शर्मा की गाई लोक रचनाएं आपने सुनी। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए अब सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं कुछ फिल्मी युगल गीत।

श्रोताओ, फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में लीजिए अब सुने तोहफा फिल्म का ये गीत स्वर किशोर कुमार और आशा भोसले की।

श्रोताओं कार्यक्रम में लीजिए अब सुने फिल्म हीरा पन्ना का ये गीत, स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर के हैं। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत आर डी बर्मन का।

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में आज आपने फिल्मी युगल गीत सुने। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम आज के फनकार। इस कार्यक्रम में आपको फिल्मी नगमे सुनवाएंगे और इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार होंगे कुमार शानू। कुमार शानू की आवाज़ में गाए कुछ फिल्मी नगमे इस कार्यक्रम में आप सुने।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं कुमार शानू। लीजिए, अब सुने सलामी फिल्म का ये गीत। इसे स्वर दिया है कुमार शानू और आशा भोसले ने।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं लीजिए सुने इश्क फिल्म का ये गीत, स्वर कुमार शानू और विभा शर्मा के हैं। इसके गीतकार हैं राहत इंदौरी और संगीत अनु मलिक का।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के फनकार। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं कुमार शानू। लीजिए कार्यक्रम में अब सुने बंदिश फिल्म का यह गीत। स्वर कुमार शानू और अलका याग्निक के हैं। इसके गीतकार हैं समीर और संगीत आनंद मिलेंद का।

लीजिए अब सुने दिल कितना नादान है। इस फिल्म का ये गीत स्वर कुमार शानू और अलका याग्निक के हैं। इसके गीतकार हैं राहत इंदौरी और संगीत अनु मलिक का।

श्रोता अभी आज के फनकार कार्यक्रम में कुमार सानू की गाए कुछ चुनिंदा गीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

नमन उस मिट्टी को जिसने वीरों को जन्म दिया, नमन उन बलिदानों को जिन्होंने हमें ये वतन दिया, जिन्होंने हंस कर दे दी जान मगर झुकने नहीं दिया हिंदुस्तान। ये तिरंगा यूं नहीं लहराता आसमान में, इसके रंग बसे हैं शहीदों के अरमान में। ये देश हमारा है, ये तिरंगा हमारा है, और भारत की आन बान शान पर हम सबको नाज है, हम सबको अभिमान है। कार्यक्रम सैनिकों के लिए सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त स्मृति का सस्नेह नमस्कार। लीजिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं रंग दे बसंती फिल्म से, आवाज़ दलेर मेहंदी और साथियों की है। गीत के बोल प्रसून जोशी ने लिखे हैं और संगीत ए आर रहमान का है।

लीजिए अब सुनते हैं वीरजारा फिल्म से अगला गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की मिलीजुली आवाजों में, और साथी कलाकार है गुरदास मान। शब्द रचना जावेद अख्तर की है और संगीत मदन मोहन का है। लीजिए सुनते हैं ये गीत।

लीजिए अब सुनते हैं सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये गीत चमेली फिल्म से। गीत को लिखा है इर्शाद कामिल ने और संगीत संदेश सांडल्य का है।

लव फिल्म से ये गीत सुन रहे हैं आप। एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की मिलीजुली आवाजों में। मसरू की शब्द रचना है और धुन आनंद मिलिंद की है।

श्रोताओं, अभी एक गीत आपने तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म से सुना। आवाज़ें अलका याग्निक और सोनू निगम की थी। गीत के बोल सलीम बिंजोरी ने लिखे थे और संगीत हैप्पी का था। अगला गीत आपको हरिहरन की आवाज़ में सुनवा रहे हैं, जिद्दी फिल्म से। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिलीप सेन का है।

श्रोता अभी सैनिकों के लिए कार्यक्रम सुन रहे हैं। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं देवदास फिल्म से। आवाज़ें उदित नारायण और श्रेया घोषाल की है, शब्द रचना नुसरत बद्र की है और संगीत इस्माइल दरबार का है।

सत्या फिल्म से ये गीत सुन रहे हैं आप सुरेश वाडेकर और आशा भोसले की मिलीजुली आवाज़ों में। गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत विशाल का है।

फैंटेसी। लीजिए अब सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में साथिया फिल्म से ये गीत। शब्द रचना गुलजार की है और संगीत ए आर रहमान का।

ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की और उनके प्रसारण समय की। आज दोपहर 3 बजे श्रोता सुनेंगे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संसद समीक्षा के कुछ प्रतिपादित अंश श्रोता सुनेंगे आज रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से जिले की चिट्ठी श्रोता सुनेंगे आज शाम 6:40 पर। अब से कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

सुगम संगीत का समय रहेगा आज दोपहर 12:30 पर, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे चंदन दास की गायी कुछ चुनिंदा गजलें, और सुगम संगीत श्रोता सुन सकते हैं आज रात्रि 9:15 पर। खेत खलियान का समय रहेगा आज दोपहर 12:50 पर, और इस कार्यक्रम का विषय रहेगा गुड़ के फायदे, और शाम 7:00 कार्यक्रम रहेगा चौपाल। ये कार्यक्रम हमारे श्रोताओं के पत्र, व्हाट्सएप संदेशों और ईमेल पर आधारित रहेगा, साथ ही बाजार भाव व मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। प्रस्तुति रमेश चावरिया की रहेगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं आज दोपहर 2:30 पर, रात्रि 8:15 पर होगा एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। विशेष मनभावन का कार्यक्रम जो कि हमारे श्रोताओं के फेसबुक फरमाइश पर आधारित रहेगा, इस कार्यक्रम का समय रहेगा आज रात्रि 10:00, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति राजेंद्र शर्मा की रहेगी। कार्यक्रम महिला जगत का समय रहेगा आज दोपहर 1:05 पर, और आज ये फरमाइशी कार्यक्रम श्रोताओं के संदेशों पर आधारित रहेगा, प्रस्तुति अलका वर्मा की रहेगी। और सिराइकी का समय रहेगा आज शाम 6:05 पर। श्रोता ये थे हमारी आज की सभा के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त स्मृति का सस्नेह नमस्कार। श्रोताओं, एक नन्ही सी चिड़िया घोंसले से देखती है दुनिया, फिर एक दिन अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उस घोंसले को कहीं दूर छोड़ वो निकल पड़ती है अपने जीवन की यात्रा पर। क्या दोस्तों, जीवन का सार एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना है? जी नहीं, हम हर रोज़ गंतव्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन उस चिड़िया की तरह जब हम चलते हैं तो अपने साथ सुख दुख भरे क्षण बीनते हैं, समेटते हैं हम हजारों अनुभव और बुनते हैं हर रोज़ एक नई कहानी। कभी पहाड़ों की ठंडी हवाएं हमें बुलाती हैं तो कभी समुद्र की लहरें अपने पास बैठने का न्योता देती है, तो कभी छोटी सी गांव की पगडंडी हमें अपनी ओर खींच लेती है ना दोस्तों। ज़िंदगी एक किताब की तरह, और जो लोग घूमते नहीं वे इस किताब का सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ पाते हैं।

वाह, सफर हो और साथ में ऐसा गीत हो तो रास्ते भी जैसे गुनगुनाने लगते हैं। जब हम किसी यात्रा पर निकलते हैं तो मंजिल से ज्यादा खूबसूरत तो रास्ते लगने लगते हैं। खिड़की के बाहर बदलते हुए दृश्य, रास्ते के किनारे पेड़ और छोटे-छोटे शहर और गांव, कहीं चाय की दुकान पर कुछ पल रुकना और अनजान लोगों के साथ दो बातें कर लेना, यही तो सफर की खूबसूरती है। जिस तरह एक नदी की धारा सागर से मिलने के लिए कभी ऊबड़ खाबड़ रास्तों से तो कभी घुमाव और भंवर लेते हुए अपने सागर रूपी मंजिल तक पहुंच जाती है, वैसे ही कभी समुद्र के पार, पर्वतों के पीछे, जंगल के परे जाने की जिज्ञासा मनुष्य के अंदर सपनों का रूप ले लेती है। और कभी इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए तो कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए वह पथिक बनकर एक जगह से दूसरे जगह तक की यात्रा करते हैं।

दोस्तों, हमारे देश में भ्रमण करने की बहुत सी जगहें हैं। हर नई जगह हमें नई वेशभूषा, नई भाषा, नए खान पान से परिचित करवाती है। हम किसी भी यात्रा के दौरान जो देखते हैं, महसूस करते हैं, आत्मसात करते हैं, वो हमारे जीवन भर की पूंजी हो जाता है। वो अनुभव जो हमने घर से निकलकर बटोरे हैं, वो हमारे भीतर जगह बना लेते हैं। हम सिर्फ दुनिया ही नहीं देखते, बल्कि दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया भी बदल जाता है। श्रोताओं, आप किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाकर हम अपने इतिहास को याद कर सकते हैं। किसी प्राकृतिक स्थल पर जाकर प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ता है। और किसी नए शहर में जाकर हमें वहाँ की भाषा, खान पान और संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलता है।

0: श्रोताओं, अक्सर हम खुशी के बहाने ढूंढते रहते हैं। कई बार हम अच्छा खाना खाकर खुश होते हैं, तो कई बार ढेर सारी शॉपिंग करके, तो कई बार यात्राओं का अनुभव कर, क्योंकि एक जगह पर रहते रहते हम कई बार ऊब जाते हैं। हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना हमें अनजान लोगों पर विश्वास करना सिखाता है। नई जगह हमें हमारे दोस्तों और अपनों के आराम के बीच से बाहर निकालकर संतुलन करना सिखाती है।
1: जिंदगी

जब भी हम कोई सफ़र तय करें तो हमें अपनी मेहनत, सोच विचार, दिल दिमाग और कल्पनाओं से उस सफ़र का रोमांच अपने साथ भर कर रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम याद करें तो हमें उस जगह से जुड़ी यादें हमारे मन को गुदगुदाती रहे। तो दोस्तों, अगली बार ज़िंदगी थोड़ी थकी थकी लगे तो शायद आपको किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस एक छोटे से सफ़र की ज़रूरत है। मंजिल मिल जाए तो सफ़र ख़त्म हो जाता है, लेकिन खूबसूरत सफ़र ज़िंदगी भर याद रहता है। घूमते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत सफ़र को यादगार बनाते रहिए।

इसी के साथ कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज आपको सुनवाएंगे चंदन दास की गायक कुछ चुनिंदा गजलें।

0: श्रोता अभी सुगम संगीत के अंतर्गत चंदन दास की गायक कुछ चुनिंदा गजलें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेत खलियान, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
0: लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेत खलियान और आज इस कार्यक्रम का विषय है गुड़ के फायदे।
2: राम राम किसान भाइयों, बात करें आप खाने पीने की और खाने पीने में जी आप रोजमर्रा की चीजें में देखा तो अपने घर बरताऊ की चीजें हैं बाग में जिया मीठे की बात करा तो मीठा में जिया अपने घर में रसोई गमा अपने चीनी रख है, गुड़ रख है, शक्कर रख है। तो आज आप बात कर सिया गुड़ और चीनी गमा के फर्क है और ज्यादा अपने स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद किस्यु है। भाई लोगों, गुड़ एक प्रकार को मीठो खाद्य पदार्थ है जकन आप जकन गन्ने का रस क्यों बनाया जाए। इनके लिए गन्ने के रस ने की बड़े बर्तन में रखिए और आग पर गर्म करके और बाद गमा जो गुड़ तैयार करीजिए तो वो गुड़ जो को है बिना पा देसी गुड़ माना। और अपना बड़ा बुजुर्ग और डाकदर भी आई बात के वह स्वस्थ रहने के लिए चीनी से दूरी बनानी जरूरी है। देखो जाओ तो आ बात सही भी है क्योंकि चीनी जो की है वह कई बीमारियों की जड़ है, लेकिन खाने के बाद गमा थोड़ो मीठो खानो कई भाई लोगों की आदत है। इसे में चीनी एक विकल्प जो को है वो आपने चुन लिया, लेकिन गुड़ जो को है वो बहुत बढ़िया है जकन आप खा गए और आपने जो को स्वास्थ्य है आपने जो को हाजमो है वो बेहतर बना सका, आपने जो को पाचन तंत्र है बिना भी आप ठीक कर सका। इन सागे गुड़ गमा मिलने नाल की औषधीय गुण है और फायदा भी है, लेकिन ज्यादा सेवन करने से गुड़ का कई नुकसान भी है, ई बात को भी अपन ध्यान रखना चाहिए। तो भाई लोगों, जी बात करें आप गुड़ गमा पौष्टिक तत्वों के तो कई भी खाद्य पदार्थ को जो को महत्व है वो आप बिगमा मौजूद जो का पोषक तत्व है बांसू आप जान सका। गुड़ में भी ऐसा कई पोषक तत्व हो जका आपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। प्रति 100 ग्राम जो को गुड़ है भाई लोगों 367

किलो कैलोरीज की ऊर्जा है बा अपने शरीर ने स्वास्थ्य ने मिले है। और इन अलावा 88.67 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 83 मिलीग्राम कैल्शियम, 10 मिलीग्राम लौह तत्व और 1213 मिलीग्राम पोटेशियम और 8 मिलीग्राम सोडियम को जो समावेश है वो गुड़गा में हुआ है, जो को अपने स्वास्थ्य के लिए बड़ो फायदेमंद हुआ है। इन अलावा थाना गुड़गा कई और भी फायदा बता दें, जहाँ गुड़गा में कई औषधीय गुण जका है बे हुए और जगह कारण गुड़ खाने से अनेक बीमारियां जकी है भी दूर हो जाए और कई तरह का फायदा जगह है वे भी अपने स्वास्थ्य ने हुए। पाचन के लिए भाई लोगों अपने गुड़ को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और लोग भोजन के बाद का वहां

बे हुए और जगह कारण गुड़ खाने से अनेक बीमारियां जकी है भी दूर हो जाए और कई तरह का फायदा जो है वे भी अपने स्वास्थ्य ने हुए। पाचन के लिए भाई लोगों अपने गुड़ को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और लोग भोजन के बाद का वहाँ मीठा खाना पसंद करे, इसे वहाँ चीनी से बनी कोई भी चीज की है वह अपने नहीं खानी चाहिए और बिंग जगह पर अपने ज्यादा से ज्यादा गुड़ को जो सेवन है वो करना चाहिए। जे जगह भाई लोग अभी कई बार रोटी खा ले या फिर कोई और चीज खा ले तो अपने मुंह साफ करने के लिए केक रहनी क्या थोड़ा सा मीठो खा लिया तो अपने चीनी कम से कम खानी चाहिए, लेकिन बिंग जगह पर अपन गुड़ खावा तो अपना स्वास्थ्य जो है वो बढ़िया और बेहतर बने रहो। इस भाई लोगों को पाचन जो है वो अच्छो बने रहो और गुड़ का सेवन करने से शरीर का मां पाचन क्रिया है वह भी बढ़िया तरीके से काम करनी शुरू कर देगी। इव जैसे गुड़ का कई फायदा है जब आप गुड़ खा गए ले सका। अब बात करें जो एनीमिया की, एनीमिया एक इशू रोग है जकन आप खून की कमी वाला रोग भी कहते हैं। कई बार भाई लोगों में खून की कमी हो जाए, कई जगह ऐसी माताओं बहना है भाई बंधु है बुजुर्ग जगह है बंगा हाथ पैर में दर्द रहने लग जाए तो आप या मानस कहाँ के कोई न कोई अड़कास कोई न कोई क्रिस्ट जकी है अपने शरीर गमा है तो आपने गुड़ को जो सेवन है वो जरूर करना चाहिए। एनीमिया की बात करें तो एनीमिया के दौरान शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं जकी है भी कम हो जाए, इस थकान और कमजोरी का लक्षण जो है भी अपन दिखाई देने लग जाए और ज्यादातर भाई लोगों एनीमिया की जो समस्या है लोह तत्व की कमी का कारण हुआ है। और आपने जो विशेषज्ञ है आप बात बताया कि एनीमिया से बचाव करने के लिए आपने जो भोजन है आपने जो खानो पीणो है बिंग माँ लोह युक्त जो गुड़ है और इंग सागे जगह दूसरा खाद्य पदार्थ है अपने शामिल करना चाहिए। और इंग अलावा बजरंगा माँ रिफाइंड शुगर की जगह अपने गुड़ को इस्तेमाल मीठे के तौर पर कर सका तो अपन ज्यादा फायदा हो सी। अब जी लीवर की बात करें तो लीवर ने बढ़िया और सुधारने के लिए गुड़ अपने बहुत बढ़िया काम करे। पहले वो गुड़ खाने का फायदा माँ लीवर ने डिटॉक्सीफाई यानी जगह विशेला पदार्थ है बे आपने शरीर गमा जगह जमा हो रहा है बे बारे निकलना शुरू हो जाए। गुड़ गमा मौजूद जगह पोषक तत्व है जगह शरीर गमा टॉक्सिक चीजा ने बाहर निकालना गमा सहायक हुआ है। इनके अलावा गुड़ का सेवन से लीवर ने अपा बढ़िया बनास कर बिने साफ करना गमा भी आपने लीवर ने मदद मिले। अब जिया रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी गुड़ ने बहुत बढ़िया एक विकल्प मानी जाए तो गुड़ को सेवन जो है वो अपने जो इम्यूनिटी पावर है प्रतिरक्षा प्रणाली है बिन मजबूत करने के लिए अपने गुड़ को ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। भाई लोगों कई जगह आपने गुड़ का कारीगर है वे गुड़ बनाता टेम आंवला को जो पाउडर है वो कई बार इस्तेमाल करे इसे गुड़ गमा विटामिन सी की जो मात्रा है बहुत ज्यादा हुआ है और अपने स्वास्थ्य के लिए बढ़िया मानी चाहिए। भले वो गुड़ का और भी कई फायदा है जहाँ ब्रोकाइटिस की जो समस्या है भी आपने राहत मिल सके। आपने जगह विशेषज्ञ भी आ बात बताया कि गुड़ में कई ऐसा गुण पाया जाए जगह फेफड़ा में जो इन्फेक्शन है तो बिना भी दूर करना का काम जो है वो गुड़ करे और खून साफ करना का काम भी आपने गुड़ जो है वो बढ़िया तरीका शुरू करे। और भाई लोगों रक्तचाप जकन है रक्तचाप ने नियंत्रित करने खातर गुड़ जो है वो बढ़िया मानी जाए क्योंकि इनमें आयरन की मात्रा बढ़िया हुआ है। ब्लड प्रेशर है बिन बढ़िया तरीके से बेहतर बनाने के लिए गुड़ जो है वो आपको बहुत बढ़िया काम करे। इनमें कई ऐसा गुण हुआ है जका अपने ब्लड प्रेशर ने सही रखने का काम करे। और भाई लोगों के अलावा गुड़ जो है वो शरीर की कोशिकाओं में या एसिड को जो संतुलन है तेजाब को जो संतुलन है वो भी बना के रखे जिस अपने रक्तचाप जो है वो नियंत्रित रहे। आपने जो हृदय है बिंगे लिए भी गुड़ जो है वो बढ़िया मानी जाए। हृदय ने स्वस्थ रखने खातर गुड़ का कई फायदा देख सका आप जहाँ इनमें मैग्नीशियम है पोटेशियम है सेलेनियम है मैग्नीज है जिंक है इसे पोषक तत्व जो है भी अपने हृदय के लिए बहुत बढ़िया है। और इनके अलावा भाई लोगों ऊर्जा को एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाए गुड़ ने तो शरीर ने ऊर्जा प्रदान करने के लिए गुड़ को अपने सेवन करना चाहिए और गुड़ गमा ऊर्जा की मात्रा है वह बहुत बढ़िया पाई जाए। भाई लोगों इस मिलन वाली जी की ऊर्जा है वह आदमी ने दिन भर एकदम स्वस्थ और तरोताजा रखा है और गुड़ जो है वो धीरे धीरे पचा जो लंबे टाइम तक ऊर्जा दें तो रहे। और आपने जो की त्वचा है बिंग लिए भी गुड़ बढ़िया मानी जाए तो आपने ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। कई बार आप देखे कर कई तरह जगह चर्म रोग है कई तरह की बीमारियां है कई तरह की एलर्जी है भी आपने चमड़ी के माध्यम खाने मिला तो गुड़ जो है वो बहुत बढ़िया मानी जाए का आप थोड़ा थोड़ा दिन में या फिर जब भी आप खाना खावा जब भी अपन टाइम मिला तो थोड़ा सो जो गुड़ है वो जरूर खाना चाहिए। और इनके अलावा बाड़ों के लिए भी बहुत बढ़िया गुड़ ने मानी जाए भाई लोगों गुड़ जो है वो औषधीय गुण के कारण बाड़ों के लिए एक त्रिया शू दवा को काम करे तो कई जगह भाई लोग है जगह में आयरन की कमी से बाल झड़ना शुरू हो जाए तो इस जगह में गुड़ में मौजूद आयरन जो है वो अपने बढ़िया शरीर का मां काम करे। अब बात करें जो गुड़ का कई नुकसान भी है बात करें जहाँ ज्यादा मात्रा में गुड़ खाने से जो कि सुगरी मात्रा है बीच जगह अपना मधुमेह रोगी है बने थोड़ा बहुत खतरो हो सके लेकिन ज्यादा गुड़ खाने से दांत में भी कई तरह जगह नुकसान भी देखने मिल सके और शरीर में कैलोरी की जो मात्रा है वह बढ़ जाए जिससे मोटापो बढ़ने को कारण बन सके। लेकिन मोटी सी बात आई है कि आप हिसाब से हुई अगर गुड़ को इस्तेमाल करा तो अपन ज्यादा फायदों कर सी। और आपने देखने आ रहे हैं कि कई दिन से आपने ही क्षेत्र गा अपने चीनी वालों जो गुड़ है वो देखने मिलने आ रहे हैं वो कई दिन तो आप अपनी बाल्टी में अपने कोई बर्तन है भी हमारा गहरा का लेकिन थोड़े से दिन बाद में वो गुड़ या तो पिंगलना शुरू हो जाए या फिर भी कई बार कीड़ा देखने मिलने आ जाए तो चीनी वालों जो गुड़ है ना भाई लोग

0: वो तो बिन ज़्यादा से ज़्यादा अपन है बीच दूरी रखनी जरूरी है। वो अपन कहते ही बिंगो इस्तेमाल चाह में भी नहीं करना चाहिए, खाना में भी नहीं करना चाहिए, अगर आप कोई व्यंजन बना ला रहे हैं तो भी में भी नहीं करना चाहिए। चीनी वाला जो गुड़ है वो नुकसानदायक है, वो अपन है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आपने तो आई बात कैसे का जब तक होश का, तो देसी गुड़ को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, शक्कर है तो बिंगो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, और मीठा के तौर पर अपन जो की सिट्टाली मिश्री है ना बिंगो भी इस्तेमाल कर सका। और इनके अलावा भाई लोग आप गुड़ से शीरो भी बना के खास का, गुड़ ने जमा के भी खास का, या फिर गुड़ को जो मीठो पानी है बिना भी आप पीस का, तो ये की चीज़ें हैं ने भी आपने गुड़ के माँ आपने फायदा ली है, और अपन गुड़ ने इस्तेमाल करके अपने जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बना सका। पर जो गुड़ अपने बाजार से मिले है, या फिर अपन बाजार से कोई चीज ले गया तो गुड़ जो को है ना वो बड़ो जांच पर करके देख के लेना है। एक तो चीनी वाला गुड़ अपन कतई नहीं लेना चाहिए है ना, थोड़ी देर पहले थाने बताई हुई हो, लेकिन गुड़ अपन खुरपाड़ो जो को देसी गुड़ है वो ही ले गया वहाँ, कई जगह गुड़ है बे मिलावटी यालो गुड़ हो तो वो अपन कतई नहीं खरीदना चाहिए। तो आप बात पूरा ध्यान रखना सा खान पान को, अगर आप सही ध्यान रखेंगे तो आपने जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया बने रहो, अगर आप बढ़िया खासियाँ तो आपने जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया बने रहो। अगर आप बिना जांच पर करे अंदाजा से ज़्यादा खावांगा या फिर कम खावांगा तो भी अपने स्वास्थ्य ने नुकसान है। इस वास्ते संतुलित मात्रा में ही अपने मीठा को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाएड़ो नुकसान करे और कम खाएड़ो भी नुकसान करे। आप बात पूरा ध्यान रखना सा अपना भू खेत का निचालू, राम राम सा राम राम।
1: श्रोता अभी खेत खलियान कार्यक्रम सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। जयपुर में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिवसीय बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के प्रतिनिधि आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक में शिरकत कर रही हैं। बैठक में आर्थिक विकास, वित्तीय उदारीकरण और जोखिम प्रबंधन के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने उभरती चुनौतियों पर चर्चा की जा रही है। बैठक का समापन कल होगा। आज शाम प्रतिनिधिमंडल के लिए जयपुर के सिटी पैलेस में राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान अतुलनीय रहा है। मुख्यमंत्री आज अपने आवास पर प्रदेश भर से आए स्वतंत्रता सेनानियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को स्वाधीनता सेनानियों के संघर्ष और योगदान के बारे में जानकारी देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन बदलावों को लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। स्वाधीनता दिवस के मद्देनजर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने विशेष ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। ये अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान के तहत सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है। सीमा क्षेत्र में कैमल पेट्रोलिंग और पैदल गश्त भी बढ़ाई गई है। रात के समय सीमा पार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नाइट विजन उपकरण और थर्मल इमेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य में हर घर

0: तिरंगा अभियान के तहत हर ओर तिरंगी छटा देखने को मिल रही है। तिरंगा रैलियां, प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पाली में ग्रामीण क्षेत्रों और विद्यालयों में तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं, जबकि जिला मुख्यालय को तिरंगे से सजाया गया है। बारा में जिला कलेक्टर ने घर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। जिले में 1.5 लाख तिरंगे फहराने का लक्ष्य रखा गया है। भरतपुर में तिरंगा प्रदर्शनी और जागरूकता शिविर में आदि हस्तनिर्मित तिरंगे और हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। इस दौरान स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को स्वदेशी उत्पादों के जरिए आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आज मनाया जा रहा है। युवाओं के नेतृत्व, उनकी विविधता और सतत विकास लक्ष्यों में उनके योगदान को रेखांकित करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। इस साल संयुक्त राष्ट्र ने इसकी थीम विभिन्न संदर्भ समान आकांक्षाएं रखी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवा दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि युवा पीढ़ी किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी और उज्जवल भविष्य की आधारशिला होती है। राज्य सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश में आज हरियाली अमावस्या का पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं और पशुओं को हरा चारा खिलाकर दान पुण्य किया जा रहा है। कई स्थानों पर मेले भर रहे हैं। उदयपुर का प्रसिद्ध हरियाली अमावस्या मेला फतेह सागर पाल और सहेलियों की बाड़ी में शुरू हुआ। 2 दिन के इस मेले में आज सभी वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं। वहीं कल महिलाओं के लिए प्रवेश रहेगा। उधर कोटा में इस मौके पर गेपरनाथ महादेव मंदिर में कांवड़ यात्रियों का स्वागत कर विशेष जलाभिषेक किया गया। सिटी पार्क में लहरिया महोत्सव में महिलाओं और छात्राओं ने पारंपरिक परिधानों में लोक संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। सवाई माधोपुर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर रामेश्वर स्थित त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं। इसके साथ ही पुराने शहर में पतंगबाजी की जा रही है। पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर में नवनियुक्त सीएलजी सदस्यों के साथ संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सदस्यों को उनके दायित्वों और कर्तव्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीएलजी सदस्य पुलिस और आमजन के बीच विश्वास, संवाद और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

सावन की रिमझिम फुहारों, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और हरियाली की मनमोहक चादर के साथ आपका हार्दिक स्वागत है इस फरमाइशी कार्यक्रम महिला जगत में। मैं हूं आपकी सखी अलका वर्मा और सावन के इस मधुर फुहार के साथ कार्यक्रम का आगाज एक खूबसूरत नगमे के साथ आप सबकी पसंद से। जिला अंबागढ़ी चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, ममता शर्मा, रेखा शर्मा, भाटापारा छत्तीसगढ़ से भारती वर्मा, शकुन वर्मा, रुक्मणी वर्मा, रजनी वर्मा, प्रतिमा वर्मा, द्रौपदी वर्मा, धनेश्वरी वर्मा, कुमारी पायल वर्मा का, आफ्ताब अंसारी उत्तर प्रदेश से रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, चक 15 पीएस से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह जोसन, आदर्श पाल सिंह जोसन मेलबर्न से, रॉबिन सिंह जोसन वैंकूवर से, विजय सिंह

रूपराम मलखट, ममता मलखट, सुमित मलखट, हेतराम मलखट। गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिका, बलवीर सिंह का। गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, कलीम अंसारी का। आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीत आर डी बर्मन ने दिया है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म का नाम है कटी पतंग।

क्योंकि अगले गीत की जो फरमाइश आई है वो मजनू का टीला से, कमला बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक की। अमरपुरा जालू घाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ से जगदीश चंद्र प्रजापति, विमला प्रजापति, मोनू प्रजापति और राजेंद्र प्रजापति की। सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका की। पद्मा टाकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह की। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी की। श्रीगंगानगर से नेकीराम बंसीवाला, जॉनी बंसीवाला, धनराज बंसीवाला। और इसी के साथ ये फरमाइश आई है दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून की। जलालाबाद वेस्ट से पूनम गगनेजा, प्रिया रुचि और दिशाने की। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब सबीर राही, मेराज जहां, आजाद नगर, लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। फाजिलका पंजाब से अंग्रेज सिंह गेजा, गुरमीत कौर, जगप्रीत सिंह, मनप्रीत कौर, करमजीत सिंह, चरणजीत कौर, मनकीरत कौर, गुरसीरत कौर, गुरप्रताप सिंह। मध्य प्रदेश से ही एक और फरमाइश आई है राहुल पाल, श्रीमती ज्योति, अंजना पाल, हरिमोहन पाल और बीबी लक्ष्य की। गांव आरायन से बनवारी लाल जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, पूनम जालिया। गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति, शिवम ढूकिया, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु ढूकिया, दोहिती, ईवा धारणिया की। हरियाणा झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया की। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा, निवान शर्मा की। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, पप्पू और टप्पू। आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं ब्लैकमेल फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं।

कार्यक्रम में इस गीत की फरमाइश आई है केसी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगनलाल सोमानी, बिंद्रा टेलर, मुंशीराम महिंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद दायमा, थानेदार भालूराम जी की। कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव की। तहसील भादरा अनूप शहर से गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू पवन, साहिल राघव, मुरारीलाल शर्मा, मदनलाल शर्मा, महावीर लोहरा, ममता, मीतू, कीनू, पंकज सारस्वत। नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश तरड़, रामचंद तरड़, कपिल देव तरड़ और हिमानी जैखड़ की। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साईं गायकवाड़। सांगली जिला जत शहर से अल्फाज हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे, रेहान शेख की। रिंगनी छत्तीसगढ़ से करुणा वर्मा, प्रियंका बंछोर, दिनेश वर्मा की। गांधीनगर

गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष दीपल। आसाम से ये फरमाइश आई है हितेंद्र दास की। और इसी के साथ सादेवाला सिरसा हरियाणा से रामेश्वर माहर, परमेश्वरी माहर जिगर और जानवी की। मध्य बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता बम्बारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू की। आप सबकी पसंद पर हम सुनवाते हैं किशोर कुमार की ही आवाज़ में ये गीत ड्रीम गर्ल फिल्म से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

पंख रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

श्रोताओं, सावन सिर्फ मौसम नहीं, एहसासों का नाम है। हर बूंद में छिपा कोई अपना सा पैगाम है। तो तैयार हो जाइए अपना अगला पसंदीदा गीत सुनने के लिए आप सबकी फरमाइश पर। अलीका तहसील डब्बावाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू रजनी। व्यास कलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार साही, मिसेज संतोष साही, राजश्री गौरव साही, और श्रीकरणपुर से पवन कटारिया, शालू कटारिया, समीर कटारिया। छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल। जिला खगनौर मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा। दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन का। भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा का। छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। महाराष्ट्र से शंकर जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, राखी जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल का। छत्तीसगढ़ से ही नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन का। सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप का। और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है हनुमानगढ़ से वेद मीठा, अलका मीठा ने। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिका मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज और साहिल बजाज। ढाणी लाल खां, जावेद खां, अरमान खां, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खां, इन्होंने भी हमें फरमाइश भेजी है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, निधि निखिल वर्मा। 14 पीएसपी से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, मनराज सिंह ने। कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, अभय कुमार, सनातनी, रिमी, तनुश्री गुप्ता और रेखा देवी ने। छत्रपति शिवाजी नगर खंडावा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन। छत्तीसगढ़ से ही डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। इन सब की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं अगला गीत, फिल्म अगर तुम ना होते। आवाज़ें किशोर कुमार की हैं, संगीत आर डी बर्मन का है और गीत लिखा है गुलशन बावरा ने।

श्रोताओं, आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत में, आपकी फरमाइश प्रोग्राम आपकी पसंद। और इस प्रोग्राम में आज मैं हूं आपकी सखी अलका वर्मा, आपके मैसेजेस और आपकी पसंद के गीतों के साथ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला मैसेज पढ़ते हैं। अगला मैसेज आया है यूपी से, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिर। मध्य प्रदेश से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता श्रीवास्तव, विमल श्रीवास्तव, आशा, राधिका और श्रीवास्तव परिवार की तरफ से। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता कौर का। कस्बा सैंथल जिला बरेली से फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर हुसैन अंसारी, तारिफ हुसैन अंसारी, मोहम्मद एहजान अंसारी, अलमीर बशर अंसारी का। और केसी सिंहपुर से बिल्लू

सूद, सुनीता सूद, चांदनी, आशीष, विश्वजीत, मोहनलाल प्रजापति का। बाड़मेर से बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मनीष पंवार का। बठिंडा रोड मंडी डब्बावाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग का। छत्तीसगढ़ से ज्योति मीरी, जानवी मीरी का। और भोपालगढ़ राजस्थान से ही धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार का। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का। और उत्तर प्रदेश से खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, बेबी अरीबा, हबीबा का। मध्य प्रदेश से ही भाई रामलाल चंद्रवंशी, श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी, काजल मीनाक्षी और दिलीप कुमार चंद्रवंशी का। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। और हनुमानगढ़ से आया है अगला पत्र, रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा का। आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं याराना फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में, संगीत राजेश रोशन का और गीत लिखा है अनजान ने।

श्रोताओं, अगला जो मैसेज है वो हमें आया है MLB रोड ग्वालियर से सुरेंद्र खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना, SK पप्पी का। फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह का। और दंतरेगी से भागवत वर्मा, शांति वर्मा, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा का। और उज्जैन मध्य प्रदेश से भैरूलाल वाकतरिया धाकड़, भोल वाकतरिया धाकड़, प्रवीण वाकतरिया, रियांश और प्रतीक का। आप सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से ये गीत। आवाज़ किशोर कुमार की, संगीत RT बर्मन का और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में ये अगला संदेश हमने लिया है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत यशु निरंजन सिंह सौम्या सिंह अविरल सिंह का। अनूपगढ़ से भगवती देवी ज्ञानचंद मेहुल पूनम कोमल चंदन अंकुश लक्ष्य माधव रवि कुमार नेहा और सोनू का। महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर विजयलक्ष्मी सावनकर राजेश राकेश ऋषिता का। और संग्रिया से गोवर्धन दास कृष्णा देवी योगेश मनीष माही केदार चित्रा युवांशी बत्रा और उनके पूरे परिवार। आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं किशोर कुमार को फिल्म रोटी में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम अंतिम पड़ाव की ओर है और आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, श्रीमती पिंकी साहनी, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, निप्पी साहनी, श्रीमती सुनीता साहनी का। महाराष्ट्र से बाबा साहेब कंगणकर, साखरबाई, परमेश्वरी, श्रावणी ईश्वरी और उनके परिवार की तरफ से, और तहसील औसा जिला लातूर से उस्मान शेख, फौजी सायरा बानो शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख की तरफ से। और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति। गीत लिया है हमने फिल्म आन मिलो सजना से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और आवाज़ें दी है किशोर कुमार ने। तो सुनिए ये प्रस्तुति।

श्रोताओं, आशा करती हूँ कि आज प्रस्तुत किए गए गीतों ने आपके मन को सुकून दिया होगा, पुरानी यादों को ताज़ा किया होगा और आपके दिन को मधुर बना दिया होगा। आप भी अपनी पसंद के गीत, संदेश और शुभकामनाएं हम अवश्य भेजते रहिए। आपकी फरमाइश ही इस कार्यक्रम की असली पहचान है और आपके स्नेह से ही ये संगीत का कारवां निरंतर आगे बढ़ता है। चलते चलते चंद पंक्तियाँ कि गीतों की महक यूं ही दिलों में बसाए रखना, गीतों की महक यूं ही दिल में बसाए रखना, मुस्कुराहटों के दीप जलाए रखना। और इसी के साथ अपनी सखी अलका वर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया, इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे

0: में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
2: कोविंद जी ने ये काम हम सब के लिए किया है क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाए हैं। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो मुख्य आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल

0: पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्र ध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है, इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
2: इन तिरंगा यात्रास, बाइक एंड साइकिल रैलीज, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कंसर्ट्स, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द सेंटीमेंट बिहाइंड देम इज कॉमन। द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल इन विच एवरी सिटीजन कैन फाइंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
4: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
1: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगतसिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य

0: जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के दो मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

पहला गीत सुनते हैं जानबाज फिल्म से, आवाज़ें किशोर कुमार और सपना की है, इंदीवर की शब्द रचना है और धुन कल्याण जी आनंद जी की है।

लीजिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं दीवाना फिल्म से। आवाजें अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की है, समीर की शब्द रचना है और संगीत नदीम श्रवण का है।

लीजिए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेव को बेटा फिल्म से। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है आनंद मिलन ने।

जी हाँ श्रोताओं, राम लखन फिल्म से ये गीत सुनेंगे आप मनहर और अनुराधा की मिलीजुली आवाज़ों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

लीजिए श्रोताओं, फिल्म संगीत का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं खलनायक फिल्म से। आवाज़ अलका याग्निक और साथियों की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

सामीन आपको बता दें, से कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 पर हम पेश करेंगे मोहतरमा अफरोज जहां का तहरीर करदा फीचर आंचल का परचम। 4 बजे आप सुनेंगे खसूसी प्रोग्राम हर घर तिरंगा। 4:15 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन आईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत सभी मामलात पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने अपोजिशन पर जोर दिया है कि वो पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने दें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों पर ज़बान हयात पढ़ने पर जोर दिया है। उन्होंने रील्स और सोशल मीडिया के शॉर्टकट कल्चर के खिलाफ खबरदार किया। हर घर तिरंगा मुहिम में तेजी आ गई है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वंदे मातरम का जज्बा कौमी शनाख्त को मुसलसल मुस्तहकम कर रहा है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में एहतजाज ने बैन अल-अक़वामी शक्ल अख्तियार कर ली है, क्योंकि अवामी कार्रवाई कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से कल मुजाहरे करने की अपील की है। और शतरंज में अमरीका में सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर के मुकाबले में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के जावोखेर सिंदारोव को हरा दिया। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि सरकार तलबा के मसले और पार्लियामेंट में अराकीन की तरफ से उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब देने और बहस के लिए पूरी तरह तैयार है। वो पार्लियामेंट के अहाते में नामा निगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। जनाब शाह ने कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है और वो बहस के लिए तैयार है। मरकजी वजीर दाखला ने कहा कि अपोजिशन बहस के लिए दिन में 2 बजे तक स्पीकर को नोटिस दे सकती है, ताकि आज 3 बजे बहस शुरू की जा सके। जनाब अमित शाह ने कहा कि अगर बहस शुरू होती है तो वो ऐवान के अंदर मौजूद रहेंगे और हर मेंबर की बात सुनेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बहस मुकम्मल होने के बाद वो कल 3 बजे बहस का जवाब देने को भी तैयार हैं। जनाब शाह ने यह भी कहा कि पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू पहले ही ये बात वाजह कर चुके हैं कि सरकार नीट इम्तिहानात से मुतालिक तलबा के एहतजाज से वाबस्ता सभी पहलुओं पर बहस के लिए तैयार है। ताहम जनाब शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन ऐवान को काम करने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के संजीदा मामले पर पार्लिमानी तरीक़ाकार के मुताबिक बहस होनी चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो जिसे भी पसंद करते हैं उसकी ज़बान हयात पढ़ें और रील्स और सोशल मीडिया के दौर में शॉर्टकट्स से गुरेज करें। उन्होंने विकसित भारत मिशन को आगे ले जाने की खातिर नौजवानों को खुद को वक्फ करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। जनाब मोदी ने एक ऐसी नस्ल पर जोर दिया जो मुश्किलों में साबित कदम रहती है और कौमी खुद किफालत की राह तलाश करने के लिए हिम्मत और हौसला बरकरार रखती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान साबिक सदर जम्हूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरे संघर्ष का इजरा किया। इस ज़बान हयात में जनाब कोविंद के गैर मामूली सफर हयात का बगौर जायजा लिया गया है, जिसमें उनके तजुर्बात जद्दोजहद और उनके इब्तदाई बरसों की हुसूलियाबियों से लेकर उनकी सरकर्दा अवामी जिंदगी और फिर भारत के 14वें सदर जम्हूरिया की हैसियत से उनकी खिदमात का अहाता किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जनाब कोविंद की ज़िंदगी के बारे में उनकी समझ और उनकी सलाहियतों के इल्म की बुनियाद पर उन्हें पूरा यकीन है कि ये खुद नफिश्त भारतीय जमहूरियत और माशरे के लिए एक ग्राम मीरास साबित होगी। आज दुनिया भर में हाथियों का दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाथी भारत के माहौलियाती विरसे का एक लाजमी जुज्व है। सोशल मीडिया पोस्ट पर जवाब जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया के जंगली एशियाई हाथियों की 60% से ज़्यादा तादाद भारत में मौजूद है। इस मौके पर माहौलियात जंगलात और आबोहवा में तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि मुल्क की 14 रियासतों में हाथियों की 33% महफूज पनागाहें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में हाथियों के लिए महफूज जंगलात और पनागाहें होने से हाथियों का मुस्तकबिल भी महफूज है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क भर में हर घर तिरंगा मुहिम जोरों शोर से जारी है। इस साल ये मुहिम वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के जज्बे को वक्फ है।

0: दी आ गई है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम का जज्बा कौमी शनाख्त को मुसलसल मुस्तहकम कर रहा है और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में एहतजाज ने बैन अल-अक़वामी शक्ल इख्तियार कर ली है क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से कल मुजाहरे करने की अपील की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब।

मोहम्मद रफी और साथियों को सामीन आप सुन रहे थे फिल्म थी शहीद, मौसीकार थी प्रेम धवन। और अब सुनिए आशा भोसले और साथियों को फिल्म है अब दिल्ली दूर नहीं, मौसीकार हैं दत्ताराम।

कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने सींचा।

मोहम्मद रफी और साथियों को सामिन आप सुन रहे थे फिल्म थी जागृति। और लीजिए प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आप तमाम सामिन के लिए। आशा भोसले और साथियों को सुनिए, फिल्म है भाई बहन, मौसीकार हैं एम दत्ता।

0: शादी कितनी खूबसूरती के साथ, इतने गहरे एहसासात को एक खूबसूरत नगमे की शक्ल दे दी।
1: जी मोहतरमा, सही फरमा रही हैं आप, लेकिन एक बात बताइए, ये नगमा सुनकर आप इतनी जज्बाती क्यों हो रही हैं?
0: पर मुझे समझ नहीं आता, लोग लड़की की पैदाइश पर इतने फिक्रमंद अफसरदा पता नहीं क्यों हो जाते, क्यों उसे बोझ मानने लगते हैं कि लड़की इंसान नहीं होती।
1: अरे भाई बताओगी भी, हुआ क्या है?
0: देखो ना, हमारे मामू के घर जो रईसा आता आती है, उन्हें तो तुम जानती हो ना, उनकी बहू के यहाँ दूसरी बेटी पैदा हुई है।

0: ये तो बड़ी खुशी की बात है। ओफो, खुशी की बात ये हमारे तुम्हारे लिए है, उनके लिए थोड़ी है। उनके लिए तो बच्ची पैदा होते ही ऐसा लग रहा है जैसे सारी मुश्किलों की वजह बन गई है। तुम्हें पता है, अपनी बहू को वो इतना बुरा भला सुना रही थी जैसे कि बेटी या बेटा पैदा करना खुद बेचारी उस औरत के हाथ में है। भाई ये तो अल्लाह की शय है, अल्लाह जिसे चाहे उसे नवाजे।
1: देखो, तुम्हारा परेशान होना जायज है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हम सभी के लिए ये फिक्र करने वाली बात है कि लड़की की पैदाइश पर इतने अफसोसा क्यों हो जाते हैं हम। एक तरफ तो हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की बात करते हैं, खुद को मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्सा बताते हैं, और दूसरी तरफ आज भी लड़के और लड़की में इम्तियाज करते हैं, लड़कियों को एक बोझ मानते हैं। एक ही घर में एक ही माँ बाप की औलाद में फर्क किया जाता है, बेटे को बेहतरीन स्कूल में तालीम देने की कोशिश की जाती है और बेटी को स्कूल की शक्ल तक दिखाना गवारा नहीं। यहाँ तक कि बहुत से घरों में तो बेटियों को कपड़े और खाने जैसी बुनियादी जरूरियात में भी इम्तियाज बरता जाता है, जबकि दोनों ही शह अल्लाह का इनाम है। बेटी की पैदाइश को अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों की बारिश से ताबीर किया है। एक शायर ने औरत के वजूद को कुछ इस तरह बयां किया है, इस जमीन पर जो कभी आई थी हव्वा बनकर, जिसको अल्लाह ने आदम से किया था पैदा, हाँ वो आदम जिसे मिट्टी से बनाया रब ने, और फिर आदम और हव्वा से चली ये दुनिया। दीगर मजाहिब में भी औरत को आला दर्जा दिया गया है। अब हिंदू मजहब की ही बात ले लो, औरत को देवी का रूप माना गया है। लोग दुर्गा, सरस्वती, पार्वती और न जाने कितने रूपों में उसकी परस्तिश करते हैं।
0: लेकिन अफसोस तो तब होता है ना जब दुर्गा, पार्वती, सरस्वती, कही जाने वाली औरत की जिसकी वो पूजा करते हैं, उसी को वो लोग बड़ी बेरहमी के साथ कुचल जाते हैं। अल्लाह की उस रहमत को वो जहमत समझने लगते हैं, माँ के पेट में ही उसे मार देते हैं।
1: तुम्हें पता है, आज लोग बच्चे की पैदाइश से पहले ही जांच के जरिए ये पता लगा लेते हैं कि उनके यहाँ बेटी पैदा होगी या बेटा। जांच में अगर ये वाजी हो जाता है कि बेटा पैदा होगा तो बल्ले बल्ले, और अगर वजाहत होती है कि बेटी, तो दुनिया में आने से पहले ही उसकी सांसों पर ब्रेक लगा दिया जाता है। हालांकि सब लोग ऐसा नहीं करते, कुछ में खौफे खुदा अब भी बाकी है।
0: या खुदा, क्या गुजरती होगी इस बेचारी माँ पर कि अपनी बच्ची का चेहरा देखे बगैर, उसके वजूद की गर्मी को अपनी आहोश में महसूस किए बगैर, कुछ सालिमों के आगे वो बेचारी माँ अपनी ममता का कत्ल कराने के लिए मजबूर हो जाती है।
1: और उस पर ये जुल्म खुद उसके अपने ही करते हैं। इस काम को पाए अंजाम तक पहुंचाने में उस औरत का शौहर या घर के दीगर मर्द हजरात ही पेश पेश नहीं होते, बल्कि सास और नंदों का किरदार भी काफी अहम होता है। वो इस गुनाह को करते वक्त ये भूल जाती हैं कि आखिर वो भी एक औरत हैं, उनके वजूद के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर बेटी नहीं होगी तो फिर बहू कहाँ से आएगी, बहन किसे कहोगी। किसी शायर ने औरत से वाबस्ता रिश्तों को कुछ इस तरह से बयां किया है, कहते हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये वही औरत है, आमना बन के मोहम्मद को जना था जिसने, दूध अहमद को पिलाया था हलीमा बन के, जिसकी आमद से हर एक रिश्ता हुआ है पैदा, माँ का रिश्ता हो या खाला हो या बीवी का, बहन का रिश्ता चाची का हो या हो बेटी का, कौन सा रिश्ता है जो इससे नहीं है पैदा, अनगिनत रिश्तों की दामन यही है औरत।
0: काश बेटियों को मौत की नींद सुलाने वाले इस शायर की कही बात को समझ पाते। अच्छा ये बताओ, पैदाइश से पहले जिन्स की शरारत कराना तो जुर्म होता है ना?
1: अरे जुर्म नहीं मोहतरमा, कानूनी जुर्म है, और इसके लिए सख्त सजा का इंतजाम भी है। हुकूमत हिंद ने सन 1994 में ही इस जुर्म के खिलाफ और इस पर काबू पाने के लिए कानून बना दिया था, और फिर सन 2002 में इस कानून में कुछ तरमीम भी की गई थी। पता है, इस कानून के तहत पैदाइश से पहले जिन्स की पहचान करने पर पूरे 5 साल की सजा होती है, भारी जुर्माना लगता है 100 अलग, और पुलिस बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकती है।
0: और तब भी ऐसे डॉक्टर्स को डर नहीं लगता ये काम करने पर?
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सब ऐसा नहीं करते भाई। असल में जो लोग ये घिनौना काम करते हैं उन्हें किसी भी लिहाज से डॉक्टर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाई डॉक्टर तो जिंदगी बचाता है, किसी की जान नहीं लेता। और खुद वजीर आजम हिंद जनाब

0: मोदी ऐसे डॉक्टर्स को फटकार लगाते हैं, वो भी ऐसे डॉक्टर्स को डॉक्टर्स नहीं मानते।
1: मैं डॉक्टरों को पूछना चाहता हूं, क्या ये आपका दायित्व तो नहीं है? क्या आप इस पाप में भागीदार नहीं बनेंगे? डॉक्टरों को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेवारी है। आपको डॉक्टर बनाया है समाज ने, आपको पढ़ लिख करके तैयार किया है, गरीब के पैसों से पल करके बड़े हुए हैं। आपको पढ़ाया गया है किसी की जिंदगी बचाने के लिए, आपको पढ़ाया गया है किसी की पीड़ा को मुक्ति करने के लिए, आपको बच्चियों को मारने के लिए शिक्षा नहीं दी गई है। अपने आप को झकझोरिए, 50 बार सोचिए, आपके हाथ निर्दोष बेटियों की हत्या के खून से रंगने नहीं चाहिए। जब शाम को खाना खाते हो तो उस थाली के सामने देखो, जिस मां ने, जिस पत्नी ने, जिस बहन ने वो खाना पकाया है, वो भी तो किसी की बेटी है। अगर वो भी किसी डॉक्टर के हाथ चढ़ गई होती तो आज आपकी थाली में खाना ना होता। आप भी सोचिए, कहीं उस मां बेटी बहन ने आपके लिए जो खाना पकाया है, कहीं आपके खून से रंगे हुए हाथ उस खाने की चपाती पर तो हाथ नहीं लगा रहे। जरा अपने आप को पूछिए मेरे डॉक्टर भाइयों बहनों, ये पाप समाज
0: दोषमारी का मवाजना अगर करेंगे ना तो 1000 लड़कों पर लड़की की तादाद 933 थी। लेकिन ये सूरत हाल भी पता है मशरकी और जनूबी हिंदुस्तान दोनों में मुख्तलिफ है। पौंडिचेरी और केरल में हालात बिल्कुल अलग है। यहाँ पर 1000 मर्दों पर औरतों की तादाद 1084 है। मतलब ये कि यहाँ पर मर्दों के मुकाबले में औरतें ज्यादा हैं। लेकिन हरियाणा में हालात काफी तश्वीशनाक है। यहाँ लड़कियों की तादाद मर्दों के मुकाबले काफी कम है। तुम्हें पता है मर्दमशुमारी सन 2011 के मुताबिक 1000 लड़कों पर सिर्फ 877 लड़कियां हैं, जो कि दीगर रियासतों के मुकाबले सबसे कम है। और जानते हो इस फर्क की वजह क्या है? तालीम की कमी। जनूबी हिंदुस्तान में लोगों का मेयार तालीम शुमाली हिंदुस्तान के मुकाबले काफी बेहतर है। शुमाली हिंद तालीम के मामले में काफी पीछे है, और लड़कियों की शरई तालीम का ये मेयार तो पूछो ही मत। इसीलिए यहाँ पर हुकूमत लोगों को बेदार करने के लिए तरह तरह की मुहिम चला रही है, ताकि लोग बेटी और उसकी तालीम की अहमियत को समझ सकें। और अब तो खुद वजीर आजम लोगों को बेदार कर रहे हैं। उनकी इसी पहल का नतीजा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी।
1: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तभी तो भारत का भाग्य बदलेगा। अगर संसार चक्र को ठीक से चलाना है तो जितना सामर्थ्य और जितनी आवश्यकता पुरुष की है, उतना ही सामर्थ्य उतनी आवश्यकता महिला की है।
0: अच्छा, वैसे ये स्कीम है क्या, जरा तफसील से बताओ ना। हाँ हाँ बताती हूँ। दरअसल लगातार कम हो रही लड़कियों की तादाद को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी काफी फिक्रमंद है। और जैसा कि तुम जानती हो कि हरियाणा में ये सूरत हाल काफी ज्यादा तश्वीशनाक है, तो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के सोनीपत में वज़ीर-ए-आज़म ने इस स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत लड़कियों को मरने से बचाना है, उन्हें एक महफूज मुआशरा मुहैया कराना है, उन्हें बेहतर तालीम दिलाकर किसी काबिल बनाना है। साथ ही लोगों को ये भी समझाना है कि बेटियां भी उतनी ही जरूरी हैं जितने बेटे। और जानती हो, खुद वजीर आजम ने लोगों को हलफ दिलवाया है कि वो बेटियों के जन्म पर मातम नहीं करेंगे बल्कि खुशियां मनाएंगे।
1: हम बेटियों को अपने परिवार का गर्व माने, राष्ट्र का सम्मान माने। आप देखिए, यह असंतुलन में से हम बहुत तेजी से बाहर आ सकते हैं। हम सबको शपथ लेना है, आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहिए, दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए, और मैं एक शपथ बोलता हूं, मेरे साथ आप शपथ बोलेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं लिंग चयन एवं कन्या भ्रूण हत्या का विरोध

0: करूंगा। मैं बेटी के जन्म पर खुश होकर सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हुए बेटी को सुशिक्षित करूंगा। मैं समाज में बेटी के प्रति भेदभाव खत्म करूंगा। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश पूरे समाज में प्रसारित करूंगा।
1: लगता है अब तो हालात बदल ही जाएंगे। भाई देखो, हालात को तो बदलना ही होगा, आखिर हम बेटियां किसी से कम थोड़ा ही हैं। मैंने एक बात महसूस की है, लोग लड़कियों की पैदाइश पर इतने अफसोसदा शायद इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कियों को तो पराए घर जाना है, सारी उम्र उनकी परवरिश करो, उनकी देखभाल करो और फिर किसी और को उन्हें सौंप दो, इसलिए शायद वे उनकी तालीम पर भी ध्यान नहीं देते। अब भाई देखिए, ये तो कुदरत का निजाम है और समाज की रविश भी है। शादी के बाद तो लड़की को दूसरे घर जाना ही होता है, बल्कि ये कहो कि माँ बाप का घर लड़की के लिए पराया होता है। असल में शादी के बाद जिस घर में वो जाती है वो उसका अपना घर होता है, क्योंकि वहीं पर उसकी जिंदगी का हमसफर होता है, उसके बच्चे होते हैं, उसकी दुनिया बसती है। और रही बात शादी के खर्च की, तो भाई किसने कहा है कि शादी के लिए लंबे चौड़े इंतजाम करें, शादी सादा तरीके से भी तो की जा सकती है।
2: फिर भी बेटी की पढ़ाई शादी का खर्च दोनों पर खर्चा तो करना ही पड़ता है ना।
1: उसके लिए भी हमारे वजीर आजम ने इंतजाम कर दिया है, कोई भी माँ बाप अपनी 10 साल से कम उम्र बेटी का किसी भी कमर्शियल बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसमें 1,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा करवा सकते हैं। इस पर उन्हें 9.1% सालाना सूद मिलेगा और किसी तरह का कोई टैक्स भी नहीं देना होगा। जब लड़की 18 साल की हो जाएगी तो 50% पैसा निकालकर उसकी पढ़ाई या शादी पर खर्च किया जा सकता है। लड़की का ये अकाउंट 21 साल की उम्र तक रहेगा, उसके बाद लड़की खुद अपना पूरा पैसा निकाल सकती है। अब जबकि लड़की को सरकार ने ही हर तरह से मजबूत बना दिया है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अब कोई बेटी को बोझ समझकर उसकी पैदाइश पर अफसोस करेगा या उसके पैदा होने से पहले ही उसे मारने की सोचेगा।
2: ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है कि हम बेटियों के बारे में हमारे वजीर आजम इतना ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन अब बताओ इस सोच को कैसे बदला जाए कि खानदान का नाम बेटों से चलता है बेटियों से नहीं।
1: ये सोच तो समाज को बदलनी ही होगी, लोगों को ये समझना होगा कि बेटी भी बेटे के बराबर है। जहां कहीं भी लड़कियों को मौका मिला है उन्होंने लड़कों से ज्यादा बेहतर मुजाहरा किया है, फिर चाहे वो खेल का शोभा हो, साइंस का हो या फिर तालीम का हो या फिर कोई और। यहां तक कि बिजनेस जैसे शोबे जहां मर्दों की ही इजारादारी रहती है वहां भी उन्होंने खुद को साबित कर दिया है। चंदा कोचर, इंदिरा नोई, नैना लाल कदवई, किरण मजुमदार शाह, ये वो बेटियां हैं जिन्होंने मर्दों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और कारोबार की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। किरण बेदी का नाम हम कैसे भूल सकते हैं भला, जिनका नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में एक मिसाल बन गया। मैरी कॉम, जिसने सारी जिंदगी जद्दोजहद की, अपने घर को भी संभाला और मुल्क का भी नाम रोशन किया, वो भी बॉक्सिंग जैसे खेल में जो खालिस मर्दों का ही खेल जाना जाता है। अब सानिया मिर्जा को ही ले लीजिए, सानिया की उनके माँ बाप ने उसी तरह परवरिश की जिस तरह लड़के की होनी चाहिए। सानिया को वो सारे मौके दिलाए जो एक लड़के को मिलते हैं, तो देखो सानिया ने भी साबित कर दिया कि वो किसी लड़के से कम नहीं है। हम हरियाणा की बात कर रहे थे ना कि वहां लड़कियों के हालात सबसे ज्यादा खराब है, जहां बहुत से गांव ऐसे हैं जहां सालों से बारात नहीं आई क्योंकि वहां कोई लड़की है ही नहीं। तो कल्पना चावला उसी हरियाणा की देन है जो खला तक चक्कर लगा आई। चलो ये बात तो हुई उन घरानों की बच्चियों की जो साहिब हैसियत हैं, अपने बच्चों को हर तरह की सहूलियात और आसाइशें दे सकते हैं, लेकिन ऐसे घरानों की लड़कियों ने भी वो कारनामे अंजाम दिए हैं जिन्हें किसी तरह का कोई भी ताउन अपने घर से या मुआशरे से नहीं मिला है। अपने दम पर ही उन्होंने वो सब

0: कर दिखाया है जिसके बारे में सोचकर ही लोग अपने दांतों में उंगलियां दबा लेते हैं। मुंबई की प्रेमा को ही ले लो, जो एक ऑटो ड्राइवर की बेटी है। उसने भी पहली ही बार में सीए का इम्तिहान पास करके ये साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है, बशर्त ये कि उन्हें मौके हासिल हों।
1: कदर अब तक तेरी तारीख में जानी ही नहीं, कदर अब तक तेरी तारीख में जानी ही नहीं, तुझमें शोले भी है बस पेशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उम्मान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, फर्श का भेद बदलती है कदा तेरे लिए, तहर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए, जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए, रुत बदल जाल अगर पूलना फलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तोड़ के रस्म के मुद मुलाजा हो, तोड़ के रस्म के मुद बंद कदामत से निकल, जोफ़े इशरत से निकल, महम नजाकत से निकल, जोफ़े इशरत से निकल, महम नजाकत से निकल, नफ्स के खेचे हुए हल्के अजमत से निकल, नफ्स के खेचे हुए हल्के अजमत से निकल, कैद बन जाए मोहब्बत तू मोहब्बत से निकल,
2: क्या कहने,
1: कैद बन जाए मोहब्बत तू मोहब्बत से निकल, राह का खारी क्या गुल भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तोड़ ये आदम शिकन सिलसिलाए पन भी तोड़, तेरी खातिर है जो जंगीर वो सौगन भी तोड़, तौक ये भी है जमुरत का गुलूबन भी तोड़, तोड़ पैमाने मर्दान किरदमन भी तोड़, बन के तूफान छलकना है उबलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, बन के तूफान छलकना है उबलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे।
0: बलवान मान गए, औरत का क्या खूबसूरत खाका खींचा है कैफी साहब ने। वाकई औरत में वो तमाम खूबियां हैं जो घर और बाहर दोनों को चला सकती है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि औरत का काम सिर्फ घर की चार दीवारी में रहना, बच्चे पालना, घर की देखभाल करना है, तो वो गलतफहमी का शिकार हैं। अगर माँ बाप बेटी को भी बेटा समझ कर पाले तो यकीनन उनका सिर हमेशा फख्र से ऊंचा ही रहेगा। उसे भी वो सब सहूलतें मुहैया कराए ना जो एक बेटे को कराते हैं, और ये उसका हक भी तो है, आप उसकी हक तलफी मत कीजिए, उसे भी वो पंख दे दीजिए ना जिन्हें लगाकर वो उठ सके, कामयाबी की बुलंदियों को छू सके, अपने वजूद को गुमनाम होने से बचा सके, वो आपकी पहचान बने, अपने मुल्क का नाम रोशन करे।

मिशन या पोस्ट से जहां सबसे पहले सूरज तुलु होता है, कौमी परचम को बाकायदा तौर पर लहराया जाएगा। इसके बाद ये सिलसिला मशरिक से मगरिब की जानिब आगे बढ़ेगा। गोया तिरंगा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सूरज की रोशनी के साथ साथ सफर कर रहा हो। इस पहल के जरिए दुनिया भर में मौजूद हिंदुस्तानी मिशनों और बैरूनी मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी को भी यौम आजादी की तकरीबात से जोड़ा जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए मुल्क के अवाम से हर घर तिरंगा मुहिम में पूरे जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि तिरंगा हिंदुस्तान के फख्र की अलामत है और हर शहरी के लिए मुल्क की तामीर में अपना बेहतरीन किरदार अदा करने की मुसलसल तहरीक है। वजीर आजम ने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया है कि इस साल की हर घर तिरंगा मुहिम वंदे मातरम के 150वें साल के नाम वक्फ है। हिंदुस्तान का कौमी परचम सिर्फ एक परचम नहीं है, ये हिंदुस्तान की आजादी की कहानी है, ये हमारे जाबाजों की कुर्बानियों की याद है, ये मुल्क के फख्र, इत्तेहाद और सालमियत की अलामत है। जाफरानी रंग हिम्मत और कुर्बानी के जज्बे का पैगाम देता है, सफेद रंग अमन और सच्चाई की अलामत है, सब्ज रंग खुशहाली और तरक्की की उम्मीद को जाहिर करता है, और इन तीनों रंगों के दरमियान मौजूद अशोक चक्र हमें मुसलसल आगे बढ़ते रहने की तहरीक देता है। हिंदुस्तानी कौमी परचम जिसे हम प्यार से तिरंगा कहते हैं, आवाम के जज्बात और कौमी शऊर में एक खास मुकाम रखता है। कौमी परचम की मौजूदा शक्ल मशहूर मुजाहिद आजादी, माहिर तालीम और कई जबानों के आलिम पिंगली वेंकैया ने डिजाइन की थी। पिंगली वेंकैया की पैदाइश 2 अगस्त सन 1876 को हुई थी और उनका इंतकाल 4 जुलाई सन 1963 को हुआ। उन्होंने यकुम अप्रैल सन 1921 को विजयवाड़ा में महात्मा गांधी से मुलाकात के दौरान कौमी परचम का डिजाइन पेश किया था। इसके बाद 22 जुलाई सन 1947 को दस्तूर साज असेंबली के इजलास में हिंदुस्तान के कौमी परचम को इसकी मौजूदा शक्ल में इख्तियार किया गया। यौम आजादी और यौम जमहूरिया जैसे कौमी त्योहारों पर तिरंगे को पूरे एहतराम और वकार के साथ लहराया जाता है। आज हर घर तिरंगा सिर्फ एक मुहिम नहीं है, ये उस जज्बे का जश्न है जो हमें अलग अलग जबानों, सकाफतों और रवायात के बावजूद एक कौम के तौर पर जोड़ता है। जब किसी घर की छत पर तिरंगा लहराता है तो वहां सिर्फ एक परचम नहीं लहराता, वहां हिंदुस्तान का फख्र लहराता है। आइए इस यौम आजादी पर तिरंगे को अपने घर लाएं, इसकी अजमत को समझें और मुल्क की तामीर में अपने किरदार का अहद करें, क्योंकि तिरंगा हमारा फख्र है, तिरंगा हमारी पहचान है और तिरंगा ही हमारे मुल्क के तई हमारे एहतराम और अहद की शान है। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा और हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान के लिए अटूट मोहब्बत और फख्र।

सामने भी आप सुन रहे थे हमारे खसूसी प्रोग्राम हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश पीपराग की आवाज़ में केसरी फिल्म का ये नगमा।

और शामिल जब सुनिए क्रांति फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज़ों में। नगमा निगार संतोष आनंद, मुंशिका लक्ष्मीकांत प्यारे लाल।

सरफरोश फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और सोनू निगम की आवाज़ों में, नगमनी गाते इसरार अंसारी, मौसीकार जतिन ललित। और शामिल लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश ए आर रहमान की आवाज़ में स्वदेश फिल्म का ये नगमा।

और सामने जब सुनी आनंद राज आनंद की मौसीकी सजाए नगमा फिल्म है इंडियन, आवाज रूप कुमार राठौर की है।

के मसाइल की जानिब बड़े पैमाने पर तवज्जो मबजूल कराई जा सके। कमेटी ने लोगों से अपील की है कि वो खित्ते में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ बैन अल्कवामी तवज्जो रागिब करने के लिए रैलियों का भी इनेकाद करे। अवामी एक्शन कमेटी ने यह भी ऐलान किया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का योम आज़ादी योम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आलमी बैंक ने अरबों रुपए के फंड को बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों के लिए मुंतकल करने पर पाकिस्तान सरकार के फैसले पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है, क्योंकि उसे यह रकम बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर कुनबों के लिए दी गई थी। आलमी बैंक ने खबरदार किया है कि इस कदम से मुफलिसी में इजाफा हो सकता है और कमजोर घरानों के लिए कुदरती आफात से मुतालिक खतरात बढ़ सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 84% अहल मुस्तफीद अफराद को इंतहाई गरीब और नहायत पसमानदा जुमरे में रखा गया है। इनमें से बहुत से अफराद की बचत बहुत महदूद है, रस्मी कर्जों तक रसाई भी बहुत अहम कम है और उनके पास

0: खबरदार किया है कि इस कदम से मुफलिसी में इजाफा हो सकता है और कमजोर घरानों के लिए कुदरती आफात से मुतालिक खतरात बढ़ सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 84% अहल मुस्तफीद अफराद को इंतहाई गरीब और नहायत पसमानदा जुमरे में रखा गया है। इनमें से बहुत से अफराद की बचत बहुत महदूद है, रस्मी कर्जों तक रसाई भी बहुत अहम कम है और उनके पास चंद ही मुनाफे बख्श असासे हैं। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर बोलोरोमा आमगाबाजार ने वफाकी हुकाम पर जोर दिया है कि वो इनफरादी तौर पर सभी मुतासर कुनबों को इस फैसले से मुतला करें और इस सिलसिले में तहरीरी या काबिल तस्दीक सबूत बैंक को फराहम करें। अमेरिका ने एक नया डिजिटल पोर्टल शुरू किया है जिसका मकसद दिफाई कंपनियों, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, सरमायाकारों और रिसर्च करने वालों को गोल्डन डोम मिजाइल दिफाई निज़ाम में लाना है, जिस पर 185 अरब डॉलर सर्व करने का मंसूबा बनाया गया है। गोल्डन डोम बराए अमेरिका के डायरेक्टर जनरल माइक गडलियन ने यह ऐलान किया है। यह प्लेटफॉर्म दिफाई कंट्रैक्टर, तजारती टेक्नोलॉजी कंपनियों, मुतालिका यूनिवर्सिटियों, रिसर्च लेबोरेटरियों और टेक्नोलॉजी से मुतालिक दीगर इदारों के दरमियान रबते के तौर पर काम करेगा। जापान की वजारत दिफा ने कहा है कि शुमाली कोरिया ने आज समंदर की तरफ एक मुश्तबा बैलिस्टिक मिजाइल दागा है। एक हफ्ते से भी कम वक्त में शुमाली कोरिया की जानिब से हथियारों के इस तरह के तजर्बे का दूसरा वाकया है। जुनूबी कोरिया की फौज ने भी रिपोर्ट दी है कि शुमाली कोरिया ने अपने मशरकी साहिल से एक नामालूम मिजाइल दागा है। मिजाइल दागे जाने का ये वाकया जुनूबी कोरिया और अमेरिका की जानिब से आइंदा हफ्ते अपने सालाना बड़े पैमाने की फौजी मशकें शुरू करने के ऐलान के 2 दिन बाद सामने आया है। उल्टी फ्रीडम शील्ड के नाम से जानी जाने वाली इन मशकों का मकसद शुमाली कोरिया से होने वाले मुमकिन खतरात के खिलाफ फौजी तैयारियों को मजबूत बनाना है। इन मुश्तरका फौजी मशकों की शुमाली कोरिया की जानिब से मुखालफत की जाती रही है और वो उन्हें अपने ऊपर हमले की रिहर्सल करार देता है। नाइजीरिया के लागोस में जारी दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत की तमगे जीतने वाली मुतासिरकुन कारकर्दगी जारी है। मर्दों के सीनियर मुकाबलों में कल रात भारत के किरण सिंह और शर्जीन शांतिमोल ने मुल्क के लिए सोने के तमगे जीते। वहीं मर्दों के सीनियर फॉइल मुकाबले में भारत के तलवारबाज तेजस पाटिल ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कांसे का तमगा जीता। इधर खवातीन भारतीय तलवारबाजों ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और खवातीन के सीनियर एपी मुकाबले में 3 तमगे जीते। इनमें तनिष्का खत्री का सोने का तमगा और उनकी हमवतन खुशी दाभाड़े का चांदी का तमगा शामिल है। शतरंज के सिंक फील्ड कप में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के जावोखीर सिंदारोव को हरा दिया है। उनकी इस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहली कामयाबी है, जो कि ग्रैंड चेस के उनके दौरे से पहले का मुकाबला है। प्रज्ञानंद शुरू से ही 95 बाजियों के इस मैच में छाए रहे। प्रज्ञानंद को 2 बाजियों से 1.5 पॉइंट मिला। कोलंबिया में मुल्क के मगरबी हिस्सों में इमदादी टीमें अपना काम जारी रखे हुए हैं। वहां शदीद जलजले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। पीर को सुबह सवेरे कॉफी की काश्त वाले इस खत्ते में 7.4 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया था। कल तक लगभग 200 अफराद के जाने तल्फ होने की इत्तला मिली थी। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों पर सवान हयात पढ़ने पर जोर दिया है। उन्होंने रील्स और सोशल मीडिया के शॉर्टकट कल्चर के खिलाफ खबरदार किया। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में एहतजाज ने बैन अवी शक्ल इख्तियार कर ली है। आलमी बैंक ने मुतनबे किया है कि पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान के हाउसिंग फंड्स की मुंतकली से गरीबी में इजाफा हो सकता है। कोलंबिया के मगरबी हिस्सों में शदीद जलजले के बाद इमदादी टीमें अपना काम जारी रखे हुए हैं और शतरंज में दूसरे दौर के मुकाबले में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के जावोखीर सिंदारोव को हरा दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम।

सभी श्रोताओं को राजेंद्र शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज आप इंतजार कर रहे हैं आप ही के फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का, जिसका नाम है आपकी पसंद। हाजिर हैं कार्यक्रम लेकर। शुरुआत करते हैं कुछ देशभक्ति चर्चा से। साथियों, हर घर तिरंगा 2026 अभियान 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक मनाया जा रहा है। इस दौरान देशभर में तिरंगा यात्राएं, बाइक रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेल्फी विद तिरंगा जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। नागरिकों को अपने घरों, प्रतिष्ठानों और संस्थानों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत विभिन्न तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। हाथों में तिरंगा और दिलों में देश प्रेम का जज्बा लिए लाखों देशवासी इस अभियान से जुड़े हैं। साथियों, ये यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि उन अमर शहीदों को नमन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजाद भारत का गौरव प्रदान किया। आइए हम सब भी तिरंगे के सम्मान और राष्ट्र की एकता के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

और साथियों, अब शुरू करते हैं आपकी पसंद के गीतों का। गीत सुनिए, फिल्म का नाम तेरे नाम। पसंद आप सभी श्रोताओं की। अंबा चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सहिबा, अनस और रेहान। हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और मदन लाल वर्मा। साथियों, ये खत हमें मिला है, क्षमा करें, ये मैसेज आया है गांव खोखरा वाली से। विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी और शगुन बारासा का। पद्मा टाकीज नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, परखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाणकर, निर्मला नवाणकर, विशाल नवाणकर। हांडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। गांव नलोई सिवानी हिसार हरियाणा से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक, वेदांश और इनके परिवार के सदस्य। रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षिता, खुशी स्वामी।

गांव सादेवाला सिरसा हरियाणा से रामेश्वर माहर, परमेश्वरी माहर, जिगर और जानवी। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, युववाणी कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी सूरतगढ़ की कॉटन सिटी चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम आपकी पसंद में अब आगे का सफर। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज के कार्यक्रम के संयोजक हैं नवीन सिसोदिया और प्रस्तुता मैं आपका दोस्त राजेंद्र शर्मा। अगली फरमाइश सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानवी का। कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। मंडी केसरी सिंहपुर से श्यामलाल राजपाल, जयपाल, संदीप कुमार, चिमनलाल। खरदोन सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी और रमेश चंद्र वर्मा। तहसील नोहर गांव 22 एनटीआर से पवन सुथार, अमरजीत, मोहन, सुनील, विष्णु, शिव, लक्ष्य सुथार। हीरावली फाजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, पिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवन रेणुमा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम, किरोड़ीवाल, सुरेंद्र भादू और इनके परिवार के सदस्य। गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दिवेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। आप सभी ने सुनना चाहा है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति को। फिल्म का नाम है 1942 ए लव स्टोरी।

जलालाबाद वेस्टचे सुरेश गगनेच्या पूनम गगनेच्या विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहुजा। आज़ाद लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साबिर राही बहरा जहां। नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। सिरसिला चूरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनकरा प्राची सोनकरा सोमल सोनकरा कार्तिक और सोनकरा परिवार। भादरा अनूपशहर से गजानंद सारस्वत डॉक्टर ताराचंद सारस्वत सोनू पवन कुमार साहिल राघव मुरारीलाल शर्मा। यहीं से मदनलाल शर्मा महावीर लोहरा ममता मीतू कीनू और पंकज सारस्वत। नौहर जिला हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुथार मनोज सुथार हिमांशु पवन शंकर बिहारी

कुमार, सोनू मिस्त्री महेंद्र सुथार, कालू मिस्त्री चंद्रशेखर, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तोसीम हाशमी, तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। गांव दोलेवाला जिला मोगा पंजाब से स्वर्ण सिंह, सांगली जिले के जत शहर से अल्फात हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, कीरत हुजरे और रेहान शेख। आप सभी ने सुना चाहा है थानेदार फिल्म का गीत, आवाजें बप्पी लहरी, अनुराधा पौडवाल और साथियों की।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब सुने वेलकम फिल्म का गीत। आवाज आनंद राज आनंद और साथियों की पसंद आप सभी श्रोताओं की। भोपालगढ़ से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा राहुल, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, छत्रपति शिवाजीनगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, फरीदकोट पंजाब से अंग्रेज सिंह गेचा, गुरमीत कौर, जगप्रीत सिंह, मनप्रीत कौर, करमजीत सिंह, चरणजीत कौर, यहीं से मनकीरत कौर, गुरसीरत कौर और गुरप्रताप सिंह और इनके

परिवार के सदस्य, गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष दीपल, दिल्ली एरिया जोन रोड मोतीनगर से मानसी, अनिल गौरव, कविता अरोरा, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, श्रीगंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जोनी बंसीवाल, धनराज बंसीवाल और इनके परिवार के सदस्य, असम से हितेंद्र दास, डोगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, तन्मय गजभिये, सनावत से शेख मूसा मोहसिन। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

गांव बनवाला हनुमता फाजिलका पंजाब से विनोद मायल सीमा लक्षिता यशिका माफी त्यातेवी सारा मायल और परिवार के सदस्य सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित रितु और मुकेश प्रजापत अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गव्या मल्होत्रा सुच्चा सिंह विनोदपुरी आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा बीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा सायना शर्मा और निवान शर्मा राजेश मेघवाल लिखते हैं भोपालगढ़ से नई आबादी हनुमानगढ़ से सुल्तान सिंह तड़ मुकेश तड़ रामचंद्र कपिलदेव और हिमानी जाखड़ गांव

आरायण से बनवारी लाल जयपाल, बिमला सोनू, ममता दीक्षा, मोक्ष सुशांत, विक्रम जयपाल, पूनम चालिया, कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश युद्धव कड़वासरा, किरसन मायल, हनुमान सारण, कीड़ू राम चोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा, गांव पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपिका गुप्ता, रिमझिम गुप्ता, रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, सूर्य नामदेव, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राजेश राकेश और ऋषिता, मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग, रतलाम एमपी से जगदीश ठाकड़, श्रीमती रंजूबाई, युवराज सिंह और शिवानी ठाकड़, गांव अमरपुरा जालूखाट से हरीश चंद्र, पूनिया उदयपुर राजस्थान से रमेश नाचाणी, भारती विनीता, बाबू भाई चांदीवाला, गांव गोपी खीरिया भांडेर जिला दतिया से राहुल पाल, श्रीमती ज्योति, अंजना पाल, हरि मोहन पाल, बेबी लक्ष्य, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और ओम कुमार सुरलकर, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ से अलका वर्मा, जगदीश चंद्र प्रजापति, विमला मोनू और राजेंद्र प्रजापति, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ से वेद मिठा और अलका मिठा, अनूपगढ़ से ज्ञानचंद, भगवती देवी, पूनम, कोमल, मेहुल, चंदन और अंकुश। लीजिए सुनिए रेस फिल्म का ये गीत, फिल्म का नाम रेस, आवाज आतिफ असलम की।

आज के इस कार्यक्रम के संयोजक थे नवीन सिसोदिया, प्रस्तुता में आपका दोस्त राजेंद्र शर्मा। आप सुनिए गीत और अपने दोस्त राजेंद्र शर्मा को आज्ञा दें। नमस्कार।

0: शताब्दी युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिराई की। चौपाल में आप सुनेंगे पत्रोत्तर, जिसमें व्हाट्सएप और ईमेल और पत्र भी शामिल किए जाएंगे। संसद समीक्षा आप सुनेंगे 8 बजे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म संगीत सुनिएगा 8:15 पर। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम 8:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत सुनिएगा 9:15 पर। चर्चा का विषय, ये कार्यक्रम 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फेसबुक फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:00। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।
1: सुनो,

कि दुनिया विच जीते भी पीर पैगंबर अवतार औलिया राजे शहनशाह संत ते सूफी थेन उन्हां सारे को पैदा करने वाली औरत जात ही तहाई। दरअसल ही दुनिया या कायनात विच जे मर्द कई हद तक हूँ कादिर की नुमाइंदगी करें दे तो औरत कुदरत की नुमाइंदगी करें दी है। ये जात मखलूक दी ओ पाक अते दिलफरी हस्ती हस्ती है जिहड़ी मुहब्बत शफकत अते कुरबानी का मुजस्मा होंदी है। हिंदे विच शक नहीं कि कुछ औरतां अपने किरदार की वजह नाल ई मियार उत्ते पूरियां नहीं उतरदियां, पर साढ़े ख्याल विच इहदी वजह कुछ खास हालात अते मजबूरियां थी सकदे। कई बारी तो ई हालत वास्ते खुद मर्द जिम्मेवार होंदे, वरना औरत जात जे इंसान दी जिंदगी विच माँ भेण अते धी दा रोल अदा ना करे तो दुनिया एक तरह खास खौफनाक जंगल बन वे। ई वास्ते ई दुनिया अते इंसानी जिंदगी विच जो खूबसूरती अते दिलचस्पी नज़र आती है वह सब औरत की बदौलत है। ये अक्सर देखने विच आया है कि कुछ लोग अते कुछ मजहबी रहनुमा औरत जात को अपनी जोहद परस्ती या रूहानी तरक्की विच रुकावट समझते हैं। दरअसल कहिंदी भी रूहानी तनजली या इखलाकी पस्ती की वजह कोई औरत नहीं होंगी, हूँ आदमी की अपनी कमजोरी होंगी है। दुनिया की तारीख में योजना कई औरतां भी गुजरे जिन्हें कई इंसान दरवेशा तो फकीर को इखलाकी पस्ती तो बचाया है। उन्होंने कई औरतां तो कई मर्दा को हकीकत के मार्फत रस्ते उत्ते चलन की भी तलकीन की है। इस तरह असं बगैर कहीं हिचकिचाहट के आख सकते हाँ कि औरत तो नजली या गिरावट का समान नहीं बल्कि इंसान का ईमान है। हुणी पहाके के दूजे हिस्से में हकीकत उत्ते भी कुछ गौर करना जरूरी है। इहदे विच इह दस्या गया कि पुत्र को इंसानी समाज विच खानदान दी निशानी समझा वेंदे, क्योंकि मर्द दी ज़्यादा अहमियत मनण वाले ई समाज विच खानदान दा सिलसिला अक्सर नरीना औलाद यानी पुत्र नाल चलदे। उवें भी अक्सर इंसानी समाज अते खास करके हिंदुस्तानी ते पंजाबी समाज विच पुत्र को खानदान दी इज्जत अते गैरत दा राखा अते घर दा कमाऊ फर्द मन्या वेंदे। उहदे मुकाबले विच धी को पराया धन अते माली तौर ते इक बोझ समझा वेंदे। हकीकत विच भावें पुत्र बेहद नाकारा होवे अते धी बेहद होनहार, पर चूंकि धी ने एक जहाड़े साड़ी समाजी रस्म के मुताबिक पराए घर वंजना होंदे अते हुण को कुछ दाज देते दी शक्ल विच भी काफ़ी कुछ देवना पौंदे, इं वास्ते समाजी तकाजे के मुताबिक पुत्र भावें सत्त या डाह होवन तां वी दुनिया तां वी उन्हां को खुशहाली का बायस अते धी भावें एक होवे तां वी हुकू बोझ मनावेंदे। सारे समाज के नज़रिए की झलक साडे रीतां रस्मां ते लोक गीतां विच वी साफ तौर ते मिलदी है। पंजाब दे हिंदू तबके दीआं शादियां दे मौके उत्ते तिल मेथरे नां दी इक रस्म अदा कीती वेंदी है। इह रस्म नाल तल्लुक रखण वाले एक लोक गीत विच इह आख्या गया, सस नूं दे तिल मेथरे जिवें जिवें सस तिल चुणे सी तिवें तिवें नूं पुत्र जणे सी सत पुत्री थी सी। इवें घर विच कई औरत दे जणेपे दे मौके ते इक कड़ियां गिणन की रस्म अदा की वेंदी है। इन रस्म मुताबिक जनेपे या प्रसूत तो बाद कीड़ी उत्ते लेटी हुई औरत को छत दियाँ कड़ियां गिणन वास्ते आख्या वेंदे अते ये मन्या वेंदे कि सुते सुते वो जीती कड़ियां गिणे सी वो उत्ती वो पुत्र जने सी। ई मौके उत्ते हिक गावण विच औरतां इवें बुलेंजन, इहो वेला ही झोली भरण दा गिण गिण कड़ियां ते भर गिण झोली पुत्रां दी दौलत जीती होवे उत्ती थोली। इन्हां दे मुकाबले धीआं शोधां तां पराया धन या परदेसना मन्या वेंदन, क्योंकि उन्हां तां चिड़ियां दे चंबे दी तरह हेक जाड़े उड़ वंजना होंदे। इं तों इलावा उन्हां को जिहड़ी दाज दे दित्ती वेंदी है हूं करके भी उन्हां को हेक तरह दा बोझ मन्या वेंदे। इं करके सरायकी दे हेक बेलोक गावण विच पहाके दे तौर ते इह आख्या वेंदे, साग ते लगे भाग दे चा पुत्रां को, दाल ते टब्बर पाल दे चा नूरी को, पूरियां कदई न थीवन पूरियां देचा धीरी को। ई तरह असं देखते हैं कि पुरानी रिवायत अते सारे समाजिक ढांचे के मुताबिक धीआं दी निस्बत पुत्रां दी अहमियत बहुत ज़्यादा मनी वेंदी है, क्योंकि उन्हां को खानदान दे नां को चलाउण वाले अते अपने घराने दी सारी जिम्मेवारी निभाउण वाले मन्या वेंदे। ई वास्ते ई पहाके दे विच उन्हां को खानदान अते टब्बर दा निशान आख्या गया। ई तों पिछों ई पहाके दे विच तीजी गल इह आखी गई है कि साड़ी गुजरान का सब तो वड्डा अते जरूरी वसीला पैसा यानी दौलत है। सच पुछो तो यह भी एक अटल सच्चाई है, क्योंकि इं दुनिया में सारे रिश्ते नाते सके संबंधी पैसे की बदल नाल ही चलते हैं।

0: आईना साज को पूछो ए तमाशा क्या है, अक्स दा ना ही जलवा है तो जलवा क्या है, नफे नुकसान दे चक्कर च उम्र लंघ गई सारी, पता हुन तीक भी ना लगा कि मिलया क्या है। सामेईन हुने तुसे सुनदे पावे सई सलीम इकबाल दी आवाज च सई बेदल सरहदी दी एक गजल। सामेईन इंदे नाल ही साडा अज दा प्रोग्राम खत्म थींदा है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिराय की। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में छः बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी पूंजी जुटाने में विकास बैंकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कहा, ब्रिक्स देशों में विश्वास और स्थिरता का सशक्त ढांचा जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद सुचारू रूप से

0: चलने देने का आग्रह। दक्षिण पश्चिम मानसून ने सावन के महीने में रफ्तार पकड़ी, आज भी कई स्थानों पर तेज बारिश। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों से राष्ट्र हित के विषयों पर सभी वर्गों के लोगों से संवाद का आह्वान किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि निजी निवेश के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री आज जयपुर में आयोजित ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में बोल रही थी। ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका विषय पर इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। और ब्यौरा समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालिहा गाजी से।
1: श्रीमती सीतारमण ने अपने की नोट एड्रेस में कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं दुनिया के प्रमुख विकास इंजन हैं, किंतु निजी पूंजी जुटाने के मामले में इन देशों के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। उन्होंने कहा कि पूंजी की उपलब्धता के साथ ही निवेशकों के विश्वास, स्थिरता, दीर्घकालिक नीतिगत ढांचा बनाए रखना भी जरूरी है। उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक को निवेश का जोखिम कम करने, वित्तीय परियोजनाओं को अधिक सक्षम बनाने और निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण बताया। संगोष्ठी में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ ने भी विशेष संबोधन दिया। गौरतलब है कि ब्रिक्स ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया के प्रमुख विकासशील और उभरते हुए देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस बार भारत की अध्यक्षता में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से जयपुर की मेजबानी में ये बैठक हो रही है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री शाह आज संसद परिसर में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है बल्कि सवाल जवाबदेही का है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ने का आग्रह किया है। उन्होंने रील्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष के विमोचन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने युवाओं से विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित होकर काम करने पर बल दिया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा, यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: देश विदेश के विश्वविद्यालयों के विधि विद्यार्थी अब राजस्थान पुलिस से प्रशिक्षु के रूप में जुड़ सकेंगे। इन्हें पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं और इकाइयों में पुलिस कार्यों का व्यवहारिक अनुभव मिलेगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बिपिन कुमार पांडे ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार पुलिस मुख्यालय ने राजस्थान पुलिस प्रशिक्षुता योजना शुरू की है। इसके जरिए प्रशिक्षु प्रभावी पुलिसिंग, आपराधिक न्याय प्रणाली, साइबर कानून और अन्य विषयों तथा अनुसंधान की प्रक्रियाओं में ट्रेनिंग ले सकेंगे। योजना के लिए प्रतिभाओं से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये योजना पूरे साल खुली रहेगी और इच्छुक उम्मीदवार राजकॉप सिटीजन ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

0: समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून ने सावन के महीने में रफ्तार पकड़ी है। इससे प्रदेश में बारिश की कमी का आंकड़ा घटकर सामान्य से 9% कम रह गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार अब तक बाड़मेर और बीकानेर सहित 7 जिलों में अत्यधिक वर्षा हुई है। अजमेर, चूरू, भीलवाड़ा, भरतपुर और जयपुर सहित 21 जिलों में सामान्य और 13 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। प्रदेश के 693 छोटे बड़े बांधों में से आधे से ज्यादा जलाशयों में पानी की आवक हुई है। 25 बांध लबालब हैं। इस बीच आज भी कई स्थानों पर भारी बारिश का दौर चला। चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा और भीलवाड़ा में मूसलाधार बरसात हुई। चित्तौड़गढ़ की बस्सी में 22 सेंटीमीटर पानी बरसा। जिले के बेगू, गगरार, निम्बाहेड़ा, डोंगला, भदेसर और रावतभाटा में भी जमकर बरसात हुई। रावतभाटा क्षेत्र का खोकी बांध पानी की तेज आवक के कारण टूट गया। इससे कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने कल 26 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कल अधिकतर स्थानों पर मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। रिमझिम बारिश के दौर के बीच आज हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया गया। विभिन्न पर्यटन स्थलों पर लोग परिवार सहित मौसम का लुत्फ लेते नजर आए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रत्येक लोकतंत्र सेनानी को अपने जीवन के अनुभव लिखित रूप में दर्ज करने चाहिए। राज्य सरकार भी उनके योगदान को संरक्षित करेगी। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के त्याग और बलिदान की गाथाएं युवा पीढ़ी तक पहुंचे, इसीलिए इन सेनानियों को अपने अनुभव किताब के रूप में लिखने चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों से राष्ट्रहित के विषयों पर सभी वर्गों से निरंतर संवाद का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानी समाज और राष्ट्र को दिशा देने की क्षमता रखते हैं। उनके अनुभवों का लाभ प्रदेश को मिलना चाहिए।
1: मुझे ये विश्वास है कि आप जहां भी जाएंगे, जिस किसी से बात करेंगे, जिस किसी से विषय रखेंगे, वो निश्चित रूप से उसको दिशा मिलेगी। आप ऐसे लोगों के पास जाइए, बैठिए, उनको बताइए। डेली की अगर आप 10, 5, 15 लोगों से मिलोगे, बात करोगे, तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करेगा।
0: पत्र सूचना कार्यालय की ओर से आज जयपुर में नशा मुक्त भारत अभियान पर मीडिया वार्ता का आयोजन किया गया। मादक पदार्थों की रोकथाम और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए मीडिया की भूमिका पर चर्चा करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया। वार्ता में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर अभिषेक नारायण सिन्हा ने मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में मीडिया की अहम भूमिका है। श्री सिन्हा ने मीडिया कर्मियों से नशे के गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया।
2: जो एक पिलर है हमारा विजन डॉक्यूमेंट का, हार्म्स एंड डिमांड रिडक्शन, तो डिमांड रिडक्शन में मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि अवेयरनेस मीडिया के बिना हो ही नहीं सकता। कितनी भी एजेंसी कुछ भी काम कर ले, जब तक मीडिया लोगों को अवेयर नहीं करेगी नशा के दुष्परिणामों का, तब तक नशा मुक्त भारत अभियान मुश्किल है। अभी इस साल 13 अवेयरनेस प्रोग्राम किए, फिर हमने कई सारे कोचिंग संस्थाओं में अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया, उनको शपथ दी। तो इस तरह से होलसम अप्रोच से ही हमारा टारगेट होगा राजस्थान को ड्रग्स मुक्त करना, और हर स्टेट अपना ये टारगेट ले तो ये पूरा इंडिया ड्रग मुक्त 2029 तक होगा।
0: पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक अनुभव बैरवा ने इस मौके पर कहा कि युवाओं को नशे से बचाने और स्वस्थ जीवन शैली के लिए जन जागृति फैलाने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र, रेडियो और टीवी के जरिए समाज में सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा सकता है। इससे नशा मुक्त भारत का संकल्प पूरा करने में सहायता मिलेगी। आज विश्व हाथी दिवस है। ये दिन हाथियों के आवास और उनके संरक्षण के प्रयासों को समर्पित है। भारत दुनिया के लगभग 60% जंगली एशियाई हाथियों का घर है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में हाथियों के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट एलिफेंट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत हाथियों के प्राकृतिक आवास को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाथी दिवस पर पेश है न्यूज डेस्क एक रिपोर्ट।
3: हाथियों को जंगल की शान और इकोसिस्टम का इंजीनियर कहा जाता है।

0: के 14 राज्यों में 33 हाथी रिजर्व और 150 महत्वपूर्ण हाथी कॉरिडोर सक्रिय हैं। हाथियों की आवाजाही पर नजर रखने और मानव हाथी संघर्ष टालने के लिए कैमरा ट्रैप, ड्रोन और सेंसर सहित आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। जयपुर में देश का एकमात्र हाथी गांव भी बसाया गया है। वहीं आमेर में हाथी सवारी काफी लोकप्रिय है। हालांकि दुनिया भर में बढ़ते पशु कल्याण अभियान और जिम्मेदार पर्यटन की अवधारणा का असर इस पर देखने को मिल रहा है और पिछले 5 साल में हाथी सवारी करने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या में कमी आई है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी पूंजी जुटाने में विकास बैंकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कहा, ब्रिक्स देशों में विश्वास और स्थिरता का सशक्त ढांचा जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष से संसद सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह। दक्षिण पश्चिम मानसून ने सावन के महीने में रफ्तार पकड़ी। आज भी कई स्थानों पर तेज बारिश। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों से राष्ट्रहित के विषयों पर सभी वर्गों के लोगों से संवाद का आह्वान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। राजधानी जयपुर में पिछले एक माह में विभिन्न कार्यक्रम और महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई। इनमें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों, प्रशासनिक गतिविधियों, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल और पर्यटन से जुड़े कामों के साथ बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों से बचाव पर भी जोर दिया जा रहा है। जिले में हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। वहीं नगर निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 9 अगस्त को जयपुर में अल्बर्ट हॉल से विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। रैली रामनिवास बाग से सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार होते हुए बड़ी चौपड़ तक पहुंची। इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन, पुलिस, सेना, विद्यार्थी, एनसीसी, स्काउट गाइड, खिलाड़ी, व्यापारी, पूर्व सैनिक और आम नागरिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। इससे पहले दोनों नेताओं ने शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हाल ही में ब्रिक्स उद्यम और व्यापार मंत्रियों की बैठकें जयपुर में आयोजित की गईं। बैठकों में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उपस्थित रहे। इस दौरान ब्रिक्स देशों के उद्योग और व्यापार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उद्योग मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत ने ब्रिक्स इनक्यूबेटर नेटवर्क और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड का भी प्रस्ताव रखा। बैठक में एमएसएमई, फोटोवोल्टिक उद्योग, स्टार्टअप और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का उद्देश्य व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देना है और सदस्य देशों के बीच विश्वास मजबूत करना है। इसके अलावा आज और कल ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर को पीएम ई बस सेवा के तहत 16 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है। उन्होंने शासन सचिवालय में बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई बसों के संचालन के लिए शहर में जगह जगह बस स्टैंड, चार्जिंग पॉइंट और जरूरी ढांचा विकसित किया जा रहा है। नगर निकाय आम चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बीते दिनों बैठक आयोजित हुई। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, मतदान दलों के गठन और प्रशिक्षण, निर्वाचन सामग्री, ईवीएम, कानून व्यवस्था, परिवहन और मतदाता जागरूकता से जुड़े कार्यों की समीक्षा भी की गई। चुनाव के सुचारू संचालन के लिए जिले में 27 प्रकोष्ठ बनाए गए हैं।

0: और सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। पंचगौरव कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले को 287 करोड़ 77 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसमें महिला सशक्तिकरण, आंवला उत्पादन और प्रसंस्करण, लिसोड़ा प्रजाति के विकास, कबड्डी, आमेर दुर्ग और रत्नाभूषण उत्पाद को बढ़ावा देने के कार्य शामिल हैं। वहीं महिला समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए मोबाइल वैन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कबड्डी खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों में आवश्यक उपकरण और रिहैब की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जिले में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला कौशल और उद्यमिता समिति की बैठक हुई। इसमें कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बेहतर समन्वय पर चर्चा की गई। समिति का उद्देश्य स्थानीय रोजगार के अवसरों की पहचान कर युवाओं को मांग के अनुरूप प्रशिक्षण से जोड़ना है। दूदू क्षेत्र में 113 दिनों से चल रहा भैराना धाम बचाओ आंदोलन सहमति के बाद समाप्त हो गया है। प्रशासन और समिति के बीच प्रस्तावित रीको औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्नियोजन को लेकर सहमति बनी। प्रशासन ने वर्षा जल संरक्षण, धार्मिक आस्था, पर्यावरण, स्थानीय परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों का ध्यान रखने का आश्वासन दिया। इसी के साथ जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निजी पूंजी जुटावण माय विकास बैंकारा काम ने खास बतायो। कहो ब्रिक्स देशा माय भरोसा अर्थरता रो मजबूत ढांचो जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो सरकार सगला मुद्दा माथे चर्चा सारू तैयार। विपक्ष हूँ संसद री कार्रवाई ठीक ढंग चलावण माय मदद री अरज कीनी। सावण माय आज ही कई थोड़ा चोखो में बरसियो। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लोकतंत्र सेनानियाओं देश रा भला रा मुद्दा मत है सगला तबकारा लोगाओं चर्चारी अरज कीनी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहो है कि सार्वजनिक पूंजी ने निजी निवेश ने बढ़ावो देवन वाला तत्व रा तौर काम करनु चाहिए। वह ब्रिक्स देशां रा वित्त मंत्रियां और केंद्रीय बैंक रा गवर्नरां री आज जयपुर माय राखी जी मीटिंग माय बोल रही ही। मीटिंग रो मुद्दो ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका राखी जियो। पेश है समाचार कक्ष सालेहा गाजी री रिपोर्ट।
2: श्रीमती सीतारमण ने अपने की नोट एड्रेस में कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं दुनिया के प्रमुख विकास इंजन हैं, किंतु निजी पूंजी जुटाने के मामले में इन देशों के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। उन्होंने कहा कि पूंजी की उपलब्धता के साथ ही निवेशकों के विश्वास, स्थिरता, दीर्घकालिक नीतिगत ढांचा बनाए रखना भी जरूरी है। उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक को निवेश का जोखिम कम करने, वित्तीय परियोजनाओं को अधिक सक्षम बनाने और निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण बताया। संगोष्ठी में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ ने भी विशेष संबोधन दिया। गौरतलब है कि ब्रिक्स ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया के प्रमुख विकासशील और उभरते हुए देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस बार भारत की अध्यक्षता में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से जयपुर की मेजबानी में ये बैठक हो रही है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो है कि सरकार विद्यार्थियों रा मुद्दा समेत किणी विषय माथे चर्चा सारू तैयार है। वे आज संसद भवन परिसर में खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा है। गृह मंत्री कहो कि सरकार संसद में सदस्यों रा सगला सवालों रो जवाब देवेला। श्री शाह विपक्ष रा सदस्य माथे सदन री कार्रवाई में अड़चन डालबारो आरोप मंडियो।
3: सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
1: दुजिकानी लोकसभा में विपक्षरा नेता राहुल गांधी कहो कि विपक्ष नीट परीक्षा पेपर लीक उंचुड़िया मामला में विद्यार्थियों रा प्रदर्शन रे दौरान पुलिस री कथित कार्रवाई रे बारा में सरकार जवाबदेही री मांग कर रियो है। संसद भवन परिसर में खबर नवीसा सागे बातचीत करता था।

0: गांधी कहो कि विपक्ष ने गृह मंत्री रा बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है बल्कि सवाल जवाब दे ही रो है। ये बीच संसद रा दोनों सदना री कार्रवाई में आज ही विपक्ष रा हंगामा रा कारण अड़चन आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौजवानों वारा मन भावता लोगों रे आत्मकथा पांचवा सारू कहो है। वह रील्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रा जमाना में शॉर्टकट काम लेवनो बचबारी राय दीनी। श्री मोदी आज नई दिल्ली में पहली वाला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद री आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष रा विमोचन रे मौके बोल रहा है। वह नौजवानों विकसित भारत बनावन रा मिशन ने आगे बढ़ावन सारू पूरा मनु काम करण माथे जोर दीनो।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा, यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: देश प्रदेश रा विश्वविद्यालयों में कानून री पढ़ाई करण वाला अब राजस्थान पुलिस में सिखावन ले सकेला। वाने पुलिस मुख्यालय री न्यारी न्यारी शाखावां और इकाइयां में पुलिस रा कामारो व्यवहारिक अनुभव मिलेला। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बिपिन कुमार पांडे कानून जारी करी ज्या हुकम रे मुजब पुलिस मुख्यालय में राजस्थान पुलिस प्रशिक्षुता योजना चलाई ची है। इन जरिए सिखावन लेवन वाला असरदार निगरानी आपराधिक न्याय प्रणाली साइबर कानून और दूजा विषया और अनुसंधान री प्रक्रिया री सिखावन ले सकेला। इन सारो आखा साल राजकॉप सिटीजन ऐप रे जरिए अर्जी दी जा सके है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। सावन माय वह रही चोखे बिरखाऊ प्रदेश माय बारिश रे कमी रो आंकड़ो घटर सामान्य 9% कम रह गयो है। जल संसाधन विभाग रे मुजब हाल ताई बाड़मेर और बीकानेर समेत 7 जिला माय घनी जोरदार बिरखा भी है। अजमेर चूरू भीलवाड़ा भरतपुर और जयपुर समेत 21 जिला में सामान्य और 13 जिला में सामान्य कम पानी बरसियो है। प्रदेश रा 693 छोटा मोटा बंधा मायू आधाओं बत्ता माय पानी आ रियो है। 25 बंधा लबालब भर गया है। ये बीचे आज ही चित्तौड़गढ़ झालावाड़ बारा और भीलवाड़ा माय झमाझम बिरखा भी। चित्तौड़गढ़ जिला रा बस्सी माय 22 सेंटीमीटर पानी बरसियो। जिलारा बेगू गंगरार निम्बाहेड़ा डूंगला बदेसर रावत भाटा माई चोखो में बरसियो। रावत भाटा हल्का रो खोकी बंधो पानी री तेज आमद रे कारण टूट गयो जिणु कई हल्का माई पानी भर गयो। मौसम महकमो काल 26 जिला सारू बारिश रो येलो अलर्ट जारी कीनो है। काल घनखर ठोणा मझला और कठा कठा तेज दर्जा री बिरखा रा आसार है। रिमझिम बारिश रा दौर बीचे आज हरियाली अमावस मनाई ची। ये मौके सैर सपाटा री न्यारी न्यारी ठोड़ा लोग परिवार समेत गोठ मनाता नजर आया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि लोकतंत्र सेनानिया ने वारी जिंदगी रा अनुभव लिखना चाहिए ताकि राज्य सरकार वारा योगदान री जानकारी हेर राख सके। श्री शर्मा आज जयपुर माए वारा रेवास माथे राखी ज्या लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह माए बोल रहा है। वह कहो कि लोकतंत्र सेनानिया रा त्याग और बलिदान रे गाथा नुवी पीढ़ी ताई पोगा वनसारू वाने अनुभव किताब रा रूप माई लिखना चाहिए। मुख्यमंत्री कहो कि लोकतंत्र सेनानियाओं देश रा भलाऊ जुड़िया मुद्दा माथे लगातार चर्चा वेवनी चाहिए। वह कहो कि लोकतंत्र सेनानी समाज और देश ने दिशा देवन रो बूतो राखे है और वारा अनुभव रो फायदो प्रदेश ने मिलनो चाहिए।
2: मुझे ये विश्वास है कि आप जहाँ भी जाएंगे जिस किसी से बात करेंगे जिस किसी से विषय रखेंगे वो निश्चित रूप से उसको दिशा मिलेगी। आप ऐसे लोगों के पास जाइए बैठिए उनको बताइए डेली की अगर आप 10-15 लोगों से मिलोगे बात करोगे तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करेगा।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज स्टेट इनोवेशन हब बनावन रा बारा माय मीटिंग लीनी। इनमाय जयपुर रा प्रताप नगर कोचिंग हब इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स माय स्टेट इनोवेशन हब बनावन रा प्रस्ताव रा बारा

माय चर्चा करी छे। मुख्य सचिव प्रस्तावित हब माय इन्क्यूबेशन सेंटर प्रदर्शनी हॉल और क्षमता निर्माण कार्यशालावां सारू जरूरी सुविधा शामिल करण रा हुकम दीना। नशा मुक्त भारत अभियान रे बारा माय आज जयपुर माय पत्र सूचना कार्यालय रे ओर मीडिया वार्ता राखी जी। मादक पदार्थों की रोकथाम और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए मीडिया की भूमिका मुद्दा माथे चर्चा करण सारू राखी जी वार्ता माय केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो रा जोनल डायरेक्टर अभिषेक नारायण सिन्हा

0: श्री सिन्हा मीडियाओं नशारा गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान रे बारा माए लोगों ने जानकारी देवन बाबत कहो।
1: जो एक पिलर है हमारा विजन डॉक्यूमेंट का हार्म्स एंड डिमांड रिडक्शन, तो डिमांड रिडक्शन में मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है क्योंकि अवेयरनेस मीडिया के बिना हो ही नहीं सकता। कितनी भी एजेंसी कुछ भी काम कर ले, जब तक मीडिया लोगों को अवेयर नहीं करेगी नशा के दुष्परिणामों का, तब तक नशा मुक्त भारत अभियान मुश्किल है। अभी इस साल 13 अवेयरनेस प्रोग्राम किए, फिर हमने कई सारे कोचिंग संस्थाओं में अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया, उनको शपथ दी। तो इस तरह से होलसम अप्रोच से ही हमारा टारगेट होगा राजस्थान को ड्रग्स मुक्त करना, और हर स्टेट अपना ये टारगेट ले तो ये पूरा इंडिया ड्रग मुक्त 2029 तक होगा।
0: पत्र सूचना कार्यालय रा निदेशक अनुभव बैरवा कहो कि नौजवानों ने नशारी लतों बचावन और स्वस्थ जीवन शैली सारू जनता माए जाग जगावन रा काम माए मीडिया घणो खास है। श्री बैरवा कहो कि अखबारा रेडियो और टीवी रे जरिए समाज माए सकारात्मक वातावरण बनायो जा सके है। आज विश्व हाथी दिवस है। वो दिन हाथियां रा रहवास एरवाने बचावन री कोशिशां ने समर्पित है। भारत दुनिया रा करीब 60% जंगली एशियाई हाथियां रो घर है। ई मौके केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए हाथियां ने बचावन सारू चलाया जा रहा प्रोजेक्ट एलिफेंट रो जिक्र कीनो। देश में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय री ओर प्रोजेक्ट एलिफेंट रा तहत हाथियां रा रहवास ने बचावन री कोशिशां करी जा रही है। हाथियां ने जंगल री शान और इकोसिस्टम रा इंजीनियर कहा जावे है। देश रा 14 राज्यों में 33 हाथी रिजर्व और 150 खास हाथी कॉरिडोर है। हाथियां री आवाजाही माथा नजर रखन और इंसाना और हाथियां री लड़ाई टालबा सारू कैमरा ट्रैप ड्रोन और सेंसर समेत नवी तकनीक काम ली जा रही है। जयपुर माए देश रो एक लो हाथी गांव ही बसाई चियो है। आमेर माए हाथी री सवारी ये घनी लोकप्रिय है। हालांकि दुनिया भर माए बधता पशु कल्याण अभियान और जिम्मेदार पर्यटन री सोच रो असर ई माथे ही नजर आवन लाग्यो है। अरलारला 5 साल माए हाथी सवारी करन वाला परदेसी सैलानिया री तादाद माए कमी आई है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहा हो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निजी पूंजी जुटावन माए विकास बैंकां रा काम ने खास बतायो। कहो ब्रिक्स देशा माए भरोसा अर्थरता रो मजबूत ढांचो जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो सरकार सगड़ा मुद्दा माथे चर्चा सारू तैयार। विपक्ष संसद री कार्रवाई ठीक ढंग चलावन माए मदद री अरज कीनी। सावन माए आज ही कई थोड़ा चोखो में बरसियो। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लोकतंत्र सेनानियाओं देश रा भला रा मुद्दा मत है सगड़ा तबका रा लोगों चर्चा री अरज कीनी। इस आ गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।

मीडियम वेव 326.72 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम चौपाल। प्रस्तुत करता है रमेश चावरिया।

और रेडियो पर जका बाजा और थे सुनिया तो बे कार्यक्रम किसा करया बंगमा किसी की जानकारी अब बढ़िया लागी और आने वाला कार्यक्रम में थे किसी जानकारी सुनना चाहो तो एज की बातें हैं आज की प्रतिक्रिया है बे आज थे अपने संदेशा का मांडी भी है और मेल जगह है आभार हूँ देखने आ रहे हूँ का भाई लोग मेल भी भेजने आ रहे हैं तो आपने किया है कि जो को पिछलो कार्यक्रम सुनियो और बिंगी जी की प्रतिक्रिया ही बा ही माननी है और मैं देखने आ रहा हूँ कि आपने संदेश गमा मेल गमा कई भाई लोग जगह है बे फरमाइशा लिखने आ रहे हैं तो फरमाइशा देखो सा आपने गीतार गजरो जो को कार्यक्रम है ना वो स्पेशल आपा रख रखियो है और शुक्रवार के दिन गीतार गजरा गमा थी थारी फरमाइश मार देख रो क्योंकि दूर दराज चूँ कई जगह भाई बंधु है बे अपने संदेश मेल जगह है बे फरमाइश के तौर पर लिख दे और बा फरमाइश जकी है बा कई बार कार्यक्रम में पूरी कोनी हो सकनी क्योंकि प्रतिक्रिया जकी बांचा तो भाई लोगों का उथला देना भी जरूरी है आप बात थे भी जानो और सियाणा मिनख हो और उथला ना देवा तो देखो सा फिर अपने पत्र उत्र को महत्व ही की रेजे तो इन वास्ते आज प्रतिक्रिया ही बांचांगा फरमाइशा आपने अगले शुक्रवार ने गीतार गजरा गवा थे मांडियो बिंगमा जी की भी थारी फरमाइशा जी की वा पूरी कर सा अपने अब अपा एक भजन सुन लिया शुरुआत गमा और पछा थरा संदेश मेल और हूँ कागज भी ले रहे हूँ वे बांचांगा बंगमा लिखड़ी जी की प्रतिक्रिया है वे बांचांगा तो सबसे पहले अपा एक भक्त धर्मपाल भारती की आवाज गमा वो भजन सुना लो थे भी सुनो।

राम राम सा कार्यक्रम चौपाल सुनिए सगळ्या परिवाराने भाई रमेश सरगा घणान घणा राम राम मोकळा मोकळा राम राम। भाई लोगो ओ सावण गो आज आपनो दूसरो प्रोग्राम है या मान सका भाई रामेश्वर को दूसरो प्रोग्राम है और इंगमा आज थारा जका कागज है मेल है संदेश जका है बे बांचांगा और क्यों बांचांगा इंगो थाने बता देवांगा। आज आपने बुधवार को दिन है ना, बुधवार का दिन आपा प्रतिक्रिया जगह कागज है और पिछला जगह कार्यक्रम आपा आठू चलाया।

बिल्कुल सर, थाने धर्मपाल भारती की आवाज़ का शुरुआत का एक भजन सुना दियो बाबा रामदेव जी को, और केरी केरी जी की बिरखा है बा कई था कई जगह अपना होने ला रही है। पर बात करें आप आज कागजा की, मेल की और संदेश की, तो सर सुपेली अपना कन कागज जो है वो पुगड़ो है सा अपने रायण वार्ड नंबर 12 शू वो कागज लिखकर मांडर भेजे है, और वो लिखियो है अपने जका आपको नाम है वो लारला पास लिख रखियो है, और लिखियो है रणजीत सोलंकी, परमजीत कौर सोलंकी, विष्णु देव सोलंकी, राजवीर सोलंकी, रमन राठौड़, जस्सू पवार, जगवीर सोलंकी और पूरो सगड़ो वांगो परिवार। ये लिखा है कि राम राम जी, आपने कार्यक्रम पेश कराना महारा कानी चुका घनी घनी रामा श्यामा और पूरी टीम ने घनी घनी बधाई। आई ती बात लिखी है तो थाने भी महारा कानी चुका घनी घनी मोगली मोगली रामा श्यामा, और प्रतिक्रिया जी की अब कागजिया मांडी करो सा आपने, है ना रामा श्यामा तो बिया तो आप करी लिये वहाँ रेडियो के मार्फत एक दूसरे छू, पर प्रतिक्रिया जिकी है बात जरूर मांडियो अगले कार्यक्रम में अपने कागज के माँ उड़ीक रहेगी। वो अपने गांव राजपुरा छू कागज पुग्यो है सरदार हरदीप सिंह और जगवीर सिंह, धर्मवीर झोर और जगशीर सिंह और ज्वाला सिंह, ये भी रामा श्यामा लिखी है और आगा कुछ लिखियो को नहीं सभी तो आपको जो पूरा पतो लिख रखे है कि मारो गांव राजपुरा है, तहसील अभोर है और जिला फाजिलका है, तो बिल्कुल अच्छी बात है सा प्रतिक्रिया थे भी मांडे करो कागज मांडियो इन वास्ते थारो मोकड़ो सारो धन्यवाद। कनेरा मोला पटियाला सू मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, निहारिका और पलक, करण, गीतू, वंश बत्ता, हार्दिक आरल मिलगी लिखी है आ रामा श्यामा ही लिखी है सा। मसीता डबवाली सू दर्शन लोट, सरगुन, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, हनी लोट, ये भी आपने फरमाइश मांडर भेजिए सा अपने कार्यक्रम में आपने किया का आज आपने प्रतिक्रिया जिकी है बा ही बनचांगा फरमाइश आपने गीतर गजरे में थे जरूर भेजियो और थारी पूरी होगी सा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब सू हरदेव मिक्का, बलविंदर बिरक, जितेंद्र बिरक और मिक्का बिरक आ कागज मांडियो है, ये भी रामा श्यामा लिखी है, और वो कागज पुग्या गांव हरिपुरा अभोर पंजाब से महेंद्र बिश्नोई, वेद प्रकाश बिश्नोई, अमित बिश्नोई, अजय बिश्नोई, ज्ञान बिश्नोई, एक है कह मारो जो को कागज है वो जरूर शामिल करियो सा, और थारो कार्यक्रम बड़ो अच्छो चलन आ रहा है, प्रस्तुति करने वाला कह मारा कहने से गणिन गणी रामा श्यामा, और थारो जो को अंदाज है वो बड़ो निरालो है, बिल्कुल सा अपना कार्यक्रम जो है वो थाना अच्छो लग गए इन वास्ते थारो बोकड़ो सारो धन्यवाद। सादुल शेर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान कागज मांडियो है और बड़ो फूटरो लिखर भेजे है जिकी बातें लिखी है बे आपने शब्दांग माँ बड़ी फूटरी फूटरी सुनी सुनी लिखाई गां लिखे ये मानस का के लिखारा बड़ा जोर का है, और पहली बार उन देखना आ रहे हो प्रतिक्रिया तो आपने चौहान साहब थारी आई है, और कार्यक्रम माए कह थे मारी हाजिरी लगाओ, बिल्कुल सा लाग गई थारी हाजिरी कार्यक्रम में कागज को है वो थारो हूँ लेर बैठे हूँ पढ़ रही हूँ थे सुनता हो, और आगा लिखे है कि 26 तारीख ने कह भुरू भाई नवीन जी और सिरपाल जी जो को कार्यक्रम प्रस्तुत करियो वो बड़ो अच्छो लागे, और मुम्बल पर जिकी जानकारी दी बड़ी चौखी लगी, और 27 ने कह 27 मई ने अपना कागज बहुत पुराणो है ना, तो 27 मई ने कह कार्यक्रम पत्र उत्तर नवीन जी और सुनील भाई प्रस्तुत करियो बड़ो पसंद आयो, 28 मई ने कह तिल की खेती पर चंद्रशेखर जी से जिकी जानकारी दी बड़ी फूटरी लगी, और राजस्थानी नाटक का पग फेरो बड़ी एक अच्छी सीख दे गयो, और 29 तारीख ने कह गीता और गजरा गमाए का भजन पसंद आया और भाई रामेश्वर जी का पेश करियो, बिल्कुल आपने कार्यक्रम 29 मई ने में ही पेश करियो सा, और थाने 28 तारीख वाला 27 तारीख वाला बे सारा कार्यक्रम अच्छा लग गया

पत्र उत्तर तीसरे शुक्रवार ने कहा आपका पत्र मिला कार्यक्रम की शुरुआत होने ला रही है, वो भी बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल आपने कार्यक्रम में थोड़ी सी बदलाव जो क्या है वो तब्दीली जो की है वह करी है और बात हारी फरमाइशा पर ही करी है कि कार्यक्रम थोड़ा सा ताल आपने बंद हो रहा पिछला समा से तो बे कार्यक्रम जो क्या भी दोबारा शुरू कर दिया आपने, है ना जी। आपका पत्र मिला है और थोड़ा सा दिना बाद में आपने आकाशवाणी सूरतगढ़ से अठू बालवाटी का जो को कार्यक्रम है वो भी सुनने मिलेगा थाने और कई आपने जो कि महिलाओं जो को कार्यक्रम हुआ घर आंगन है तो बिन आपने जो को महिला जगत है बिना भी फरमाइशी कर दियो तो कार्यक्रम सुनता रहे करो थे थाने बदलाव जो कहे भी थारे हिसाब से ही कर ला रहा हाँ थारे लिए ही कर ला रहा हाँ। और बदलाव सार्थक जद मानी जाओ जद कार्यक्रम थे सुनूंगा और प्रतिक्रिया मारते मंडोगा। आगे में यहाँ लिखा है कि ये चौपाल कार्यक्रम में खेती संबंधी जी की जानकारी है वह बड़ी काम आने ला रही है। शुक्रवार ने गीता और गजरो जो है वो बड़ा पसंद आयो भी वहाँ सावण का जका गीत है वे सुनने मिलया और मारी कह माता जी है गुड्डी देवी बंगो एक सुझाव है कि आने वाला कार्यक्रम है कि बाबा रामदेव जी का भजन और हो सके तो रुणिचा धाम या फिर रामदेवरा। अच्छा रामदेवरा की जी की रिकॉर्डिंग के बारे में थे बोलने आ रहे हो तो हो सके अपना आने वाले टाइम में थने रुणिचे की रिकॉर्डिंग है बस सुनने मिले भी हैं तो गोगा मेडी की जी की अपने भट्ठे की जी की रिकॉर्डिंग है बाकी बार सुनाई करा और हो सके आप रुणिचे से भी एक दिन रिकॉर्डिंग करके ले गया वहाँ अब आज की अपना मोटर अधिकारी है बंग सामने जरूर रखांगा सा है ना। संदेश मांडियो गोदारा साहब इन वास्ते थारो मोकड़ो सारो धन्यवाद। सूरतगढ़ से पवन कुमार लेखराज रवि कुमार सुरजीत सिंह रणवीर ये भी आपने संदेश मांडियो है कि चौपाल कार्यक्रम का बड़ो दाया है चौपाल में कह थे जी बातें बताओ खेतीबाड़ी के बारे में पे माने बड़ी गणी दाया है सा तो थारो भी मोकड़ो सारो धनबाद सा कार्यक्रम थे भी सुनता रहो। लियो सा वो आपने संदेश लिखकर भेजियो है और आपको जो को बनवारी लाल जयपाल लिखियो है लेकिन आपको जो को पतो है ना वो पूरो लिखियो को नहीं सा लिखियो है कि चिट्ठी पत्री कार्यक्रम पेश करने वाला ने मारा का निशुंग घनी घनी रामा श्यामा तो थाने भी मोकड़ी सारी रामा श्यामा और 15 अगस्त के अपने आन ला रही है तो स्वतंत्रता दिवस की आकाशवाणी ने कह घनी घनी मोकड़ी मोकड़ी बधाई। बिल्कुल सा थाने भी अपने स्वतंत्रता दिवस की आज़ादी के दिवस की मोकड़ी मोकड़ी बधाई और आगा लिखियो है कि नरमा का मांस सफेद मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया और कोई उपाय बताओ और बरसात में क्या पशुओं में मौसमी बीमारी जिकि लागे भाई रोग जका लागे बासु बचाव का तरीका भी थे बताओ सा। बिल्कुल सा आपने किया कि अब नरमंग उसको आपने चलना ला रहे है टेम और इंग माँ किया कि जी थोड़ा सो मौसम में नमी आई है तो इंग माँ कई जगह कीट रोग व्याधियाँ जिकी है भी लागने की संभावना है तो आपने थोड़ी सी राख रुखाली जिकी अब बढ़िया रखो थोड़ा सा सावचेत रहो थे भी और अगर यहाँ लगेगा आपने नरमंग माँ सफेद माखी गो जिसका धोलिया मच्छर है बंगो प्रकोप ज़्यादा हो गयो तो हो सका कोई भी दूसरा है लेकिन बिंग पहचान जिकी है जी आपने जो सफेद मच्छर हुआ है ना जयपाल साहब इंग माँ जी इंगो जो को रंग है वो हड़को सफेद हो पीड़ो भी हड़को फड़को सो हुए बिंग माँ और इंगी जो को आकार है वो 2 मिलीलीटर जो आस पास हुआ है 2 मिलीमीटर जो को आकार है वो अगर है और इंग जी की सुंडी है बाप बिना पंखियाँ गए वह आएंगी पहचान है निशानी है आएंगी और पतियांग के निचले जो किस्ता है मिंग ऊपर रस चूस गए और शहद जिसो चिपचिपो जो को पदार्थ है अगर वो छोड़न ला रही है जगह के ऊपर फंपूद आपन दिखाई देने ला जाए और बाद में पत्तियाँ जी की वे काली पड़न ला जाए और पत्तियों ऊपर राख या फिर तेली अपन दिखाई देने ला जाए तो फिर यहाँ समझो कि अपने नरमंग फसल का माँ सफेद माखी आ गई तो अपन इंगल ये के करना है कि या तो आपका प्रकाश पास जो को है वो अपन जरूर लगाना चाहिए प्रकाश पास है या फिर फेरोमैन ट्रेप जो को है वो लगाना चाहिए। फिर भी अगर इस जगह कीट नियंत्रण ना हो ला रहा तो नियमयुक्त जो कि आपने आवे ना तेल जो को आवे नीम आलो बिंग सागे तरल साबुन जो की है वह मिला गए और 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी सागे मिला गए अरापा 1 मिलीलीटर जो को पानी है वो मिला गए जी हाँ नीम जो को तेल है वो 5 मिलीलीटर लेना है और 1 मिलीलीटर जो है वो तरल साबुन जो घोड़ा वो लेना है और 1 लीटर पानी मिला गए घोल बना गए अब वो छिड़काव कर सका। इन अलावा तिल को जो को तेल है बिंग सागे तरल साबुन जो की है जहाँ तिल को तेल है वो 12.5 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर जो को है वो तरल साबुन को घोल लेना है और 1 लीटर पानी सा घोल बना गया बिंग दरगे हिसाब से आप छिड़काव करना है। अगर केमिकली जो को है रासायनिक जो को छिड़काव है वो अगर करना चाहो तो अमीडा क्लोरोप्रिट जिसकी दवाई है 17.8% SL बा आपने 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी से घोल बना के अभी छिड़काव कर सका तो इंगो जो को नियंत्रण है वो हो सके सा। अब रही बात आपने पशुओं में मौसमी बीमारियां की तो आपने किया कि बरसात को मौसम चलन ला रही है तो बिंग वहाँ पशुओं के नीचे जो को आलिड़ो सिलिड़ो जो है वो नहीं रहने देना चाहिए बिंग जो को सुखाण जो को बिछावण जो है वो आपने बदल तो रहना चाहिए नीचे सुखीड़ो जो है वो टेम टेम पर करते रहना जरूरी है और इनके अलावा आसा पास है अगर कादू कीचड़ है तो बिन साफ सुथरों करके रखा ताकि मुँह पका खुरपका जगह रोग है भाई अभी सीजन का माँ ये मौसम का माँ ही हो है ना।

ने संदेश मंडियो इन वास्ते थारो मोकलो सारो धनवाद सा। वो संदेश अपने ती लिख भेजे गांव और निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा। ए बी का चौपाल कार्यक्रम पेश करने वाला महाराकन से घणी गणी रामा श्यामा। और कार्यक्रम जो है वो अच्छा लगे सुन ला रहा हाँ और इनको पेश करना जो अंदाज है वो भी है अच्छा लगे तो अंगो भी मोकलो सारो धन्यवाद। संदेश पुग्यु है नादेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़ दयानंद गायकवाड़ ओमकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़। ए बी का कार्यक्रम जो है मैंने पसंद आ रहा है गीतार गजरू जो है वो भी मैंने बड़ो पसंद आया सा। 58 एन पी राइसनगर से सुल्तान राम मलखट सरस्वती देवी हरबंस लाल मलखट बनवारी लाल मलखट गोपी राम मलखट ललित कुमार मलखट नरेंद्र कुमार मलखट मीनाक्षी मलखट मोनिका गीतांजलि ए सगड़ा रल मिल गए संदेश मांडियो है। रेका पिछलो जो को कार्यक्रम है वो बड़ो पसंद आयो और कार्यक्रम में क्या मैंने एक सवाल पूछो और बिंगो जो को जवाब है वो संतोषजनक कौन दीजो सा। बिल्कुल आ बात थारी हुई वो भी दिन थारो संदेश बंचो सा मैं माफ़ी का हकदार हाँ अगर थारो थाने वो जो को उथलो है वो थोड़ा सा समझ में आयो या फिर वो संतोषजनक ना रही है आ सवाल के पूछो वो आप दोबारा पूछो है कि मैं कह देसी सप्रे तैयार कर रखी है एक साल से उनका पड़ी है और तुम्बा नीम की पत्तियां गुड़ हल्दी दतूरो गोमूत्र लस्सी सरसों की खड़ ए रड़ागे हरबा जो अरक जो है वो तैयार कर रखे है और एक एक मैं थारे से बात पूछा कि इन्हें प्रयोग करा या ना करा और एक साल से पड़ी है कि ये लगभग के 100 लीटर का सपसा कीटनाशक दवा है तो बिल्कुल सा आपने थन बता देवा मलखट साहब कह बियाँ तो आपने जो कि वो तरीको है ना वो बढ़िया है जैविक तरीको है इनमें कोई भी तरीकों को प्रदूषण है वो कोनी हुए नहीं लेकिन थाने एक प्रयोग जो है वो करना चाहिए कोई आधी क्यारी कोई कनाल खंड गमा कोई आधा मरला गमा थोड़ी बहुत छिड़के के देख लेना चाहिए बिंगो जो को परिणाम है वो अपन देखना है कि अगर आ काम कर ला रही है तो अपन पूरे रकबा गमा पूरे क्षेत्र गमा जड़जट अपनी फसल की जांच करी बट्टापा कर सका लेकिन बीस पहला अपन किया कि थोड़ा सा बिंगो अपन ने जांच पर करनी है थोड़ा सा कोई क्यारी गमा कट्ठी अपना छिड़के देख लेवा या फिर कोई आधी कनाल जी है बिंगमा भी छिड़के देख सका है ना क्योंकि कई बार ये हो जाए कि साल भर पड़ी है तो बिंगो जिकी रासायनिक क्रिया जिकी है बा बदल जाए कई बार क्योंकि आपने जगह विशेषज्ञ भी बताओ है कि बिंगो जिकी टाइम टाइम जो को है समा जो को है वो निश्चित हुआ है कि इतना दिन बाद गवा बिन छिड़काव करना जरूरी है तो हमारी तो आई राय है कि एक बार बिंगो जो को परीक्षण है वो जरूर करो लेकिन थोड़ा सा क्षेत्र गवा करो सा। संदेश अपने ती लिखर भेजिए है तहसील भादरा उपचार सिंह गजानंद सारस्वत ताराचंद सारस्वत सोनू पवन कुमार शाहिल राघव मुरारीलाल शर्मा मदनलाल शर्मा महावीर लोहरा ममता मीतू किनू और पंकज सारस्वत। एक एक कार्यक्रम पेश करने वाला भाई रामेश ने गणीन गणी रामा श्यामा और 15 अगस्त गया रामा श्यामा लिखी है बधाई लिखी है और कह मैं चौपाल जो है बड़ो ध्यान से सुना पिछलो कार्यक्रम में कह मारो पत्र शामिल हो तो हाँ धन्यवाद करियो है खेती पशुओं के बारे में जिसकी जानकारी है मौसम की जिसकी जानकारी है पसंद आ रही है तो बिल्कुल सा अपना कार्यक्रम सुनता रहो सुन के अपने फायदों भी उठाए करो और थाने भी 15 अगस्त की मोकली मोकली रामा श्यामा और बिया भी आज अपने हरियाली अमावस्या है तो बिंगी भी थाने पूरा श्रोताओं ने मारा कहने से मोकली मोकली रामा श्यामा। वो संदेश लिखर भेजो है अमरपुरा जालूखाड़ से संगरिया से वो संदेश पुग्यो है और लिखने वाला है जगदीश चंद्र प्रजापति बिमला प्रजापति मोनू प्रजापति राजेंद्र प्रजापति और एक है लारलो जो को पत्र उत्र हो वो बढ़िया पसंद आयो 7 तारीख ने कहा आपने गीतारो गजरो जो को पेश करो वो भी मैंने पसंद आयो तो थारो भी मोगलो सारो धन्यवाद कार्यक्रम सुनता रहो सा। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से संदेश मांडिया मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। एक है कार्यक्रम जो है वो मैं रोजाना सुना और मैंने पसंद आवे सा। वो संदेश आपने ती पुग तो कर दियो सा हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान और इरफान खान। एक है कार्यक्रम चौपाल पेश करने वाला महारा कहने राम राम और चौपाल का मैं हर बार सुना बड़ो फुटरो लगे गीतार गजरो जो को है वो बड़ो पसंद आवा माँ का भजन है बेबी माना पसंद आवा सा तो थारो भी मोगलो सारो धनवाद सा। गांव बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकंड वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा प्रहलाद राजेंद्र वर्मा निधि निखिल वर्मा। ए बी का कार्यक्रम जो है वो बड़ो पसंद आ रहे है अनुरोध गीत है अपना आकाशवाणी श्रोतगढ़ से जो प्रसारित है वो भी आना पसंद आवे रिंग अलावा जगह दूसरा कार्यक्रम है बेबी आना अच्छा लगे तो अंगो भी आप धन्यवाद देवा सा। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गोड़ भी ये आपने ती संदेश लिखकर भेजो है कि मैं आकाशवाणी श्रोतगढ़ गानी है मैं श्रोता हाँ और कई केंद्र से प्रसारित जितना भी कार्यक्रम है बड़ा अच्छा लगे रोचक हुए और मारो एक सुझाव है कि जो को भी कार्यक्रम श्रोताओं के संदेश पर आधारित है बी का बेस जगह सगड़ा कार्यक्रम है बने व्हाट्सएप ग्रुप संदेश के अलावा का ईमेल संदेश के साथ भी जोड़नो जोड़नो ऐसा

और कुछ एक चुनिंदा जगह कार्यक्रम है भाई, ईमेल और मैसेज पर आन ला रहे हैं। तो बिल्कुल थारो जो सुझाव है वो नोट कर लियो सा, अपने आने वाला कार्यक्रम में होश के थाने दूसरा कार्यक्रम जगह है बे मेल पर सुनने मिले सा संदेश मांडियो, इन वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद। वो संदेश लिखर भेजो सा अपना थी गांव सादेवाला सिरसा हरियाणा से, रामेश्वर माहर, परमेश्वरी माहर, जिगर और जानवी, एक है थारो जो को कार्यक्रम है सुना घणो दया वे, मारा कहानी सुन के घनी घनी रामा श्यामा। बिल्कुल सा थाने भी मोकली सारी रामा श्यामा, कार्यक्रम सुनो अच्छो लगे। और वो संदेश लिखर भेजो छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से, राजेश सेन, एक है चौपाल कार्यक्रम जो है वो बढ़िया लगा सा, एक मान जगह गायक कलाकार गीत भजन सुना बे भी मन बढ़िया लगा, और खेती बाड़ी की जानकारी है वह भी बढ़िया लगा सा। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी लिखियो है कि सूरतगढ़ का सगला प्रोग्राम बड़ा पसंद आ रहे हैं, खास करके चौपाल जो को है वो राजस्थानी लोकगीतों पर आधारित जो है फरमाइशी कार्यक्रम है वो भी मन बड़ा पसंद आवे सा। तो आंगो भी आप धन्यवाद देवा सा। रामलाल चंद्रवंशी और श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी आकली दीवान मध्य प्रदेश में अपना ती संदेश लिखकर भेजो है, ये लिखा कि चौपाल किसाना से जुड़ेड़ा मुद्दा खेतीबाड़ी खेती किसानी की जानकारी है, ग्रामीण जीवन की सच्ची तस्वीरें ने सामने लियाना को जो शानदार कार्यक्रम है। कई कार्यक्रम की खासियत है कि इमें किसानों की बातों के अलावा इनमा बांगी मेहनत और बांग अनुभव ने सम्मान देने के सागे सागे का जगह जकी है बाबा ने मिले, और आगा लिखे किसान भाइयों तक सही जकी जानकारी पहुँचाणांगो और बांगी जकी आवाज़ बुलंद करना जो को काम है वो चौपाल कार्यक्रम कर ला रही है, जगह की जीती तारीफ करा बीती कम में सा, और क्या इसी उपयोगी और जनहित की जकी जानकारियां हैं वे पेश करता और पूरी टीम ने बधाई लिखी है सा। बिल्कुल सा आपनों की है के काम जो को है वो खेतीबाड़ी को है, और खेतीबाड़ी से जुड़ी जकी बातें हैं, पशुधन की जकी बातें हैं, गांव गुआड़ की जकी बातें हैं, बे सारी आपने चौपाल का माँ है। चौपाल को मतलब वही है कि आपने रल मिल के बेड़ा बैठ के और शाम ने हताई करा, सारा दिन का काम धंधा में आप पचेड़ा हुआ और बाद में थोड़ा सो किया है कि थकेलो उतारन खातर हताई करने खातर आप चौपाल लगा ले वहाँ, तो वो बिग मां जी की बातें भी हर बात की बातें हुए हैं, हर एक तरह की बातें हुए और फायदे वाली बातें हैं। और राजस्थानी गमा अगर वो कार्यक्रम थाना पसंद आने ला रहे हैं तो इन वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद, क्योंकि गाँव गुवाड़ की जी बातें हैं और आपने प्रदेश की तो बात ही कहनी किसा है ना, एक एक अपने दोहो है कि मीठी बातें रस भर है, कि मीठी बातें रस भर है, अरे हिवड़े रमे हरमेश अरे पृथक प्रीत जगाओं तो धुराड़ो देश, अपने देश की अपने प्रदेश की एक अलग पहचान है सा है ना, और इंगमा चाहे भाषा किसी भी है हर बांध बांध का भाषा का जगह लोग है बिरेणला रहे है, और भी भाषा का माँ चाहे कोई भी जानकारी दीजिए बातन पसंद आवे इन वास्ते थारो मोकलो सारो धनवाद सा। अहमदगढ़ मंडी पंजाब से आपने दी संदेश लिखकर भेजो है मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, जावेद अंसारी, सूरज अख्तर और जस्मीन, शकीला, शना, शमा, हिना, राज्य सुल्तान अंसारी और अंगो सगड़ो परिवार, ए रामा श्यामा लिखी है और कार्यक्रम जो है को बढ़िया लगे सा। तो थारो भी मोगलो सारो धन्यवाद। गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जी नागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया आम भी संदेश लिखकर भेजो है कि आकाशवाणी सूरतगढ़ को लोकप्रिय कार्यक्रम चौपाल केवल एक रेडियो प्रसारण नहीं है सा, कह इंग माँ का हर अंचल की जकी बातें हैं, भावना जकी है, लोक संस्कृति जकी है, जीवन शैली जकी है, बिंग जीवन तो जाग तो एक दस्तावेज है, और गंगानगर हनुमानगढ़ और आसपास का पूरा इलाका ने जद जद का रेडियो पर चौपाल गूंजे तो आना अच्छो लगे सा, और क्या बी टेम का ग्रामीण अंचल की जकी व्यस्तता वहाँ है बेथम जे, और लोग माटी की जकी सोंधी खुशबू से जुड़ा है और ये अनूठा कार्यक्रम ने सुनने के लिए इकट्ठा हो जाए, के फूटरी सुनी बात लिखी है सा है ना, कार्यक्रम अच्छो लगे और बिया तो अपना आसला पास के का काम जो को है वो अपना आसला पासला जब कोई भी है प्रदेश गए चाहे हरियाणा गए है पंजाब गए है यूपी गए है कट्ठा गए भी है सब के लिए ही है ना, और ये मौका किया है कि आपने श्याम का टेम का माँ गीत भजन जगह है बेबी चलावा, और अब तो सावण को महीनों चलान ला रहे है तो सावण का गीत जगह है बेबी सुनाई करा, और एक दोहो थाने आज हूँ पटर सुनाओ का सावण आयो सोणो और मरवण मन मुस्काए कह ओढ़ सुरंगी ले रियो बागा झूलन जाए, क्योंकि सावण के टेम का माँ अपने गीत जका है राग जकी है भी आप सुनाई करा, अपने आप एक गीत सुन लिया सा पछे जका संदेश जका है भी और बन चाहूँगा।

0: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयान फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: बिल्कुल सा संदेश उपला थाने गी सुने सीमा मिश्रे की आवाज गवा अपने निर्मल मिश्रा और अंग साथियों की आवाज गवा अपने ती कई जगह मेल संदेश है बेबी पुगड़े है। तो आप पहली जगह ईमेल है अब अपने ती लिखर भेजी है और लिखने वाला है नोहर जिला हनुमानगढ़ सिंह नरेंद्र सुथार मनोज सुथार हिमांशु सुथार गांव बिरकाली सिंह राम कुमार सुथार दिलीप कामड़ बेगराज स्याग कालू खान जाकत अली गुट्टे खान छगन सिंह तवर कालू मिस्त्री और जय सिंह धामू धर्मेंद्र सुथार फेपाणा सिंह आ लिखे के थारा के मैं नियमित श्रोता हाँ और श्रोतगढ़ सिंह के मारो विशेष

गाव है। प्रोग्राम चौपाल जो है वो रोजाना सुना, एक मैं जानकारी जो की है बात हृदय भी भरपूर फायदा उठावा। एक मैं जगह नाटक है, गीत है, बाजार भाव, मौसम संबंधी जो की जानकारी है वे बड़ी पसंद आने आ रही है। और आगे लिखे है कि एक सुझाव है कि कोई भी श्रोता गीज की पसंद को जो को कार्यक्रम है राजस्थानी गीतों को या फिर हिंदी गीतों को भी वहाँ श्रोताओं की पसंद है बात सर्वप्रिय होनी चाहिए। बिल्कुल सर, थारी बात जकी है बा हूँ मांड ली और मैं भी ध्यान रख सें और आगे भी आपने जगह दूसरा कार्यक्रम पेश करने वाला बनाए बता सियाँ। और आगे लिखे कि ज़्यादातर कह आकाशवाणी सुरतगढ़ कह अच्छा तो आपके हिसाब से गीत कई बार हो जाए सर है ना, कई बार मारी पसंद चाल जाए, कई बार थारी पसंद चाल जाए, लेकिन कार्यक्रम में की है कि 5-10 एक जिकी फरमाइश है भी अगर एक जिसी हुए तो क्या है कि वो गीत जो कहे वो चलावा भी हाँ और कार्यक्रम सुनता रहो, थारी आज किसी कहे तब जरूर दूर हो एक सा है ना। संदेश अपना मेल जिकी है बा भेजी है और आ ईमेल रायसनगर से सोनलाल जांगिड़, मंजू जांगिड़, सोप्रकाश, जसवंत राम, सुनील जांगिड़, साहब राम स्वामी, ये लिखा है कि चौपाल पेश करने वाला भाई रामेश्वर ने मारा कहानी सु घनी घनी रामा श्यामा। तो थाना भी मोकली मोकली रामा श्यामा मेरा कहानी सु पूरा आकाशवाणी प्रकार परिवार कहानी सु कह पिछलो पत्र उत्तर कार्यक्रम जो का वो भाई रामेश्वर दियो बड़ो लाजवाब पेश करियो और कह एक अर्ज थारा श्यू करा अगर चौपाल कार्यक्रम है पत्र उत्तर वाला दिन कह थे अजय करो कह सगा। बिल्कुल आपने कार्यक्रम में की है कि जांगिड साहब कभी हूँ आ जाऊँ कभी दूसरा भाईला आ जाए और आपने जो का बढ़ेरा है नवीन जी वे भी आ जाए कई बार तो कार्यक्रम थे सुनता रहो और सुन के आनंद उठाई करो चाहे कोई भी कार्यक्रम ले रहा है। और कार्यक्रम में कि बातें जी की है बे चाहे मैं करूँ चाहे और करें बे सिर्फ थारे लिए थारे सवालों पर थारे सुझावों पर ही आधारित हो है। आगे मैं लिखा कि शुक्रवार ने गीतार गजरों कार्यक्रम पेश करो बड़ो दाया हो और पिछले पिछला का जितना भी चौपाल कार्यक्रम आया एक से बढ़कर एक कहा कोई कमी कोनी सा और बहुत ही अच्छी अच्छी का जानकारियाँ उपलब्ध करवाई और घणो घणो धन्यवाद देवा कसा। तो बिल्कुल आपने पिछला कार्यक्रम थे सुनिया हो सी बिल्कुल अच्छी बात है और अच्छा लगे इन वास्ते थारो मोकड़ो सारो धन्यवाद। चौपाल कार्यक्रम के भेंट वार्ता लोक भजन लोक गीत जगह सुनो भी बड़ा फूटा लगे और चौपाल में कृषि संबंधी जी की जानकारी है, मौसम बाजार भाव, पशुपालन संबंधी जी की जानकारी है बा फायदेमंद हो ऐसा। तो बिल्कुल आपने जंगिट साहब कार्यक्रम में की है कि पशुपालन संबंधित है चाहे कोई भी है हर तबके के लिए हर क्षेत्र के लिए हर एक बंदे के लिए हर मिनट के लिए जानकारी जी की है बा दीजिए और भी जो फायदो है वो सगना उठाना चाहिए ऐसा। ईमेल मांडियो इन वास्ते थारो मोकड़ो सारो धन्यवाद। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से नियमित श्रोता टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप कालका, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज आपने ती कागज ओ मेल जो को है वो लिखे मांडियो ऐसा और आ लिखे कार्यक्रम जो है वो अच्छो लगे तो आंगो भी आप मोकड़ो सरो धन्यवाद दिवा सा। ओ मेल पुग्या भलोल नगर से तेजपाल पंवार, रजनी पुष्पा, अमनीश पंवार, पार्वती गुणपाल और 44 NDR से मंगतू राम गुणपाल, राजू ताराचंद और लीलू राम ए भी का कार्यक्रम जो है वो मैंने पसंद आने आ रही है तो आंगो भी आप मोकड़ो सारो धन्यवाद देवा सा कार्यक्रम सुनता रहे। लियो सा वो ईमेल आपने ती लिखर भेजो है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से और लिखने वाला है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। एक है चौपाल पेश करने वाला ने कह मारा कहानी सुन घनी घनी रामा श्यामा भाई रामेश्वर ने और कह नवीन जी ने। तो बिल्कुल सर थारी रामा स्वामी जी की है बा मेरकन तो पुग गई और नवीन जी ती हूँ पुगा दी कार्यक्रम सुनता हो सी वे भी। और आगे लिखा कि चौपाल जो है बड़ो पसंद आने ला रहे है, चौपाल में जितनी भी थे जानकारियाँ दियो भी बड़ी पसंद आया, किसान भाइयों ने बड़ी लाभकारी सिद्ध हुए और पिछले बुधवार ने का पत्र उत्र सुनियो बड़ो पसंद आयो और रविवार ने का चौपाल सुनियो भाई राजन की प्रस्तुति का मां बड़ो जोरदार हो और शुक्रवार ने गीतार गजरो पसंद आयो और इन अलावा जका कार्यक्रम है बे सुन कौन पाया जी कह माफी चाहवा। कोई बात नहीं साहब, माफी वाली की बात है ना गोस्वामी जी, माफी वाली तो कोई बात को नहीं, कई बार काम काम धंधो चुको है वो थाने के माने भी हो जाए और बिया होश का तो आपने लगा टगा थे सुने करो और जुड़े रहे करो। पिछला कार्यक्रम थाना अच्छा लग गया तो इन वास्ते थारो मोकड़ो सारो धन्यवाद और थारी जी की बात है बा राजन भाई तक नवीन जी तक भी पूगती होगी सा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार भी आपने ती ई मेल मांडियो है, ये लिखा है कि मारा कहानी सुन घनी घनी रामा श्यामा और आकाशवाणी सुरतगढ़ का सगला कार्यक्रम का मैं रोजाना सुना और टेम टेम पर कई कार्यक्रम में भागीदारी भी रखा सा, विशेष करके फरमाइशी जगह कार्यक्रम है और किसानों संबंधित जगह कृषि कार्यक्रम है, बंग मांझ की जानकारी है, मौसम और फसलों के बारे में जी की जानकारी है बात टेम टेम पर दो और इन अलावा निराई गुड़ाई है, दवाइयों का जो छिड़काव है बिंगी जी की जानकारी दो बड़ी पसंद आवे और श्रोता मित्रों का जो विचार है वे भी
મારે મને કે અવગત કરવાતા રહે કરો ઓર રોચક જકી જાણકારી હૈ બહેતરીન જકી જાણકારી હૈ બે દેવતા રહો ઓર બી મેં ફાયદો ઉઠા સ તો બિલકુલ અચ્છી બાત લિખી હૈ સા કાર્યક્રમ સુનતા રહો સુન કે ફાયદો

कार्यक्रम में कई बार हिस्सों बटा ले और ब्याज जेग रहे हैं, पर आज की है कि कई दिन हो गया काम धंधा का फंस रहे है और जी थोड़ा सा बेला होसी और भी जरूर आवेगा सा, है ना। आगे भी उड़ीक रहेगी थारे ईमेल की, जरूर मंडियो सा। वो अपने ती ईमेल लिखकर भेजो है धर्म सिंह वाला श्री गंगानगर से, ओम प्रकाश सरवा बिमला देवी यशु विशाल राजेंद्र कुमार सुमन देवी। ये लिखे है कि चौपाल पेश करने वाला महाराकान से घनी घनी रामा श्यामा और कार्यक्रम जकाय भी सकला सुना बड़ा पसंद आवे। लखवाली हेड से मास्टर भंवर लाल कृष्णा सौरभ विशाल लक्षिता नव्या राजबाला मोहम्मद रफीक ममता संग्रिया से मुकुणा राम महावीर लोहरा। ये भी का कार्यक्रम जो है वो मारा हिवड़े की कोर ऐसा गीत भजन नाटक मौसम की जी की जानकारी है वह बड़ी पसंद आ रही है, खेती बाड़ी की जी की जानकारी है बाजार भाव है वे भी बड़ा पसंद आवे। और एक जानकारी बतानी है कि हमारे स्कूल का माँ अनार को पौधो है फड़कों लागे सा फूल लागे अपने झड़जे, तो कुछ जानकारी दियो सब। यहाँ तो देखो सा अपने मास्टर मोहनलाल जी कार्यक्रम में जानकारी देता रहा लेकिन फूल नया लागण आ रहा यार, एक ही अनार को पौधो है तो थाने एक बात के शंक है, एक अनार को पौधो अंत में पानी जो है वो साफ सुथरो गालनो है अभी, और बिंगी जी की आसा पास की जी की माटी है अपने जो को जठा जड़ा है बिंग माटी ने खोद के और माटी थोड़ी सी अपने पास करके बिंग जहाँ खाद जी की है कंपोस्ट खाद है या फिर जैविक खाद है केंचुआ जी की खाद है वह नाक देवा, और बिंग माँ जाड़ो जो को जड़ा बीच में लागेड़ो है ना भी जाड़ा ने काट के जड़ा जी की ठावी ठावी जी की जड़ा है बेराखनी है, और पानी जो को है वो जब फूल आने लग गया या फिर जब थोड़ा बहुत यहाँ लगे फूल आना है तो बीटे पानी एक बार बंद कर दियो, और जी फल जगह है भी आपने छोटी निम्बोली जीता जीता खोजे है तो बी टाइम आपने पानी जो को है वो शुरुआत कर सका, तो जरूर आपने जो को एक अनार को बूंटो है वो फल देना शुरू कर देगो, और भी फल जब पाक जाए तो मानना जरूर बताइए सा, है ना। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा कपिल छिंपा ईशान छिंपा और पूजा परिहार ईमेल मांडे हर एक है कार्यक्रम जो को है वो सुन ला रहा हाँ और बड़ो पसंद आवे, और इंग मां जी की जानकारियां दियो ज्ञानवर्धक और मनोरंजक को है, खूबसूरत जी की जानकारियां भी बड़ी बढ़िया और प्रस्तुति करना उसको अंदाजा वो भी बढ़िया लगे सा। इंगला गीता रो गजरो है फरमाइशी जी का कार्यक्रम है वे भी पसंद आ रहे है, और चौपाल में जितनी भी थे जानकारियां दियो वे सुनगी और मैं फायदा उठावा तो अंगो भी अपा मोकलो सरो धन्यवाद देवा सा, कार्यक्रम सुनता रहो और कार्यक्रम सुनगी बिंगी प्रतिक्रिया जी की है वह पूरी मांडे करो, क्योंकि कई बार आपने कार्यक्रम में की है कि जानकारी दे दे वहाँ और भाई लोग जगह है वे भूल जाए कि आप प्रतिक्रिया किसी माननी और किसी कार्यक्रम छोड़ो, कई बार आपने जगह दूसरा हिंदी कार्यक्रम है ना बंगी भी प्रतिक्रिया जी की है वे थे मान दे सा, पर आपने किया क्या हरेक कार्यक्रम के एक अलग अपने पत्र उत्र को कार्यक्रम है तो बिंग लिया आप थे मान सको, अब थोड़ा सा दिन बाद में आपका पत्र मिला कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो बिंग वहाँ जगह दूसरा कार्यक्रम है जहाँ जगह पत्रा पर आधारित कोई अपना पत्र उत्र ना है तो बंग अभी आपका पत्र मिला थे मांडी करो सा, है ना। अपने चौपाल का मान तो चौपाल वाली बात करा सा, है ना, क्योंकि जको काम आपा कर ला रहा वो काम ही अपन फूटो लागे दूसरों के बार क्या कि बिंगो जो उथलो है वो देनो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बे कार्यक्रम आगे सागे थोड़ी सी चीर जो है वो कम हुआ है क्योंकि आपने चौपाल ही ले रहा हूँ, और सियाणा मैंने के करे नहीं कह आपको काम आप ही सज है अरे और करे तो सियाणा हो थे, पर आपा एक गीत और सुन लिया पछे आपा जका मेल संदेश जका है भी बन चंगा सा लो सुनो।

बिल्कुल सर, सीमा मिश्रा की आपने आवाज़ गवा थाने गीत सुनाई और आपने ती संदेश जका है बे पुगिड़ा है और इंग सागा एक कागज भी आपने ती पुगिड़ा है गांव भलो नगर चुं घनश्याम शर्मा पारस शर्मा जयश्री सारस्वत एक कार्यक्रम जो है वो मैं के सगड़ा रल मिल के सुना और मारा क्या बड़ा बुजुर्ग जो है बे रेडियो कई साल से सुन ला रहे और चौपाल कार्यक्रम का उसका बड़ा लगाड़ू है कभी और कार्यक्रम जो है वो अनपसंद आवे तो अंगो भी आप मोकलो सर धन्यवाद देवासा वो अपने ती दूसर मेल भेज दियो भलो नगर चुं तेजपाल पंवार है ना और रजनी पवार पुष्पा अमनीश पंवार पार्वती गुणपाल आरल मिलगी लिखी सा है ना मेल जो है वो एक ही मांडो सा और वो संदेश आपने ती पुग्या है सुरेश राठौड़ मंजुला राठौड़ गांधी नगर गुजरात चूँ एक कार्यक्रम जो है वो पेश करना वाला मारकान चूँ गणिन गणी रामा श्यामा और चौपाल कार्यक्रम अनपसंद आ रहा है सुरतगढ़ का जितने भी कार्यक्रम है अनपसंद आवे और कै प्रस्तुति जी की हवा बड़ी सुंदर और लाजवाब हुए खास करके चौपाल गीतारो गजरो और इन अलावा आप वाणी का दूसरा कार्यक्रम जो है भी अनपसंद आया सा तो अंगो भी आप मोकलो सर धन्यवाद देवा सा अनारकली वजरा जगनाव से अपना ती संदेश मंडे है और लिखने वाला है सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गव्या मल्होत्रा सुच्चा सिंह पाठक ए बी रामा श्यामे लिखे और कार्यक्रम मैंने पसंद आ रहे सा वो संदेश अपना ती लिखर भेजो है आ लिखे राम राम जी चौपाल प्रोग्राम बड़ो अच्छो चालन ला रही है और खेती से जुड़ी जी की जानकारी मिले वह बड़ी पसंद आ रही है किसाना किसानगी के बेटी हूँ और मेरो जुड़ा भूमि शू बहुत है बिल्कुल ओ कार्यक्रम थारे लिए ही है और रही बात आपने संदेश की तो संदेश गामा के एक थारो जो को पतो है ना वो थे मांडियो को नहीं अब की बार उड़ीक रहेगी कथे थारो अतो पतो जो को गाम है वो जरूर मांडियो नाम जो कह बेबी मांडियो सा है ना वो संदेश आपने ते लिखर भेजो है बसंत कुमार सिन्हा दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से और लिखे चौपाल कार्यक्रम बढ़िया चलन आ रही है खेतीबाड़ी की बाग बगीचा की जिकी जानकारी है बान पसंद आवे और फूल रोपने की जिकी जानकारी दियो बिल्कुल कार्यक्रम सुनता रहो सा थाना जानकारी सुनने मिलेगी और वो संदेश लिखर भेजो है अपने ते कार्यक्रम चौपाल पेश करने वाला का मारकान से गणिन गणी रामा श्यामा और अठो से प्रसारित कार्यक्रम का एक उमड़ कर एक हुए और इनमें भेंट वार्ता फिल्म संगीत संगीत युवाणी कार्यक्रम जो कह बयान पसंद आना रहे सा लेकिन एक बात कैसा पतो तो हाँ लिखो है आपको ग्राम गोपी खारिया खीरिया भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश हूँ राहुल पाल ज्योति अंजना पाल हरिमोहन पाल और बेबी लक्ष्य तो अंगो भी आप मुगलो सारो धन्यवाद देवा सा भेरूलाल वागतरिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश में अपना संदेश लिखे चौपाल कार्यक्रम का अनपसंद है और खेतीबाड़ी संबंधी जी की जानकारी व ज्ञानवर्धक हुए लोकगीत जी है बातचीत जी है बान पसंद है तो अंगो भी आप मोकलो सर धन्यवाद देवा सा वो संदेश अपने ती लिखर भेजो है आर्यनगर कोहका बिलाई से उत्तम सिंह जंघेल मोरस जंघेल अनिल कुमार अजीत कुमार आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल और अंग सागे है धमदा ग्राम सुखरी कलाशियों अमित जंघेल शकुन जंघेल अरुषि ओशिका आदित्य जंघेल अंजलि जंघेल आ लिखियो है कह कार्यक्रम जो है वो मैं रोजाना सुना बड़ो पसंद आ रहा है चौपाल।

कार्यक्रम को टेम बढ़ाने के लिए नवीन जी को धन्यवाद। और तीसरा शुक्रवार ने का आपका पत्र मिला, कार्यक्रम की शुरुआत होने आ रही है, तो बड़ी खुशी की बात है। तो बिल्कुल सर आपने कार्यक्रम में बदलाव जो कहे भी हुए है और थाना पसंद आए, तो ये वास्ते थारू मोकलो सारा धन्यवाद। कार्यक्रम सुनता रहे करो और आगे भी आ लिखे कि पिछलो पत्र उत्तर कार्यक्रम जो है वो भी मैं एक सवाल पूछो, तो बिल्कुल आपने थे वो थारू जो कुछ संदेश है ना मन या लगे कह पहला शामिल हो गयो और शामिल ना हो तो हो कैसा थे कि नकल मार के लिख के, क्योंकि हो सके मन या लगे कि वो नाम अतो पतो कुछ और है और बात जकी है बा सेंदे लिखती से नलेश्वर नगर

भोगियो, और शामिल ना आयो तो ओस कैसा देखेंगे, नकल मार के लिख के, क्योंकि ओस क्या मनिया लगा कि वो नाम अतो पतो कुछ और है और बात जकी है बा सेंदी लिखती से। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर अपना नितिबंध श्रोता है लिखियो है। आकाशवाणी सूरतगढ़ का चौपाल कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगा रहा है, और इंगमा जी का फरमाइशी जी का गीत है बे सुनाओ बेबी बन पसंद आ रहा है, और इंगमा जी की जानकारियां दियो बेबी आना पसंद आवे सा, तो अंगो भी आप मोकलो सर धन्यवाद देवा सा। ओ संदेश लिखर भेजो है अपना तई गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशरी धान और खुराना आम भी लिखियो सा। कचौपाल पेश करने वाला महारा कानी श्री रामा श्याम, और खेती बाड़ी की जी की जानकारी है पेश कर चुकी है बाना अच्छी लगे सा, तो अंगो भी आप मोकलो सर धन्यवाद दिवा सा, कार्यक्रम सुनता रहो। लेकिन बार बार हमेशा एक ही बात के करा कह कार्यक्रम जो को है वो थे सुन गए और बिंग प्रतिक्रिया जिकी है बा फिर मांडे करो सा। कई बार हूँ देखे करूँ कि कार्यक्रम सुने को नहीं और सुने बिना ही कई जिकी प्रतिक्रिया है बे मांड देवे, लेकिन कई बार लिख भी दिया ना तो थे समझ जासे ओसो कि बे प्रतिक्रिया जिकी है हूँ बांचू को नहीं, क्योंकि भाई अपना कार्यक्रम से संबंधित हुए को नहीं और बात बे बाई कर सका कि जिकी बात की अपने टू जानकारी है वह प्रसारित हुए। ये वास्ते थाना ये बात कैसे कि अपने जिसकी जानकारी सुन गए और फिर ही थे अपने मांडे करो, ताकि कार्यक्रम को मने भी पता ला जाएगा किसो चलना आ रही है। अपना अपना बाजार भाव तो पुग्या को नहीं, मौसम की जिसकी जानकारी है वह पुगेड़ी है, तो अपने मौसम की जानकारी आई है कि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी राजस्थान का माँ आने वाला जगह 48 घंटा है बाग माँ भारी बारिश की जिसकी संभावना है वह बताई है मौसम विभाग। और आज भी बताया है कि कम दबाव को जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों ऊपर बनेड़ो है, और मानसून ट्रप लाइन जो है आज बीकानेर और कम दबाव के क्षेत्र से होकर गुजरन आ रही है। तो पिछला जगह 24 घंटा आज यहाँ चित्तौड़गढ़ का माँ ज़्यादा बारिश हुई, और 12 उदयपुर जिला में भी जबकि ज़्यादा बारिश हुई। तो आपने तो अठा ही है कि आपने जो को बीकानेर संभाग है बिंग 12-13 तारीख ने भी कठिन कठी बरसात जकी है बा अलग अलग बताईड़ी है, तो बिंग हिसाब से आपने जो काम धंधे बापा ने संभालना ऐसा, और बरसात ने देखता तक आपनों अपने टाबरियाँ और जगह जल भराव क्षेत्र है बंगो भी आपने पूरा ख्याल रखना है कि आसा पास का जगह टोआ है दर्ड है बे पानी चूँ ब्रिजड है तो बस यूँ बचाव रखना। पर आज को कार्यक्रम इतो ही है, भाई रामेश्वर ने दियो आ गया, राम राम शाह राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं।
1: आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। इसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा पर सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया गया। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने पर विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इस विधेयक पर चर्चा के समय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित नहीं हैं। हालांकि उपसभापति ने उनकी ये आपत्ति खारिज कर दी। बाद में कांग्रेस सहित कई विपक्षी सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मोहल ने कहा कि एनसीडीसी को सहकारिता क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अन्य बदलावों के अनुरूप बनाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सहकारिता क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सदैव राज्यों की सरकारों से सुझाव लिए हैं और किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के अंतर्गत की गई थी।

चर्चा में बीजू जनता दल की सोलता देव, डीएमके सदस्य के आर एन राजेश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, भारतीय जनता पार्टी के रामराव सखाराम वडकुते, अमरपाल मौर्य, सदानंद महालू शेठ तानवड़े, बंशीलाल गुर्जर, डॉक्टर अलका गुर्जर, एआईए डीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, डॉक्टर एन धनपाल, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, शिवसेना की ज्योति नागनाथ बागमारे, टीडीपी के विजय चिंता कायला, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा करने और पारित करने के लिए लिया गया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में केरल के सदस्यों ने अपनी बात मलयालम में रखी तथा केरल की संस्कृति की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया। कई सदस्यों ने ध्यान दिलाया कि ये कदम राज्य के लोगों की इच्छा के अनुरूप उठाया जा रहा है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, सुधांशु त्रिवेदी, लहर सिंह सरोया, कांग्रेस की जेबी माथेर हिशम, मनोनीत सदस्य सी सदानंद मास्टर, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, डीएमके के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राय, एआईए डीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, शिवसेना की ज्योति नागराज बागमारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, टीडीपी के विजय चिंता कायला, केसीएम सदस्य जोस के मणि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य संतोष कुमार पी, आईयूएमएल के हारिस बीरन, यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी और डीएमके सदस्य एल के सुधीश ने भी भाग लिया। संविधान के अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन की बैठक कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में दोनों विधेयकों को पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की है और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। ये स्पष्टीकरण उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के उस आरोप के सिलसिले में दी जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी सदस्य ने उन्हें बार बार लुंगी वाला कहा था। सवेरे 11 बजे राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ था। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने दोनों सांसदों के बीच पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने की पेशकश की। इससे पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद ब्रिटास ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि भाजपा के एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब ये कथित घटना हुई थी तब वो सदन में मौजूद थे। उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि वो संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति अनूठी है और विविधता में एकता हमारी विशेषता है जो बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की संस्कृति को लेकर कोई भी आहत करने वाली बात कहना ठीक नहीं है। सभापति ने कहा कि वो संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में सुष्मिता देव मौजूद थीं। इस बीच कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का अवसर देने की मांग की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे की कथित चोरी को लेकर

नारेबाजी की। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने 12:20 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब आप सुनिए लोकसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा में आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन में हंगामे के बीच ही खान और खनिजों से संबंधित एक विधेयक पारित कर दिया गया और एफसीआरए विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने को मंजूरी दी गई। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश सदन चलते हुए दिखना चाहता है। श्री ओम बिरला ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होने का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हो। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है। गृह मंत्री भी अपना वक्तव्य देने को तैयार हैं। उन्होंने आसन के समीप हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि देश की भावनाओं को समझना चाहिए, देश चाहता है कि संसद चले। उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील की कि प्रश्नकाल चलने दें, इसके बाद सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि विधेयक गैर सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एफसीआरए विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए तंज कसा कि यह सरकार आज तक ऐसा कौन सा विधेयक लाई है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। डीएमके नेता टीआर बालू ने भी विधेयक को वापस लेने की मांग की। अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है जो अल्पसंख्यकों या किसी भी समुदाय के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाने का सवाल नहीं उठता। श्री रिजिजू का कहना था कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को विधेयक के किसी बिंदु का विरोध करना है तो वो संयुक्त समिति के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कुछ समुदायों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे। इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति इस वर्ष शीतकालीन सत्र से पहले सप्ताह में लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके के सदस्य विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026 वापस लेने की मांग करते हुए भी हंगामा करते रहे। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 का विरोध करते हुए कहा कि संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है। हालांकि सदन के हंगामे के बीच ही बिना चर्चा के विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ विपक्षी सदस्यों के

प्रदर्शन के तरीके के इशारा करते हुए आसन से मांग की कि विपक्ष के वरिष्ठ साथियों को अनुशासन के साथ प्रदर्शन करने के लिए समझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता सही नहीं है, विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर चले जाएं तो हम विद्यार्थियों के मुद्दे पर अभी चर्चा शुरू करने को तैयार हैं, 80% सदस्य चर्चा चाहते हैं। रिजिजू ने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से फिर से अनुरोध किया है, नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का जो आंदोलन हुआ है उस पर तत्काल चर्चा शुरू करने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते विपक्ष के सदस्य शांति से बैठें। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने कहा, सरकार इसके लिए तैयार है कि इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ किया जाए। आपकी मांग थी कि गृहमंत्री इस पर जवाब दें, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, गृहमंत्री हर बिंदु पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल इसका अंतिम कार्य दिवस है। राम मंदिर, चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण पूरे सत्र में सदन में गतिरोध बना रहा और अब तक एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चला है। निचले सदन की ने पिछले कुछ दिनों में हंगामे के बीच ही कुछ विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी है। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। उस समय वो दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

मीडियम वेव 326.07 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आइए सुने बॉबी फिल्म के कुछ गीत। श्रोताओ, बॉबी फिल्म 1973 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय प्रेम फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन राज कपूर ने किया था और जिसकी पटकथा ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी थी। इस फिल्म में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने अपनी पहली भूमिका निभाई थी। उनके साथ डिंपल कपाड़िया ने अपनी पहली फिल्म में अभिनय किया था। आइए सुने बॉबी फिल्म के कुछ गीत।

0: श्रोतोवे की फिल्म से कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं बॉबी फिल्म के कुछ गीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

श्रोतोवे की फिल्म से एक कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बॉबी फिल्म के कुछ गीत। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफ़र, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने सीनियर व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। आर प्रज्ञानंद ने सिंगफील्ड कप शतरंज प्रतियोगिता में जावोखीर सिंदारो पर बड़ी जीत हासिल की। HCL स्कॉश PSA चैलेंजर टूर में सूरज कुमार चंद ने हसन मेन शावी पर शानदार जीत दर्ज की। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला की घोषणा, अफगानिस्तान श्रृंखला की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप से, जहां तीसरे दिन भी लगातार भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने सीनियर व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: भारत ने सीनियर महिला फॉइल कैटेगरी में शानदार

0: बात करते हुए स्वर्ण और रजत पदक जीते। कनाग लक्ष्मी ने सटीक और नियंत्रित खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि जॉयस अशिता ने रजत पदक हासिल किया। उन्होंने इंग्लैंड की जॉर्जिया ग्रीन और एमिली गुडचाइल्ड को पीछे छोड़ते हुए पोडियम पर शीर्ष दो स्थान हासिल किए। सीनियर पुरुष एपी इवेंट में भी सफलता का सिलसिला जारी रहा, जहां राजेंद्रन शांतिमोली शेरजिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए दिन का दूसरा स्वर्ण पदक जीता। शेरजिन ने दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर पीटर को हराया, जबकि वेल्स के बर्खार्ट मार्क और साउथ अफ्रीका के लोसेवस्की सरगई ने ब्रॉन्ज मेडल साझा किए। सीनियर पुरुष सेबर इवेंट में सिंह करण सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के शिम युंगी के खिलाफ फाइनल मुकाबले में शानदार जीत हासिल कर भारत के लिए दिन का तीसरा गोल्ड मेडल जीता, जबकि शिम युंगी को रजत पदक मिला। टीम के साथ ही कुमारेशन पद्मा गिशो निधि ने नाइजीरिया के अकिनियो सोए ओलुवा फोलायेमी के साथ कांस्य पदक जीतकर भारत के मेडल की संख्या में और इजाफा किया। भारतीय टीम अब फॉइल, एपी और सेबर इवेंट्स के फाइनल मुकाबलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। शुरुआती तीन दिनों में जीते गए 29 पदकों के उत्साह को आगे बढ़ाते हुए टीम इंडिया लागोस में अपना दबदबा बनाए रखने और शानदार तरीके से अभियान का समापन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रतियोगिता में सीनियर महिला फॉइल, सीनियर पुरुष एपी और सीनियर पुरुष सेबर इवेंट्स में दबदबा बनाते हुए टीम इंडिया के तीसरे दिन के शानदार प्रदर्शन से देश के कुल पदकों की संख्या 29 हो गई है, जिसमें 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात करते हैं शह और मात के खेल शतरंज पर। सिंकफील्ड कप के तीसरे राउंड में आज रात 10:30 बजे से भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद का सामना विंसेंट कीमर से होगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर जावोखीर सिंदारोव पर बड़ी जीत हासिल की। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: प्रज्ञानंदा ने 6 घंटे तक चले मैराथन गेम में 95 चालों में शानदार जीत हासिल की। 82वें चाल में सिंदारोव की गलती का फायदा उठाकर प्रज्ञानंदा ने बढ़त हासिल करते हुए जीत पक्की कर ली। 20 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने कैंपेन की शुरुआत अमेरिकन सैम सेवियन के खिलाफ ड्रॉ से की थी और आधे पॉइंट के साथ दूसरे राउंड में एंट्री की थी। सिंदारोव पर जीत ने प्रज्ञानंदा को खिताब की दौड़ में बनाए रखा है। टूर्नामेंट में 3 और अहम नतीजे आए। एरोनियन ने विंसेंट कीमर को, MVL ने सेवियन को और वेस्ली सो ने जॉर्डन वैन फॉरेस्ट को हराया। दो राउंड के बाद 5 खिलाड़ी 1.5 अंक के साथ लीड साझा कर रहे हैं। आर प्रज्ञानंदा की बात करें तो अपना पहला रैपिड और ग्रैंड चेस टूर के पहले US लेग के तौर पर 2026 सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज में ब्लिट्ज खिताब जीता। भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 18 में से 12 पॉइंट्स के साथ रैपिड सेक्शन में टॉप करके अपनी जीत पक्की की और ब्लिट्ज में ओवरऑल खिताब अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के बाद वे अपने करियर में पहली बार वर्ल्ड रैपिड रैंकिंग के शीर्ष 10 में पहुंचे हैं। सिंकफील्ड कप 2026 ग्रैंड चेस टूर का आखिरी नियमित सीजन स्टॉप और सिग्नेचर क्लासिकल इवेंट है, जो कि 19 अगस्त तक खेला जाएगा। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: पिछले ही सप्ताह आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज का खिताब जीता था और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इस प्रतियोगिता की भी बात की जाए सिंकफील्ड कप में भी, तो उन्होंने दूसरे राउंड में चैंपियनशिप चैलेंजर जावोखीर सिंदारोव पर बड़ी जीत हासिल की है। पहला मुकाबला उन्होंने ड्रॉ खेला था। और उधर महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन 16 से 26 अगस्त के बीच एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन करेगा। इसमें 10 देशों के 157 खिलाड़ी भाग लेंगे। MCA के अध्यक्ष परिणय फुके, टूर्नामेंट डायरेक्टर निरंजन गोडबोले और आयोजन सचिव सलील घाटे ने आज इस बात की घोषणा की। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: प्रतियोगिता में 6 इंटरनेशनल मास्टर्स, 24 फिडे मास्टर्स और महिला फिडे मास्टर्स शामिल हैं। एशिया के टॉप अंडर 20 टैलेंट वाले इस टूर्नामेंट में क्लासिकल स्विस फॉर्मेट के 9 राउंड के अलावा रैपिड और ब्लिट्स के 7 राउंड भी होंगे। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, एशिया चेस फेडरेशन और फिडे की देखरेख में होने वाला यह टूर्नामेंट मुंबई के ITC मराठा में खेला जाएगा। यह देश के जूनियर्स के बीच सबसे पसंदीदा इवेंट्स में से एक है, जिसने विश्वनाथन आनंद, अभिजीत कुंटे, तेजस बाकरे और तानिया सचदेव, कोनेरू हम्पी, इवाना फुर्टाडो जैसे मशहूर खिलाड़ियों को चैंपियन बनाया है। क्लासिकल स्विस फॉर्मेट में 157 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जबकि 153 खिलाड़ी रैपिड इवेंट और

0: 51 खिलाड़ी ब्लिट्स इवेंट में खेलेंगे। ओपन सेक्शन के खिलाड़ियों का औसत ईएलओ रेटिंग 2054 है, जबकि जूनियर महिला सेक्शन का औसत ईएलओ रेटिंग 1885 है। ओपन लिस्ट में भारतीय आईएम मयंक चक्रवर्ती सबसे आगे हैं। उनके बाद रूस के आईएम आर्टेम पिंगिन और भारतीय आईएम अपूर्व कामले हैं। जूनियर महिला सूची में भारतीय डब्ल्यूएफएम प्रतीति बोरदोलोई सबसे आगे हैं। इस प्रतियोगिता में विग्नेश अद्वैत वेमुला आदित्य ढींगरा अक्षय बोर गावनकर स्वरा लक्ष्मी नायर मृतिका मल्लिक और सारणा देवी नरहरी जैसे प्रतिभावान भारतीय खिलाड़ी भी प्रतिस्पर्धा करते हुए नजर आएंगे। करिश्मा राय स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात फुटबॉल पर। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने कल डूरंट कप के अपने आखिरी ग्रुप एफ मैच में एफसी वन को 3-1 से शिकस्त देकर ग्रुप स्टेज में शानदार रिकॉर्ड के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पार्थिव गोगोई ने दोनों हाफ में गोल दागे, जबकि अलाइदीन अजराई ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए तीसरा गोल किया। एफसी वन की ओर से इकलौता गोल मोहम्मद इलियास ने किया। हाईलैंडर्स ने अपने ग्रुप स्टेज अभियान का समापन 3 मैचों में 3 जीत के साथ किया और ग्रुप एफ के विजेता बने। वहीं एफसी वन ने अपने पहले डूरंट कप अभियान का समापन 3 मैचों में 3 अंकों के साथ किया। और अब बात करते हैं स्कॉश पर। एचसीएल स्कॉश पीएसए चैलेंजर टूर में कल पुरुष प्री क्वार्टर फाइनल में सूरज कुमार चंद ने हसन मेन शावी पर शानदार जीत दर्ज की। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: प्री क्वार्टर फाइनल में सूरज कुमार चंद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मिस्र के हसन मेन शावी को 11-4, 8-11, 11-2, 9-11, 11-8 से हराया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वाश चैंपियनशिप में सिंगल्स का खिताब जीतने वाले सूरज कुमार चंद ने ये मुकाबला 73 मिनट में अपने नाम किया। एक अन्य रोमांचक मुकाबले में संदेश पलानीवेल रवि कुमार ने 0-2 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए छठे सीड अयान वजीराली को 6-11, 10-12, 11-5, 11-6, 11-7 से मात देकर पुरुष क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं महिलाओं के वर्ग में टॉप सीड तन्वी खन्ना ने वसुंधरा नंगारे को सीधे गेम में हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। एचसीएल स्क्वैश पीएसए चैलेंजर टूर ने अब तक इंदौर, मुंबई और चेन्नई में इवेंट आयोजित किए हैं और अब ये कोलकाता चरण में है। इस इवेंट में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में इनामी राशि $9,000 रखी गई है। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
1: और श्रोता आपको बता दें कि पुरुष वर्ग में 8वीं वरीयता प्राप्त ओम सेमवाल, संदेश पलनीवेल रवि कुमार, मोहम्मद गोहर, सूरज कुमार चंद, अहमद सईद सोभी, हाजिम होसाफ, सैफ रेफाई और शौर्य बाबा ने जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में सोहैला हाजिम, अनन्या नारायणन, तन्वी खन्ना, निरुपमा दुमे, करेलिना श्रामकोवा, मैन्ना वालिद, उन्नति त्रिपाठी और रथिका सीलन ने जीत दर्ज की है। बिहार सरकार पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में 651 एकड़ क्षेत्र में विश्व स्तरीय खेल केंद्र विकसित करेगी, जिससे राज्य के खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए मजबूत खेल अवसंरचना तैयार हो सके। इसमें लगभग 225 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी, 187 एकड़ में गोल्फ कोर्स और 239 एकड़ में आधुनिक खेल परिसर विकसित करने का प्रस्ताव है। नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने कल इस परियोजना को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना विकसित की जा रही है। और अब बात क्रिकेट पर। बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के साथ प्रस्तावित 3 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। ये पहला मौका है जब अफगानिस्तान भारत में T20 सीरीज में भारतीय टीम की मेजबानी करेगा। अफगानिस्तान और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 3 T20 मैचों के सीरीज के मैच 13, 15 और 17 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। और उधर दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 18 ओवर में 4 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। वहीं कल हुए मुकाबले में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स

0: ने वेस्ट दिल्ली लायंस को 8 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में कल 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दोपहर 1:30 बजे आउटर दिल्ली वॉरियर्स और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच होगा। वहीं दूसरे मुकाबले में शाम 7 बजे नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स और पुरानी दिल्ली सिक्स आमने सामने होंगे। और अभ्यास मैच में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम श्रीलंका से 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेलने के लिए तैयार है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 अगस्त को होगा। 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में किन 5 खिलाड़ियों पर प्रदर्शन पर नजरें होंगी, आइए सुनते हैं उनके बारे में।
1: देवदत्त पटिकल के पास साई सुदर्शन की गैर मौजूदगी में खुद को साबित करने का बढ़िया मौका होगा। वार्म अप मैच में उन्होंने 142 रनों की नाबाद पारी खेली थी। ऐसे में नंबर 3 पर खेलने की तैयारी कर रहे पटिकल के प्रदर्शन पर हर किसी की नजर रहेगी। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टेस्ट टीम में अपनी जगह बरकरार रखने के लिए इस श्रृंखला में बल्ले से दमदार प्रदर्शन करना होगा। पंत की हालिया फॉर्म को देखते हुए उनके चयन पर कई सवाल खड़े हुए थे। श्रीलंका के खिलाफ अगर पंत का बल्ला खामोश रहता है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं चाइना मैन कुलदीप यादव टीम से अंदर बाहर होते रहे हैं। टीम में अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की मौजूदगी के चलते कुलदीप को ज्यादा मौके नहीं मिले हैं। वहीं मानव और सारांश जैन ने उनके लिए मुकाबला और कड़ा कर दिया है। अगर तेज गेंदबाजों की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज की टीम में वापसी हुई है। अभ्यास मैच में उन्होंने 15 गेंदों में 32 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम किरदार निभाया है। वैसे सिराज की हालिया फॉर्म कुछ खास नहीं रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के आकिब नबी ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम में जगह बनाई है। उन्हें बुमराह की जगह मौका मिला है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी के सीजन में 10 मुकाबलों में 60 विकेट लिए थे। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और चलते चलते श्रोताओं, आपको बता दें कि ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 19वें ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बना लिए हैं। सुजल सिंह 46 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं और अभी अभी दीपक पुनिया उनका साथ देने के लिए क्रीज पर आ गए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम

0: से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी, लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
3: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
4: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
0: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से है, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने

0: और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
1: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के मनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज फुट ओवर ब्रिज जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
2: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहाँ पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को पुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल

results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2 मिनट और 18 सेकंड तक ढक कर रखेगी।

0: दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill to enhance funding and development of cooperative sector, also gives nod to legislation to rename state of Kerala as Keralam. Both houses refer Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. Home Minister Amit Shah says he is ready for detailed discussion on NEET paper leak related issue, writes letter to Lok Sabha Speaker. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for greater private capital mobilization in BRICS economies for global growth. Heavy to extremely heavy rainfall likely over parts of Odisha and Gangetic West Bengal for next 2 days as low pressure forms over Bay of Bengal. And Indian fencing team clinches 5 medals, including 3 gold on third day of Commonwealth Championship in Nigeria. Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The corporation can also provide loans and grants directly to any cooperative society or entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha had passed the legislation yesterday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Replying to a debate on the bill, Minister of State for Home Nityananda Rai said the Kerala Legislative Assembly had passed a resolution in 2024 requesting the centre to change the name of the state from Kerala to Keralam. He said the request in this regard was made because the name of

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं जगजीत सिंह।

0: जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: चर्चा का विषय है।
2: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर एमएसएमई मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। जब किसी शहर की एक गली में वर्कशॉप का शटर उठता है, जब किसी गांव में एक छोटा कारखाना शुरू होता है, तो सिर्फ मशीनें नहीं चलती, देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी चलती है। देश की जीडीपी में 30% से अधिक की हिस्सेदारी और करोड़ों हाथों को रोजगार देने में एमएसएमई सेक्टर का कोई सानी नहीं है। लेकिन क्या हो जब एक छोटा उद्यमी काम करने के बाद अपनी मेहनत के पैसे के लिए वर्षों इंतजार करे? क्या हो जब उसे कानूनी दांवपेच या कागजी कार्रवाई में लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़े? इन्हीं अड़चनों को जड़ से समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026। क्या है इसके प्रावधान, या फिर यूं कहें कि क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा और एमएसएमई सेक्टर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं एमएसएमई मंत्रालय में सचिव भरत खेड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
4: नमस्कार।
3: यहीं से शुरुआत करते हैं। 2006 में एमएसएमई एक्ट बना, 20 वर्ष यानी दो दशक बीत गए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि 20 वर्षों के बाद अमेंडमेंट बिल की जरूरत क्यों पड़ी?
4: आनंद जी, 2006 में जैसे आपने बताया, सबसे पहले ये एक्ट बना था एमएसएमई क्षेत्र के लिए, और इन 20 वर्षों में कई ऐसे चेंजेस आए जिसके लिए ये आवश्यक हो गया था कि हम इस एक्ट में संशोधन करें। और 20 वर्षों बाद जब संशोधन होता है तो वो बड़ा स्वाभाविक है कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस किए जाते हैं, और इस पीरियड में टेक्नोलॉजी का भी बहुत स्वीपिंग चेंजेस आए, और उसके साथ साथ कई ऐसे प्रोविजंस थे जो कि रिडंडेंट और ऑब्सोलीट लगने लगे, और हमें ज़रूरत लगी कि आज के युग के साथ उनको भी आगे बढ़ाया जाए। और कुछ चुनौतियां रहीं हमारे एमएसएमई क्षेत्र में जो हम अनुभव कर रहे थे पिछले कुछ वर्षों में, उनसे भी निपटारा करने के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि हम एक्ट के प्रोविजंस के अंदर प्रावधानों में अमेंडमेंट करें। इसी के चलते ये चेंजेस इस बार लाए गए हैं, और जैसे आपने कहा, 3 अगस्त को राज्यसभा से और 7 अगस्त को लोकसभा से हमारा एमएसएमई बिल पारित हुआ है।
3: कई सारी चुनौतियों के समाधान को खोजने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। एक एक करके अगर आपसे समझना चाहें तो मध्यस्थता के लिए 90

0: तीनों का समय निर्धारित किया गया है कि अगर कोई भी समस्या होती है तो पहले मध्यस्थता में उसे भेजा जाएगा, जिसे मीडिएशन भी कहते हैं, और 90 दिन एक समय सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन फैसिलिटेशन सेंटर्स के पास अभी भी हजारों की समस्याएं पेंडिंग है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या राज्यों के साथ मिलकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, कोई एक कार्य प्रणाली बनाई जा रही है जिससे 90 दिनों की समय सीमा के अंदर उस मामले को निपटारा किया जा सके?
1: देखिए, एमएसएमई क्षेत्र के अंदर पेमेंट्स का डिले होना एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। छोटे सप्लायर्स हैं, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम श्रेणी के सप्लायर्स हैं, और उनके लिए लिक्विडिटी बहुत क्रिटिकल रहती है। उनके लिए वर्किंग कैपिटल समय से उपलब्ध हो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसी से वो खरीदारी करके अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि पेमेंट्स में विलंब हो जाता है। इसी के चलते प्रावधान पहले एक्ट में किया गया था कि डिलेड पेमेंट्स को कैसे एड्रेस किया जाए। हालांकि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के भी प्रावधान थे, लेकिन ये देखने में आ रहा था, पिछले वर्षों में अनुभव ये किया जा रहा था कि इसमें उसके बावजूद, इन प्रावधानों के बावजूद विलंब हो रहा था। तो इस नए संशोधन के अंदर एक तो ये तय किया गया है कि हर चीज़ की अपनी समय सीमा हो, और उस मीडिएशन और आर्बिट्रेशन शुरू करने से पहले प्रयास ये हो कि जो सप्लायर है और जो ऑर्डर प्लेस करता है, उन दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल नेगोशिएशन और डिस्कशन से भी मामला सुलझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी ऑर्डर प्लेस करती है छोटे सप्लायर के ऊपर, उनका भी बड़ा लंबे समय तक एक रिश्ता बन जाता है आपस में, तो वो चाहते भी नहीं कि कोई डिस्प्यूट हो, और प्रयास भी सबसे पहले यही होता है कि उसको आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाए। लेकिन अगर वो निपटारा नहीं हो पाता और किसी वजह से उसमें डिस्प्यूट का फॉर्म ले लेता है, तो मीडिएशन के लिए समय निर्धारित किया गया कि वो 90 दिन के भीतर भीतर किया जाए, और अगर मीडिएशन में भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला तो 30 दिन के अंदर अंदर उसके लिए आर्बिट्रेशन में मूव किया जाएगा, और आर्बिट्रेशन में आने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर अवार्ड अनाउंस किया जाएगा। तो ये जो समय सीमा है, इसको एक्ट में ही निर्धारित किया गया है। प्रयास ये है कि बहुत ज़्यादा विलंब इन डिस्प्यूट्स के अंदर भी ना हो। आपका कहना सही है, जो MSEFCs हैं, जहाँ पर फैसिलिटेशन काउंसिल्स के अंदर ये डिस्प्यूट्स आती हैं, उनमें कई समय तक कई बार डिलेज भी हो जाते हैं, चूँकि प्रोसेस उनके लंबे होते हैं। तो प्रोसेस को भी सरल किया गया है, चूंकि अब प्रावधान किया गया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, तो एक ODR पोर्टल है हमारा, जो पिछले साल हमने लॉन्च भी किया था। उसमें हमारा जो सेलर और परचेजर दोनों उस पर रहेंगे और पहले प्रयास करेंगे कि आपसी बातचीत से हो जाए, नहीं होगा तो उसी के माध्यम से मीडिएशन के लिए जाएगा, और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकेगी। अपने घर के एंटरप्राइज के कंफर्ट में बैठ करके कहीं फिजिकली दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया हो पाएगी, और आर्बिट्रेशन का काम भी ऑटोमेटिकली वहीं से फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ, इस समय सीमा को निर्धारित करने से इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में और आसानी होगी, और जो पेमेंट्स समय से नहीं हो रही थी वो समय से होने लगेंगी, डिलेज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे।
0: थोड़ी चर्चा अगर ट्रेड्स की कर लें इस बिल पर, ट्रेड्स पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, उसको बहुत अहमियत दी गई है। आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए हम बता दें कि मान जाइए कि आपने ए साथ आपकी डील हुई, वो डील 25 करोड़ रुपए की है। ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपने वहां पर अपनी इनवॉइस जेनरेट की, किसी दूसरी कंपनी को लगता है कि वो 24 करोड़ रुपए आपको अभी तत्काल दे सकती है, बायर के पैसे 2 सालों के बाद आएंगे तो उसको 25 करोड़ मिल जाएगा, लेकिन हमने अपना पैसा लगाया है तो हम 24 करोड़ में अगर सेटल होना चाहें तो वो हम सेटल हो सकते हैं। ये ट्रेड्स की खासियत है इनवॉइस सेटलमेंट के लिए। इसको कैसे प्रभावी बनाया जा रहा है इस बिल के माध्यम से?
1: देखिए, ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, सप्लायर के लिए, परचेजर के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, तीनों के लिए। और जैसे आपने बड़े सरल रूप से बताया, ये जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है 2017 में RBI ने शुरुआत की थी, और शुरुआती दौर में इस पे ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती थी। रादर मैं ये कहूँगा 2021-22 में भी हम तकरीबन 40,000 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शंस कर पा रहे थे, जो पिछले वर्ष में 2025-26 में बढ़कर के 3.5 लाख करोड़ तक पहुँच गया। और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज हमारी ऑनबोर्ड कर रही हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर। इस नए संशोधन के अंदर जितने हमारे केंद्रीय उपक्रम हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए अनिवार्य किया गया है कि जितने भी MSME से संबंधित पेमेंट्स हैं उनको ट्रेड्स के माध्यम से इनवॉइसेस को वहां पर रेज किया जाए, ताकि उनकी पेमेंट्स ट्रेड्स के माध्यम से की जा सके। तो इसके चलते काफ़ी आराम हमारे MSMEs को मिलेगा, क्योंकि कई बार उनको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता था, उसके चलते वो आगे रॉ

0: मटेरियल की खरीद नहीं कर पाते थे, तो उसमें उनको आसानी होगी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें बेझिझक आगे बढ़ेंगी। तो अभी तक ट्रेड्स का एक्ट के अंदर प्रावधान नहीं था, अब उसकी एक बाकायदा स्टैट्यूटरी बैकिंग है, और जो एक सिर्फ नोटिफिकेशन से चल रहा था उसका एक्ट में प्रावधान किया गया। CPSEs को मैंडेट दिया गया कि वो इस पर ऑनबोर्ड भी हों और इसके माध्यम से करें, और उसके साथ साथ वो उसकी पब्लिक डिस्क्लोजर भी करेंगी कि हमारे इन इन MSME से संबंधित जो इन्वॉइसेस थी वो रूट की गई ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पीरियड के दौरान, तो वो भी करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहेगा।
1: यहाँ एक छोटा सा सवाल और उठता है कि बड़े कॉरपोरेट्स घरानों को ट्रेड्स तक लाने के लिए क्या MSME मंत्रालय के पास कोई योजना है या उस पर काम किया जा रहा है?
0: देखिए, जहाँ तक केंद्रीय उपक्रम है उनके लिए तो अब एक्ट में ही प्रावधान हो गया। हमारे 291 इस समय केंद्रीय उपक्रम है और ये सब उपक्रम अब ट्रेड्स के माध्यम से ही करेंगे। जहाँ तक प्राइवेट इंडस्ट्री है, 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले उपक्रमों को भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो ट्रेड्स के माध्यम से करें, और स्टेट गवर्नमेंट्स को इस नए संशोधन के अंदर प्रावधान ये किया गया है कि वो भी चाहें तो अपने स्टेट के जो उपक्रम हैं उनको भी मैंडेटरी कर दें ट्रेड्स के माध्यम से ऑपरेट करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ पूरा इकोसिस्टम जब इसका बेनिफिट उठाएगा तो हमारे MSMEs के लिए ये व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी और लिक्विडिटी क्रंच जो अक्सर वो फेस करते हैं उससे उनको छुटकारा मिलेगा।
1: एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि कोई भी जो उद्यमी है अगर उसने बायर के अगेंस्ट कोई कंप्लेन की है और उसके पक्ष में वो निर्णय आता है, लेकिन बायर चूंकि मजबूत होता है, उसके पास आर्थिक ताकतें ज्यादा होती हैं, वो कोर्ट में उस मामले को ले जाता है और फिर वो मामला काफी लंबा खींचता है। जो छोटा उद्यमी है जिसने अपना पैसा लगाया है, जिससे उम्मीद है कि काम पूरा होने के बाद उसको पैसे मिलेंगे, उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसकी वो सैलरी दे पाएगा, जो रॉ मटेरियल्स लाया है उसका भुगतान कर पाएगा, ऐसे में जो कोर्ट में लंबा मामला खींच रहा है, क्या इस बिल में उसके लिए प्रावधान है?
0: इसके लिए भी बड़ा प्रभावी प्रावधान किया गया है। अगर कोई डिक्री या अवार्ड को अपील के अंदर चैलेंज किया जाता है तो उस अवार्डेड राशि का 75% अनिवार्य है कोर्ट के पास जमा करवाना। अब उस राशि में से कोर्ट्स को ये एम्पावर किया गया है कि अवार्डेड अमाउंट का 50% राशि वो उसको तुरंत जारी करवा सकते हैं MSMEs के फेवर में अगर कोई अपील 6 महीने से ज़्यादा पेंडिंग है। एक समय सीमा आ गई 6 महीने की, अगर 6 महीने से ज़्यादा कोई अपील लंबित रह जाती है तो कोर्ट्स 50% राशि अवार्डेड अमाउंट की उस MSME को तुरंत जारी कर देंगे, ताकि विलंब अगर होता भी है तो भी 50% राशि तो उसको मिली गई फैसला होने तक, बाद में बाकी भी मिल जाएगी। ये नया प्रावधान इस संशोधन में लाया गया है।
1: एक और प्रावधान किया गया है उद्यम पंजीकरण पोर्टल का, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। जो लोग MSME से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए किस तरीके से ये सहायक होने वाला है?
0: देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि उद्यम पोर्टल पर या अन्य कहीं पर पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। यही प्रावधान एक्ट में भी किया गया है, और उद्यम पोर्टल पर ये ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है इसकी। इसमें उद्यम पोर्टल हमने लॉन्च किया था 2020 के अंदर और धीरे धीरे फॉर्मलाइजेशन काफ़ी हुई, क्योंकि पहले अक्सर ये देखा जाता था कि एंटरप्राइजेस इनफॉर्मल क्षेत्र में तो कई साल काम करते थे लेकिन फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बनते थे। शायद इस बात से भी घबराते हों कि कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा और परेशानी आने लगेगी, तो सरकार ने बड़े प्रयासों के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री के ऊपर कंप्लायंस बर्डन भी कम किया। इसके भी चलते प्रेरित हुई एंटरप्राइजेस कि हम फॉर्मल रूप से अपना पंजीकरण करवाएं, और मैं ये समझता हूँ इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई पिछले कुछ वर्षों में। 1.65 करोड़ हमारे एंटरप्राइजेस फॉर्मल इकोसिस्टम में थे आज से 4 साल पहले, और आज हमारी संख्या 9 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। तो ये तभी संभव हो पाया जब उनको लगा कि ये इससे उनको लाभ मिलेंगे, सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसका भी वो लाभ उठा पाएंगे, तो आगे बढ़कर के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। अब चूंकि उद्यम पोर्टल का प्रावधान एक्ट में ही किया गया है तो ये फॉर्मलाइजेशन की हमारी जो कैंपेन है ये और बेहतर रूप से चलेगा और इसमें हम सैचुरेशन प्राप्त करेंगे।
1: आपने अभी कैंपेन का जिक्र किया, ये नए प्रावधान से MSME से जुड़े उद्यमियों को रूबरू कराने के लिए किस तरह के कैंपेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की दिशा में सोचा जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि कई सारे मंत्रालय एक्सपोज करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वेबिनार करते हैं, और जहां पर बहुत सारे छोटे बड़े उद्यमियों को मिलाकर विशेषज्ञ उनको बारीकियां समझाते हैं, क्या इस तरह की भी कोई योजना है?
0: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो संशोधन विधेयक लाया गया इससे पहले भी फील्ड में हमारे बहुत अच्छा एंगेजमेंट रहा सभी MSME एसोसिएशंस के साथ, इंडस्ट्री के लोगों से, उन्हीं से ये फीडबैक

0: तक लेकर के उन्हीं के सुझावों के आधार पर ये प्रस्ताव तैयार किया गया और अब चूंकि बिल पारित हो गया है, आने वाले समय में हम MSMEs के साथ डायरेक्टली एंगेज करके उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी डिसेमिनेट करेंगे। हमने अभी तकरीबन 5 करोड़ मैसेजेस एक ही दिन में सभी MSMEs को डायरेक्टली भी भेजे हैं, ईमेल्स भी भेज रहे हैं और एसोसिएशंस के माध्यम से भी हम उन तक ये सारे प्रावधान जो नए हैं उसके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो पूरा इसका लाभ उठा सके।
1: सचिव साहब, एक और यहाँ पर एक जो पेंच समझ में आता है वो ये है कि जो रिकवरी का मामला है उसमें ज्यादा हिस्सेदारी राज्यों की होती है, ऐसे में MSME मंत्रालय राज्यों के साथ किस तरीके का संगठनात्मक समन्वय की स्थिति बना रहा है जिससे रिकवरी थोड़ी फास्ट हो सके?
0: देखिए, समन्वय तो इसमें हमेशा राज्यों के साथ रहता ही है, लेकिन इस संशोधन के अंदर एक एक्ट में भी प्रावधान किया गया है, अगर कोई सेटलमेंट होता है मीडिएशन के आधार पर या आर्बिट्रेशन के बाद कोई अवार्ड होता है तो उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए उसको एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू भी घोषित किया जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने नॉर्मली जो जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर होते हैं उनको अधिसूचित किया गया होता है एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिकवर करने के लिए, वो प्रावधान भी पहली बार इस एक्ट में किया गया है ताकि कोई अमाउंट अगर ड्यू है तो वो अनरिकवर्ड ना रह जाए, उसकी वसूली सुनिश्चित करने के लिए ये भी प्रावधान किया गया है। और ये हमें राज्यों से ही फीडबैक भी आया, राज्य सरकारों से, और मैं ये समझता हूँ ये जो प्रावधान है ये आने वाले समय में और प्रभावी रूप से काम कर पाएगा।
1: एक और इसमें व्यवहारिक बदलाव किया गया है, पहले अगर कोई उद्यमी जो है वो छोटी मोटी गलती कर देता था या चूक कर देता था उसके लिए जेल या जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन इसमें उसको हटाकर वार्निंग की व्यवस्था की गई है। क्या इससे वो जो इंस्पेक्टर राज वाला कॉन्सेप्ट था उसको समाप्त करके MSME से जुड़े उद्यमियों को आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस देने की सोच है?
0: देखिए, डीक्रिमिनलाइजेशन और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पर पूरी केंद्र सरकार में आप देख ही रहे हैं सभी एक्ट्स के अंदर बदलाव लाया जा रहा है। हमारा जो ये एक्ट है इसमें जेल का प्रावधान तो खैर नहीं था, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस जरूर था क्योंकि उसमें कन्विक्शन बेस्ड पेनल्टी थी कि कोर्ट के माध्यम से कन्विक्शन होगा और फिर उस पर पेनल्टी लगेगी, उसको अब सरल कर दिया गया है। उसमें ग्रेडेड फाइन, जो ग्रेडेड पेनल्टी का प्रावधान किया गया है और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उसका डिसीजन लिया जा सकता है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई पहले कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, किसी कारणवश नासमझी की वजह से कोई लैप्स होता है तो पहले इंस्टेंस पर वार्निंग देने का प्रावधान है, दूसरे इंस्टेंस पर पेनल्टी लगेगी वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर 1,000 से 50,000 के बीच में, और अगर उसके बाद भी वो करता है तो पेनल्टी का अमाउंट बढ़ जाएगी, लेकिन कन्विक्शन के लिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए हमने डेवलपमेंट कमिश्नर को एडजुडिकेट करने के लिए अधिकृत किया है और अगर उसमें भी अगर कोई अपील करना चाहे तो वो सचिव के पास अपील भी कर सकता है, उसके लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। तो मैं ये समझता हूँ ये पूरा जो इकोसिस्टम है ये ट्रस्ट के आधार पर काम करने के लिए बनाया गया है।
1: एक और व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि जब भरोसा दिया जा रहा है और आपने शुरू में भी कहा कि चूंकि 20 वर्षों में तकनीक बहुत बदल गई इसलिए इस संशोधन बिल की जरूरत आन पड़ी, आज का जमाना AI का जमाना है, क्या इस बिल में तकनीक को लेकर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे समस्याओं को सुलझाने को लेकर भी कोई प्रावधान है या कोई चर्चा है?
0: देखिए, जो हमारा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पोर्टल है वो नया पोर्टल बना, बहुत ही रोबस्ट है और उसमें सारा जो प्रक्रिया है वो उस पोर्टल के माध्यम से हो रही है। उसमें AI भी मदद करेगा ड्राफ्ट करने में भी, कि आपने कोई डिस्प्यूट है उसको ड्राफ्ट करना है वो भी AI भी मदद करेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली मीडिएशन के अंदर, आर्बिट्रेशन के अंदर भी AI का इस्तेमाल किया जाएगा और ये सारी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होगी, जो कि मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के अच्छे यूजेज को दर्शाता है। और जो MSEFCs हैं हमारी, जो फैसिलिटेशन काउंसिल्स है, उनके कार्य में भी और ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी क्योंकि वो भी अपने पुराने फैसलों का अध्ययन कर पाएंगे, सब तरह के केसेस का एक साथ निपटारा करना भी उनके लिए सरल हो पाएगा। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग पोर्टल के अंदर किया जा रहा है, उसके साथ ही जो उद्यम पोर्टल है उसमें भी टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया गया है। आज हम बड़ी सरल रूप से बता पाते हैं कि हमारे कितने माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, कितने स्मॉल हैं, कितने मीडियम हैं, किस सेक्टर में कितने हैं, किस राज्य में, किस जिले में, कितने महिलाओं के हैं, ये सारी जो सेग्रीगेशन है, ये सारा जो एनालिसिस है ये हम कुछ सेकेंड्स के अंदर कर पाते हैं और ये एनालिसिस हमें मदद करता है नीतियां निर्धारित करने में, नई योजनाओं को प्लान करने में। तो मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चीजें और सरल होती जा रही।
1: आकाशवाणी से युवाओं का एक बड़ा वर्ग हमेशा से जुड़ा रहा है, उनके जहन में जरूर एक

0: सवाल उठ रहा होगा कि अब तक बहुत सारे हाथों को रोजगार देने का काम किया है एमएसएमई ने, क्या इस नए बिल से रोजगार के अवसरों में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है?
1: देखिए, हमारे देश में एमएसएमई का रोजगार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कृषि के बाद ये दूसरा क्षेत्र गिना जाता है रोजगार के टर्म्स में। तकरीबन 38 करोड़ से 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में हमारे एमएसएमईज जो हैं ग्लोबल वैल्यू चेन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हैं, और ये तभी संभव है जब उनमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, उनमें इनोवेशन रहेगी। तो नवाचार में सबसे ज़्यादा योगदान युवा पीढ़ी का रहता है। हमारी एमएसएमई चैंपियंस योजना के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम इनोवेशन के लिए हमारी युवा पीढ़ी को इंसेंटिवाइज करें, उनको प्रेरित करें, और वो अपनी क्वालिटी को भी इंश्योर कर पाएँ अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ला पाएँ, और अलग अलग प्रोडक्ट चेन के अंदर किस प्रकार से वो एक इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण हिस्सा बन पाएँ, Tier 2 और Tier 3 वेंडर से बढ़ करके पूरी वैल्यू चेन संभाल पाएँ और स्केल अप करें अपने एंटरप्राइज को। आज भी हमारे एमएसएमई क्षेत्र में 98% माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं,
0: जी
1: तो हमारा प्रयास है अब फॉर्मलाइजेशन होने के बाद स्केलिंग अप करें, माइक्रो बढ़ करके स्मॉल बने, स्मॉल बढ़ करके मीडियम बने, मीडियम के बाद लार्ज एंटरप्राइजेस बने। तो ये स्केलिंग करने में इनोवेशन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, और मैं ये समझता हूँ हमारी युवा पीढ़ी आज के समय में बहुत इसमें रुचि भी रखती है। पहले वेज एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान रहता था, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बजाय इसके कि रोजगार ढूंढें, वो खुद रोजगार देने के लिए तैयार हैं और स्कूल कॉलेज के अंदर ही प्रयास करने लगते हैं कि किस प्रकार से अपना एंटरप्राइज खोलें और लोगों को रोजगार दे पाए।
0: आपने अभी बात की एक सपने की, उस आपकी बात में एक सपना छिपा था कि छोटे से बड़े स्तर तक अपने कारोबार को लेकर जाने की। आपने बात की कि ग्लोबल स्तर पर अपने प्रोडक्ट की अहमियत को बनाने की, लेकिन इसमें एक जो बड़ी भूमिका है वो आपके स्किल सेट की होती है, कौशल विकास की होती है। क्या एमएसएमई जो दूर दराज के छोटे शहर हैं, गाँव हैं, वहाँ के उद्यमियों को स्किल बढ़ाने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए किसी कार्यक्रम पर, किसी योजना पर काम कर रहा है?
1: आपने बिल्कुल सही कहा, जो स्किल अपग्रेडेशन है बड़ा महत्वपूर्ण रहता है खासतौर पे युवाओं के लिए, और हमारे मंत्रालय की दो मुख्य योजनाएं हैं इसको लेकर के। एक तो टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, हमारे 55 टेक्नोलॉजी सेंटर्स देश भर में बन रहे हैं और इसमें से 35 ऑलरेडी फंक्शनल हैं, कुछ बाकी अभी बन रहे हैं। इनमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज की ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन दिया जाता है, और हाल ही में इसमें ऐड की गई हैं रोबोटिक्स, AI, IoT, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज जिसमें हमारे सक्षम बन रहे हैं युवा। उसके साथ ही साथ हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट योजना भी है, जिसके माध्यम से वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है पूरे देश भर के अंदर, और हम दूसरे जो मंत्रालय हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उनके साथ कॉन्वर्जेंस करके भी हम कौशल विकास की ओर विशेष ध्यान देते हैं।
0: इस बिल में क्लासिफिकेशंस की भी थोड़ी चर्चा है, इस बारे में भी बताएं।
1: देखिए, पहले क्लासिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के अंदर अंतर रखा जाता था, और अब वो खत्म हो गया 2020 के अंदर, जब हमने कहा कि चाहे वो एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग में लगा हो या सर्विसेज में कार्यरत हो, उसके क्राइटेरिया सिमिलर होंगे, और उसी से ट्विन क्राइटेरिया लाया गया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट आधार रहता था, अब कितना निवेश किया गया प्लांट एंड मशीनरी में और कितनी उसकी टर्नओवर है, इन दोनों क्राइटेरिया को ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन की जाती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम के अंदर। तो अब इसको बकायदा एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया, चूंकि ये पहले सरकार की नोटिफिकेशन के माध्यम से तो किया गया था, लेकिन अब ये एक्ट का हिस्सा बन चुका है कि ये ट्विन क्राइटेरिया को फॉलो करके क्लासिफिकेशन की जाएगी। उसकी सीमा कितनी होगी वो समय समय पर सरकार निर्धारित करती रहेगी। जैसे आप जानते ही हैं 2025 के अंदर पिछले वर्ष ही इसकी जो सीमा है उसको भी बढ़ाया गया था। आज के समय में 125 करोड़ तक के निवेश और 500 करोड़ तक का जो टर्नओवर है वो एमएसएमई क्षेत्र को डिफाइन करता है, तो इसमें पिछले वर्ष ही बढ़ोतरी की गई थी। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में और ज़्यादा एंटरप्राइजेज फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा बन पाएंगे डेफिनेशन में बदलाव आने के कारण।
0: सचिव साहब, कोई अगर बैंक से लोन लेता है एमएसएमई के तहत, लोन तो बहुत आसानी से मिल जाता है कानूनी प्रक्रिया के तहत, लेकिन अगर वो 6 महीने या निर्धारित समय में वो वापस नहीं कर पाता है, तो जो क्रेडिट पॉलिसी बनाई बनाई गई है, इस बिल में उसके लिए भी क्या कोई प्रावधान है, उसमें भी कोई जोड़ घटाव किया गया है क्रेडिट पॉलिसी को लेकर?
1: देखिए, एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और क्रेडिट इन्फ्यूजन इस क्षेत्र में काफी बढ़ा भी है। 2014 में तकरीबन 10 लाख करोड़ का क्रेडिट था इस क्षेत्र को, जो आज के समय में तकरीबन 38 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है, और ये तभी संभव हो पाया।

0: जब सरकार ने क्रेडिट गारंटी को बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दी और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से जब बैकिंग मिली बैंक्स को, तो उनका भी विश्वास और बेहतर हो गया और बैंक्स ने ये भी अनुभव किया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगातार गिरते आए हैं इस क्षेत्र के अंदर।
1: जी
0: हमारा परसेप्शन पहले ये रहता था कि जो छोटा उद्योग है वो शायद डिफॉल्ट करेगा, लोन वापस नहीं कर पाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कमी आई पिछले वर्षों में और ये जब बैंकों ने अनुभव किया तो वो और ज़्यादा प्रेरित हुए क्रेडिट बढ़ाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिट का आने वाले समय में और ज़्यादा भूमिका बढ़ेगी और बैंक्स जो हैं प्रेरित होंगे और बेहतर रूप से क्रेडिट उपलब्ध करवाने के लिए हमारे उद्यमियों को।
1: एक थोड़ा अलग सा सवाल जहन में आ रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भारत में जीआई टैग्स भी मिले हैं। बहुत सारे शहरों की अपनी खासियत है, जैसे हम बनारस की बात करें तो वहाँ बनारसी साड़ियों की खासियत है, कहीं का दाल काफ़ी फेमस है, कहीं के मसाले बहुत फेमस हैं। क्या मंत्रालय का कोई यूनिट उन छोटे शहरों में जहाँ कुछ विशेष चीज़ें बनती हैं वहाँ पर किसी को सिलेक्ट करता है या वहाँ कोई कैंप का आयोजन करता है कि यहाँ की ये खासियत, अगर आप इसको लेकर कुछ करना चाहते हैं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात है, वोकल फॉर लोकल की भी बात है, अगर आप इसको लेकर कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो मंत्रालय आपको विशेष योगदान देगा या आपको सपोर्ट करेगा?
0: देखिए, DPIIT जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और GI टैग को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो GI टैग जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अपना आवेदन करने के लिए और GI सर्टिफिकेशन लेने के लिए अगर MSMEs सामने आते हैं तो उसमें हम लोग भी अपने MSME चैंपियंस स्कीम के तहत उनको इंसेंटिव्स प्रदान करते हैं और इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ वर्षों में। बिकॉज कुछ साल पहले तक शुरुआती दौर में तो बहुत ही कम GIs थे, लेकिन पिछले सालों में आज हम करीब 800 के करीब GIs ऑलरेडी देश में रजिस्टर्ड हैं और आने वाले समय में भी हमने MSME चैंपियन स्कीम में ये प्रावधान रखा है कि GI लेने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें हम लगभग 100% इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं अपने मंत्रालय के माध्यम से।
1: ये जो बिल आया है, क्या इसमें कोई नेशनल डैशबोर्ड बनाने की भी कोई पहल की गई है जिससे कि रियल टाइम जो लोकेशन है मामलों के निपटान की, उसको लेकर कोई प्रावधान है जो कि आसानी से बायर भी देख सके, उद्यमी भी देख सके?
0: देखिए, जैसे मैंने आपको ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल के बारे में बताया,
1: जी
0: ये एक ऐसा पोर्टल रहेगा जो कि देश भर में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और ये इंटीग्रेटेड पोर्टल रहेगा। तो इसमें बायर और सेलर दोनों रहेंगे और साथ ही साथ MSEFCs भी इसमें ऑपरेट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये प्लेटफॉर्म इतना उपयोगी सिद्ध होगा कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनमें काफ़ी कमी आने की संभावना है, ये हमारी सोच है।
1: 2047 भारत विकसित भारत बने, ये सपना प्रधानमंत्री का है और हर भारतीय चाहता है कि जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करें तो एक विकसित भारत का निर्माण हो सके। ये जो बिल है और MSME, चूंकि हमने कार्यक्रम के शुरू में ही बताया कि 30% GDP में उसकी हिस्सेदारी 30% से थोड़ी ज़्यादा ही है, क्या लगता है इस बिल के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?
0: देखिए, मैं ये समझता हूँ विकसित भारत 2047 के संदर्भ में MSME क्षेत्र की भूमिका और अधिक बढ़ेगी आने वाले सालों में। आपने सही कहा कि आज के समय में भी GDP में 31% हमारा योगदान है और निर्यात में 48% है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 45% है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ये तकरीबन 40% GDP का बन जाएगा, एक्सपोर्ट्स भी हम 60% के करीब पहुँचेंगे। तो इन प्रयासों को ध्यान में रखकर, इस विजन को ध्यान में रखकर के ही हम अपनी योजनाओं को भी और बेहतर रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयासरत हैं। आने वाले समय में हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो MSMEs हैं वो स्केल अप करें और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों ताकि वो ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकें, और उसके लिए हम उनकी प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के हों, बेहतर गुणवत्ता के हों, तभी वो ग्लोबल मार्केट्स में पहुंच पाएंगे, उसमें भी उनको हम सहायता प्रदान करेंगे। और साथ ही जो प्रोसेसेस हैं वो सस्टेनेबल हों, कम लागत के हों, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों, उसकी ओर भी हमारी कुछ स्कीम्स हैं MSME चैंपियंस के तहत जिसको अब हम और आगे प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट करेंगे।
1: आपको बहुत सारे छोटे उद्यमी या फिर मध्यम उद्यमी सुन रहे हैं या वैसे युवा भी सुन रहे हैं जो भविष्य में MSME से जुड़ना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे उन्हें आप?
0: देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि ये क्षेत्र और आगे बढ़े और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज हैं वो ये विजन रखें कि किस प्रकार से अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे, स्केल अप करें, और जो युवा सोच रहे हैं कि अब आगे बढ़ करके भविष्य में क्या करना है, वो बजाय इसके कि नौकरियां ढूंढने, बेहतर है कि अपना खुद का एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए इनोवेशन लेकर के आएँ और प्रयास करें और रोज़गार प्रदान करें, बजाय इसके कि रोज़गार ढूंढने, रोज़गार प्रदान करें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा युवा पीढ़ी से।
1: ये नया भारत है, नए भारत में नई संभावनाएं होती हैं और उन

0: संभावनाओं को संभव बनाना जीवन की भी सच्चाई है और साथ ही साथ सरकार का भी दायित्व बन जाता है। सरकार ने समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए और खासकर एमएसएमई क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए इस बिल में कई प्रावधान किए हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की हमारे साथ भरत खेड़ा ने, और उम्मीद है कि एमएसएमई क्षेत्र आने वाले वर्षों में और तरक्की करेगा। भरत जी, आकाशवाणी में बात करने के लिए और विस्तार से इस अमेंडमेंट बिल पर अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद आनंद जी।
2: अभी आप सुन रहे थे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर एमएसएमई मंत्रालय।

0: न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

सभी श्रोताओं को राजेंद्र शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अब पेश है एक ऐसा गीत जो प्यार की मासूमियत, अपनापन और दिल की गहराइयों को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। फिल्म सफर का ये मधुर गीत जीवन से भरी तेरी आंखें महान गायक किशोर कुमार की दिलकश आवाज में सजा है। ये गीत उस एहसास को शब्द देता है जब किसी की आंखों में पूरी दुनिया नजर आने लगती है, जब किसी की मुस्कान जीवन की सारी थकान मिटा देती है। इंदिवर के भावपूर्ण बोल और कल्याण जी आनंद जी का मधुर संगीत इस गीत को सदाबहार बना देता है। आइए सुनें।

श्रोताओ, प्यार जब शब्दों से आगे बढ़कर एहसास बन जाता है तब कुछ गीत सीधे दिल में उतर जाते हैं। महान गायक येसुदास की मीठी और आत्मीय आवाज में सजा ये गीत प्रेम की कोमल भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से व्यक्त करता है। गीत के बोल दिल की उन धड़कनों को आवाज देते हैं जो किसी अपने के साथ बिताए हर पल को खास बना देती है। तो कुछ पल के लिए हमारे साथ शामिल हो जाइए इस गीत के साथ।

साथियों, ये आवाजें थी यसुदास और कविता कृष्णमूर्ति की। साथियों, मोहब्बत की दुनिया में इंतजार का अपना एक अलग ही रंग होता है। जब दिल किसी अपने की याद में डूब जाता है तो हर आहट में उसी का एहसास होने लगता है। ऐसी ही तड़प इंतजार और सच्चे प्रेम की भावना को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत करता है फिल्म नीलकमल का ये सदाबहार गीत। मोहम्मद रफी साहब की दर्द भरी और दिल को छू लेने वाली आवाज में सजा ये नगमा आज भी श्रोताओं के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है। गीत के बोल प्रेम की उस पुकार को व्यक्त करते हैं जो दूरियों के बावजूद अपने प्रिय तक पहुंचने की कोशिश करती है।

साथियों, प्रेम की सबसे बड़ी पहचान उसका समर्पण होता है। सच्चा प्यार न तो दूरी से कम होता है और न ही समय की सीमाओं में बंध सकता है। वो तो एक ऐसा एहसास है जो हर परिस्थिति में अपने प्रिय के साथ रहने की चाह रखता है। आइए सुने ये रात फिर न आएगी फिल्म का एक बेहद लोकप्रिय और भावपूर्ण गीत। महेंद्र कपूर जी की प्रभावशाली आवाज में सजा ये गीत प्रेम की गहराई, निष्ठा और अटूट विश्वास का सुंदर उदाहरण है। साथियों, गीत के बोल दिल की उन भावनाओं को व्यक्त करते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। सुने ये गीत।

साथियों, प्यार जब विश्वास, अपनापन और समर्पण से भर जाता है, तब वो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। किसी अपने का साथ और उसका स्नेह इंसान को हर मुश्किल राह पर आगे बढ़ने का हौसला देता है। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं को अपने मधुर बोलों और सुरीले संगीत में समेटे हुए फिल्म आनंद आश्रम का लोकप्रिय गीत आइए सुने। इस गीत को किशोर कुमार और आशा भोसले की मधुर आवाजों से सजा है। गीत प्रेम के उस मधुर एहसास को व्यक्त करता है जहां दो दिल एक दूसरे के प्रति अपने स्नेह और विश्वास का इजहार करते हैं। आइए सुने।

श्रोताओ, ये फिल्मी तक में इस समय आप आकाशवाणी सूरतगढ़ की कॉटन सिटी चैनल से सुन रहे हैं। इस संगीत के सफर को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इस गीत की। साथियों, यादें कभी पुरानी नहीं होती। जब कोई अपना दूर हो तो उसकी बातें, उसकी मुस्कान और उसकी तस्वीर भी दिल को सुकून देने लगती है। प्रेम की यही मीठी कसक और इंतजार की यही खूबसूरती कुछ गीतों को हमेशा के लिए अमर बना देती है। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन को आने दो फिल्म का बेहद लोकप्रिय और भावपूर्ण गीत। यशोदास जी की मधुर और आत्मीय आवाज में सजा ये गीत विरह, प्रेम और समर्पण की भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से अभिव्यक्त करता है। गीत का हर शब्द दिल की गहराइयों को छू जाता है और अपने प्रिय की यादों से भरे संसार में ले जाता है।

श्रोताओ, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, वे दिल से जुड़ते हैं और जीवन भर साथ निभाने का एहसास देते हैं। दोस्ती भी एक ऐसा ही रिश्ता है जो विश्वास, सम्मान और अपनत्व की मजबूत नींव पर टिका है। अब हम आपको सुनवाते हैं बिन फेरे हम तेरे फिल्म का ये गीत। ये गीत रिश्तों की खूबसूरती और दोस्ती की पवित्रता को बड़े सरल और भावपूर्ण अंदाज में प्रस्तुत करता है। गीत के बोल हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में सच्चे दोस्त मिल जाएं तो सफर आसान और खुशियों से भर जाता है। तो आइए सुने ये गीत।

0: साथियों, प्यार की दुनिया भी बड़ी निराली होती है। जब किसी की मोहब्बत दिल में घर कर जाती है तो हर धड़कन में उसी का नाम गूंजने लगता है। दिल फिर किसी तर्क को नहीं मानता, बस अपने प्रिय की यादों और ख्वाबों में खोया रहता है। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं इश्क पर जोर नहीं फिल्म का ये सदाबहार गीत। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की मधुर आवाज़ों से सजा ये गीत प्रेम की मासूमियत, चंचलता और दिल की बेकरारी को खूबसूरती से व्यक्त करता है। इसके मधुर बोल और कर्णप्रिय संगीत आज भी श्रोताओं के दिलों में उसी ताजगी के साथ बसे हुए हैं। आइए सुनें।
1: Thank you.

साथियों, प्रेम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि कई बार दिल की बातें शब्दों से नहीं बल्कि निगाहों से कह दी जाती हैं। कुछ आंखें ऐसी होती हैं जिनमें अनगिनत सपने, अनकहे जज्बात और ढेर सारी मोहब्बत छिपी होती है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की जादुई आवाजों से सजा ये गीत प्रेम की कोमल भावनाओं को बड़ी नजाकत से प्रस्तुत करता है। गीत के बोल दिल के उन एहसासों को आवाज देते हैं जिन्हें प्रेमी प्रेमिका अक्सर अपनी निगाहों में छुपा कर रखते हैं। सुनते हैं ये गीत।

आज के सुरीले सफर के अंतिम पड़ाव पर हम लेकर आए हैं एक ऐसा गीत जिसमें मोहब्बत की सादगी, समर्पण और दिल की गहराइयां खूबसूरती से झलकती हैं। यह गीत उस प्रेम की कहानी कहता है जिसमें दिल को सिर्फ एक ही चेहरा, एक ही नाम और एक ही साथ मंजूर होता है। प्यार का ये खूबसूरत इजहार आज भी श्रोताओं के दिलों को छू लेता है। सुने ये गीत और अपने दोस्त राजेंद्र शर्मा को आज्ञा दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतकर के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को अडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ